0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, हमारा जो प्रयत्न है वह है लोगों के दुखों का निवारण करना। अब दुख दूर कैसे हों, जीवन की समस्याएं दूर कैसे हों। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है, हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। अब कैसे उनके दुखों का नाश हो सकेगा, इसका सरल उपाय एक ही दिखता है दोस्तों, वो है शिव पुराण या शिव भक्ति या अपने इष्ट की भक्ति। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यह पुराण जो है वो तो ऐसा पुराण है, ऐसा रामबाण है उपाय, इसको पठन मात्र से या श्रवण मात्र से इंसान के सारे दुख, सारी समस्याएं जो वो घिरा हुआ है, जिनसे परेशान है, दुखी है, सब दूर हो जाते हैं, वो उसको व्याप्ते ही नहीं हैं। और जो ऐसा पुराण हो, जो ऐसा अचूक उपाय हो, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, तो वो क्यों ना कर लिया जाए। सिर्फ इसीलिए आपके परोपकार के लिए एक छोटा सा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपकी समस्याएं, आपका जीवन जो है वो आनंदित हो, उसके लिए आप शिव पुराण सुने। और दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने एक बहुत ही सुंदर, रोचक और जो गूढ़ ज्ञान वर्धन करने वाला प्रसंग था, वो हमारे दोस्तों को आपने सुनाया कि किस प्रकार से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा, जिसे और कोई मार ही नहीं सकता था, और कैसे फिर सारे देवगण जो साथ गए थे, उन्होंने भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुतियां की। फिर भगवान शिव शांत हुए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने उनकी स्तुति की थी। तो लीना जी, हम पूछना चाहते हैं कि उसके बाद क्या सारे देवगण वापस चले गए और भगवान शिव भी पार्वती सहित अपने कैलाश को लौट गए, तो क्या हुआ, इसके बाद कथा कैसे आगे बढ़ती है, वो हम सब सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 11वां अध्याय चल रहा है। और इस 11वें अध्याय में भगवान शिव जब रुद्र रूप धारण किए त्रिपुर को मारने के लिए, तो फिर वो वापस अपने स्वरूप में नहीं आए, शंकर रूप में, शिव रूप में वापस नहीं आए। उनके रौद्र रूप को देख करके सभी भयभीत होने लगे, कांपने लगे। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान ने स्तुति की। अब देवता स्तुति करते हैं और वो भगवान शिव से कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं यहाँ देखते हैं। देवनाथ महादेव करुणा कर शंकर, प्रसीद जगताम नाथ, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद सर्वकर्ता त्वम, नमाम त्वाम वयम मुदा त्वयि भक्तिर दृढास्माकं नित्यं स्यादन पायनि। वो कहते हैं, देवताओं ने कहा कि देवनाथ महादेव, दयालु शिवजी, संसार के स्वामी, हे शिवजी प्रसन्न होइए, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। अविनाशी मतलब भक्ति ऐसी हो जो विनाश को प्राप्त नहीं हो, कि आज तो हमने पूजा की है, कल जो है छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। या आज हमने पूजा की 2 घंटे और उसके बाद फिर भूल गए भगवान को, 24 घंटे में से 22 घंटे भूले रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अविनाशी भक्ति क्या होती है, प्रश्न ये उठता है। अर्थात भक्ति वह जो कभी खत्म ही नहीं हो, भगवान के साथ जो भक्ति होती है वो हमेशा अविनाशी ही रहे। यानी कि सुबह दूं शाम दूं, मन करता आठों याम दूं, ये भक्त कहता है कि आपको सुबह सुबह में जो है नमन करूं, शाम में भी नमन करूं, लेकिन मन तो कहता है कि आपको आठों याम नमन करता रहूं, आपकी आठों याम भक्ति करता रहूं। इसलिए आपने देखा होगा कीर्तन होते हैं बहुत जगह तो अष्टयाम कहे जाते हैं, यानी कि आठों याम कीर्तन सुबह दोपहर शाम तक रात तक कीर्तन चलता ही रहता है। अखंड जप भी आपने सुना होगा 24 घंटे चलते रहते हैं। तो ये सब बाहरी क्रियाएं हैं,
0: अखंड जप
1: है, कीर्तन है, आठों पहर जो भी किया जाता है वो सब बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन मन हमारा अंतर में निवास करता है। तो आंतरिक क्रियाएं ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें ईश्वर को समर्पित कर दें, और आठों याम यानी आठों पहर सिर्फ भगवान ही हमारे सामने हो तो इसको अष्टयाम भक्ति कहते हैं। ये अविनाशी दृढ़ भक्ति होती है कि जरा भी भगवान के नाम से जो है हम दूर नहीं हो पाते, और इसी अविनाशी दृढ़ भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं, ये देवतागण शिव जी से कहते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा। अब शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे विधे हे हरे देवा प्रसन्नो अस्मि विशेषतः मनो अभिलषितम ब्रुत वरम सर्वे विचारतः। कहते हैं शिव जी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, आप सब इच्छा अनुसार वर मांगिए। सनत कुमार जी ने कहा हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। अब सभी देवताओं ने कहा, क्या कहा, यदि प्रसन्नो भगवन यदि देयो वरस्त्वया देव देवेश चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासान हि नः सुरान, यदा दुःखं तु देवानां संभवेद देव सत्तमा तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। वो देवतागण कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं का पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश करें। ये बहुत बड़ी बात देवताओं ने मांग ली कि जब भी कष्ट हो तब आप हमारा कष्ट दूर करें, हमारा कष्ट हरण करें, क्योंकि आप ही कष्ट हरता है, और आप अगर प्रसन्न होते हैं तो समझिए कि हमारा भी अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहते हैं संत कुमार जी ने कहा इसके बाद कि इत्युक्तो भगवान रुद्रो ब्रह्मणा हरिणा अमरे युग युगपत प्राह तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरंतरम। इस तो अब ब्रह्मा जी सब जो है जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि सनत कुमार जी ने कहा हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न मन से कहने लगे, और उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है जब भी हमारा कार्य पड़े तो आप आ जाया करिए। तो संत कुमार जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु ऐसा ही कहा, ऐसा ही हो कहा। हे देवताओं, आपके कहे हुए उन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ, इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उनको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। तो यहाँ जो भक्तिमय स्तोत्र हैं, जो स्तुति है देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, हरि के द्वारा, तो ये स्तुति हम सबको भी पढ़नी चाहिए जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि वो प्रसन्न तो हमारा अंतर्मन प्रसन्न, और हमारा अंतर्मन प्रसन्न तो फिर हम सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, नहीं तो बस ऐसे ही आशा निराशा दुख सुख में डूबे रहेंगे। और दुख सुख का गह्वर जो है वो तो है ही, सबके साथ है। कहते हैं कि जैसे रथ का पहिया होता है उसमें 24 अरे लगे हुए होते हैं, ये सभी जैसे जैसे रथ घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं। तो हमारा सुख दुख ठीक इसी तरह से है, कभी पहिया ऊपर होता है कभी नीचे आता है, फिर ऊपर होता है फिर नीचे आता है, तो दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो इस सृष्टि का नियम ही है।
0: लीना दी, ये सत्य है कि जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा कि हमेशा सुख ही सुख रहे या हमेशा दुख ही दुख रहे। तो ऐसा तो दोस्तों कभी होता नहीं है। जब भगवान को इनका युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो कुंती ने, कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि बुआ आप मांग लो, क्या मांगना है। तो दोस्तों पता है क्या मांगा था कुंती ने कृष्ण से? उसने कहा था, केशव तुम मुझे दुख ही दुख देना। दोस्तों उसने दुख ही दुख क्यों मांगे? वो तो कुछ भी मांग सकती थी कि मुझे कभी ऐसा दृश्य ना देखने को मिले, कभी महाभारत जैसा, कभी मुझे दुख ना मिले, मेरे संतान को, कुछ भी मांग सकती थी ना। अब हम क्या मांगते हैं भगवान से? हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को धन देना, हमारे बच्चों के काम संभालना, बहुत कुछ मांगते रहे, मांगते ही रहते हैं। चलो भगवान से तो मांगना है, उसी से ही मांगना चाहिए। लेकिन उसने दुख क्यों मांगा? ताकि वो भगवान को, केशव को, श्री कृष्ण को पहचानती थी कि ये कौन है, और वो हमेशा उनको स्मरण रखना चाहती थी। वो जब भी बुलाए दुख में तो उनको आना ही पड़ेगा, वो हमेशा उनको स्मरण रखना करते रहना चाहती थी। बिल्कुल वही बात आप अपने जीवन पर लागू रखिए। आप हमेशा ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण करते रहेंगे तो दुख आएंगे जरूर, पर दुख सहने की क्षमता भी ईश्वर ही देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख आए और कब चले गए। और सुख आएंगे तो सुख में भी अभिमान करने की दुर्बुद्धि ईश्वर आपको नहीं देगा। दुख आए उसमें भी समान और सुख आए उसमें भी समान, आएंगे तो दोनों ही। इतने उदाहरण ईश्वर ने प्रकृति में ही दे रखे हैं। गुलाब का फूल इतना खूबसूरत होता है, फिर भी उसकी हर डाली में इतने कांटे होते हैं, एक फूल के साथ 10-10 कांटे होते हैं। अब इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि फूल में सुगंध भी है, सुंदरता भी है, ईश्वर ने मतलब देखते जाओ इतना सौंदर्य उसमें दिया है, लेकिन उसके साथ कांटे भी हैं। यानी कि उसके जीवन में दुख भी है और वो सुख भी है, उसकी सुगंध का, उसकी सुंदरता का। तो इन सब से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। आजकल जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो संतुष्ट नहीं है वह कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता, उसे संतोष मिल भी नहीं सकता। जो कुछ अपने पास है दोस्तों उसमें ही संतुष्ट रहिए। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाकर रात को आता है और बिना कोई चिंता किए हुए अपने सारे परिवार के साथ वह आनंदित होकर जैसा भी भोजन घर में बनता है उसको करके आराम की नींद सोता है। लेकिन जिसके घर में धन अधिक है, ना तो उसको चैन की नींद आती है, ना ही वह अपने भोजन का आनंद ले पाता है, ना ही वह सो पाता है, दवाइयों पे दवाइयां खाता रहता है। तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा? क्या आप ऐसा धन चाहेंगे जिसमें जीवन का सुख ही चला जाए, जिसमें संतुष्टि ना आए? अब क्योंकि संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा, हैं? संतोषम ही परम सुखम ये कहा गया है, लेकिन संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ। तो दोस्तों जो लीना जी ने अभी बताया, जैसा कि हमारा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे तो दुख व्यापेंगे नहीं, आएंगे पर आपको अंदर तक दुखी नहीं देंगे। आप आएंगे और आप उसको सहन करते चले जाएंगे, सुख आएंगे, उसको आनंदित होते चले जाएंगे।
1: तो इस तरह से रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 11वें अध्याय में भगवान शिव ने देवताओं को वर दिया। अब 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सनत कुमार जी, एतस्मिन् अंतरे शंभुम प्रसन्नम वीक्ष्य दानव तत्र आजगाम सुप्रीतो मयो दग्ध कृपाबलात् प्राणनाम हरम प्रीत्या सुरान्यान अपि ध्रुवम कृतांजलिर नत स्कंध प्रणमाम पुनः शिवम। कहते हैं इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने से बचा हुआ मय दानव शिव जी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मय दानव ने उनकी स्तुति की। क्योंकि मैं दानव ही है जो भगवान विश्वकर्मा की तरह है। भगवान विश्वकर्मा क्या करते हैं, ईश्वर से संबंधित जो भी शिल्प कला होती है वो भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। जैसे जब ये बनाया गया महल भगवान शिव के लिए, तो वो किसने बनाया था,
0: विश्वकर्मा।
1: और जो ये
0: रथ बनाया था तो भी विश्वकर्मा,
1: वो भी विश्वकर्मा। शिल्प कला से संबंधित हर कार्य विश्वकर्मा करते हैं देवताओं की ओर से। और दानवों की ओर से जो शिल्प कला है वो कौन करते हैं, मैं दानव। तो मैं दानव ने त्रिपुरासुर की नगरी बनाई थी, लेकिन वो मैं दानव बचा रह गया। क्यों बचा रह गया भाई, क्योंकि वो शिव जी को का भक्त था और शिव से उसका द्रोह नहीं था। त्रिपुरासुर आदि भी भक्त थे, लेकिन उनका धीरे धीरे शिव से द्रोह बढ़ता चला गया था, तो इसलिए वे नष्ट हुए। लेकिन मैं का शिव से द्रोह नहीं था, इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम सब अगर शिव भक्ति में रमे रहेंगे तो हम सब का शरीर भले समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे मन, हमारी आत्मा सब में शुभ कर्म ही विराजेंगे। और शुभता जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ अंधेरा छट जाएगा। तो मन का अंधेरा अगर हमें छांटना है तो भगवान शिव के शरण में हमें जाना चाहिए। तो अब मैं दानव का अंधेरा छट चुका था, उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे नहीं मारा, तो वो खुश होकर के शिव के पास गया। और देखिए आगे क्या होता है, मैं दानव ने उनकी स्तुति की। अब वो भी कहता है, मैं दानव भी कहता है कि देव देव महादेव भक्त वत्सल शंकर कल्प वृक्ष स्वरूपो असी सर्व पक्ष विवर्जित ज्योति रूप नमे नमस्ते अस्तु विश्व रूप नमो अस्तु ते नम पूतात्मने तुभ्यम पावनाय नमो नमः। चित्र रूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः। दिव्य रूपाय दिव्याय सुदिव्या कृतये नमः। नमः प्रणत सर्वार्थी नाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भर्त्रे च संहर्त्रे त्रिलोकानां नमो नमः। अब देखिए, मैं दानव भी पढ़ा लिखा विद्वान था और उसने भी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति की। उसने कहा, देव देव महादेव भक्त वत्सल शंकर, आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान हैं। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि ये दानव है और ये देवता है, आपने तो दोनों को समान रूप से
0: आशीर्वाद दिया।
1: तो आप ज्योति रूप विश्व रूप पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा, तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संघर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु, तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। इतना चीज सब कुछ बोल करके आगे वो कहता है कि मैं स्तुति करना नहीं जानता, आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। अब तो उसके अंदर भय खत्म हुआ और थोड़ा साहस करके वह भगवान शिव के पास गया और शिव की आराधना किया, उनकी स्तुति की, और अंत में अपनी अज्ञानता भी बताई, अपना जो उसके अहंकार के समूल नाश का प्रतीक है कि भगवान शिव जो है सबसे पहले अहंकार का भक्षण करते हैं। वो किसी भी मनुष्य, किसी भी पशु के अंदर तो अहंकार काम क्रोध होता नहीं है, लेकिन मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य को भी पशु की ही संज्ञा दी गई है। तो वो किसी के अहंकार का वो तुरंत भक्षण कर लेते हैं, भगवान शिव। तो जब मैं दानव उनके पास पहुंचा तो वो अहंकार रहित हो गया था। अहंकार रहित व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्तुति करना, तो कैसे स्तुति करूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होइए मुझ पर और मुझे शरणागति, अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तब सनत कुमार कहते हैं, इत्याकर्ण्य मयोक्ताम हि संस्तुतिम परमेश्वर प्रसन्नो अभिहूत द्विज श्रेष्ठ मयम प्रोवाच चादरात। कहते हैं सनत कुमार जी कि इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर वे नारद शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा, हे नारद, शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। देखिए शिव जी पर ब्रह्म परमेश्वर है, फिर भी वे अपने से छोटों का निरादर कभी नहीं करते, तो आदर पूर्वक उन्होंने मैं दानव से कहा। क्या कहा शिव जी ने, कहते हैं, वरम ब्रूहि प्रसन्नो अहम, मैं दानव सत्तम मनो अभिलषितम यत्ते तद दास्यामी न संशय। वो कहते हैं कि हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा कि मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। अब मैं दानव ने क्या कहा, कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान, वर योग्यो अस्मि अहम, चेद्धि स्वभक्तिम देहि भावो भवेन मम महेश्वर निर्भया श्याम, स्वभक्तिम देहि शाश्वतीम, स्वभक्तेषु सदा सख्यम, दीनेषु च दयाम सदा, उपेक्षा मन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर, कदापि नासुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भयः श्याम सदानाथ मग्न मग्नः त्वद् भजने शुभे। अब मैं दानव कहते हैं क्या कि देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। यानी कि मैं दानव के मन में भी भक्ति जागृत हुई और वह दानवता छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा भगवान शिव की कृपा से। और वो फिर आगे कहता है, हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता मित्रता, दिनों में दया खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो, असुरत तो उसके अंदर पैदा नहीं हो, क्योंकि वो मैदान अब जान रहा था कि जो राक्षस कोटि के हैं, जो राक्षसी वृत्ति जिनकी है, उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। इसलिए उसने ऐसा भगवान महेश्वर से कहा और महेश्वर ने फिर कहा कि हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो, मैंने तुम्हारे इच्छित वर इस समय तुम्हें दे दिए हैं, तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार बीतल लोक में चले जाओ। अब दानव जो है सब पाताल के नीचे रहते हैं, अतल बीतल सुतल आदि बहुत सारे सात लोक हैं, तो उन्होंने बीतल लोक में मैं दानव को भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है, तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो, तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। यह आश्वासन भगवान शिव ने किसे दिया, मैं दानव तो भगवान शिव के लिए देव और दानव दोनों बराबर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये धनुज हैं, ये राक्षस हैं, इनको वर नहीं दिया जाए, या उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये देवता हैं तो सिर्फ इन्हें ही वर का अधिकार है। जिसने भी उनसे जो कुछ भी प्यार से मांगा, भक्ति से मांगा, उसे उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया। तो मैं दानव को भी उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया कि आप बीतल लोक में सपरिवार रहिए जाकर के, और यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक ये प्रसंग था लीना जी, और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला था, जिसको हमने कभी ना बाहर सुना है और ना ही हमें सुनने को कहीं मिला कि किस तरह से एक दानव भी भगवान की भक्ति पाकर उनके जो वरदान का है वो पात्र बन गया। तो जब दानव बन सकते हैं पात्र, तो इंसान क्यों नहीं बन सकते। तो लीना जी, अब क्योंकि एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, तो हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: और दोस्तों, अब मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम पुनः फिर मिलेंगे। इस एपिसोड को हम अब आगे नहीं पढ़ा सकते, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए। Feel good, feel life.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है

0: और पुरातन है। मानस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहाँ से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे पहुँचे चले जाते
1: हैं बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म, कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपनी प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा

0: जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूँ तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
0: जी। बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं, पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोत्स्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं, कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास, और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव,
0: परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में

0: फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल।
0: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्रिय एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाभारत जो एक ग्रंथ है, इसके अंदर समाहित बहुत सारे विषयों के बारे में, बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के बारे में, और रागलेखा दासी जी हमेशा की तरह बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। तो वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर हस्तृष्ट हो गए थे
0: जी।
1: उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया और वहाँ कुटी बनाकर आसपास के रमणीय वन पर्वत नदियों के किनारे विचरने लगे। अनेक वेद अध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक बातचीत करने पर कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछो, धूप के कारण उन सबके शरीर बहुत कृश हो गए हैं और वह वीर पत्नी होकर अनाथाशी हो रही है और सब और से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सुना की राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार से दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। कुपुत्र के मुंह में सच कर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनि ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर इसे सुनाई। आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो, तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्र से सुसज्जित होकर चले और यज्ञ चर्म और वल्कल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उनका घी जलावें। दुर्योधन से ऐसा कहकर दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में भी ये बात बसी हुई है, पांडवों को बलकल वस्त्र मधुर चर्म होवे देख कर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी
0: जी।
1: और इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या होगा कि मैं द्रौपदी को द्वैत वस्त्र पहने देखूं। कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश द्वैत वन में है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गोश यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, लोगों की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है आजकल नरशार्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पासी में ठहरे रहे हैं। ये लोग जब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, किंतु अहंकार और मोह में चूर हो रहे हैं, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। शकुनि ने कहा, जहाँ पांडव लोग रहते होंगे वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं। इस प्रकार जब सब लोगों के ठहरने की ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवा कर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। द्वैत वन के सरोवर पर गए वे लोग और वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने सरोवर को घेर रखा था। सुखा सरोवर को घिरा हुआ देखकर वे लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर तुम्हें वहां से निकाल दो उसे सरोवर पर भेजा। गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, उसी से हम देवताओं पर इस प्रकार की हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सहस्त्र योजना कमर कस के तैयार हो गए। और गंधर्वों को मार पीट कर बलाते स्वयं घुस कर गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन 19 कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। एक एक कौरव वीरों को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुर्योधन ने इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। चित्रसेन जी ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया और वो नीचे गिर गया रथ से। और बाहर से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ा लाने के लिए अत्यंत आतुर हुए। उनके मंत्री ने रोक होकर धनराज से कहा, महाराज हमारे प्रिय ऋषि महाबाहु दृष्टराज कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे। धनराज ने कहा, भैया भीम इस समय कड़वी बातें सुन

0: का नहीं है। देखो ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे प्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उसे उस तिरस्कार को वो सह नहीं सकते। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ। यदि वह गंधर्वराज समझाने में जाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना। तब अर्जुन ने गंधर्व को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि अरे युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ये हमारा भाई दुर्योधन नहीं है, सुयोधन है और हम लोग 105 भाई है। हम पांच भाई नहीं है, 105 है
1: जी।
0: हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए ही हम जैसी हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। मारुति पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर आकाश में उड़कर जाने लगे। गंधर्व उन्हें उड़ते देखकर बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा गया जिसके चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे चित्कार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अर्जुन के उन अस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा। उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लटा दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। वे लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे, उन्होंने मुझसे कहा जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्री सहित बांध कर यहाँ जाओ। भाइयों के साथ अर्जुन की सब प्रकार से रक्षा करना क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और ज्ञान विद्या का शिष्य है। फिर ये सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा देकर अप्सराओं के सही चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से सरलोक को चले गए। देवराज इंद्र के दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ के मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर व दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वैसा व्याकुल हो रहा था मानो इंद्रियां नष्ट हो गई है, शोक के कारण उसके हृदय थका जा रहा था।
1: जी श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और अभी रागलेखा दासी जी ने हमें कथा सुनाई किस तरह से पांडवों की जो दुर्दशा हो रही थी वो भी बताया और कौरवों की क्रूरता के बारे में बताया, गंधर्वों से उनका किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से भाइयों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, ये सारी कथा हमने जानी महाभारत के इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा हम जान लेते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
0: दुर्योधन ने कहा, जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझे मंदगति को मंदन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो मैं उसी महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता, इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। मेरा जो विचार है वे सुनो, मैं यहाँ अनजल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा, तुम और दुशासन आदि मेरे सब बाह्य सीमा से उड़ चले जाओ, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुर्योधन का प्राय वेश देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए कर्म कांड आरम्भ किया। वेद विधान में निष्णात वामन लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में घी दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ से बड़ी ही अद्भुत कृपया जमाई लेती हुई प्रकट हुए, बोली बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्य ने प्रसन्न के कहा, तुम प्रायो प्रवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। कृपया ने कहा, जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुँच गई। निरीक्षण में ही उसे देखकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आता देखकर दानव बेचित प्रसन्न हो गए। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोगों में भी उसकी निंदा होती है। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं में संग्राम करेंगे। अब आप अपने घर जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दूसरे दिन सवेरा होते ही खुद पुत्र करण ने हाथ जोड़कर हंसते कहा, महाराज मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छुपकर कहता हूँ, पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। इस प्रकार कहने और दुशासन के बहुत अनुनय विनय करने पर दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया और पांडवों के साथ युद्ध का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए साथी जोड़े उसको नियुक्त कर दिया। दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उस समय कौंडिन्य का राजन, सुनिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ। विष्णु सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं, इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते। आपने जो सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी की विजय करने की आज्ञा दीजिए, आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शास्त्रों की शपथ कहकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार कर ली। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना लेकर चला और महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद अपना अशुद्ध बना लिया। उसे कर रूप में बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न लिए। जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीत कर उनसे भी कर लिया। वो हिमालय से शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। सब राजाओं को जीत कर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। उन सबको जीत कर इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी की विजय कर ली। दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि मैं पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था मैंने, अब मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन इस समय सभी निपतिगण आपके अधीन है, आप याचकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। दुर्योधन ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए शास्त्र अनुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिए, इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। उस पर पुरोहित ने कहा, राजन युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, उसका नाम है वैष्णव यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ही जोड़ का है और हमें बहुत प्रिय है, इससे आपका हित होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। राजन यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार है, सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। उस समय सारे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र भीष्म सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनमें से एक दूत ने दुशासन से कहा, तुम शीघ्र जयक्रम जाओ और वहाँ रहने वाले पांडवों और ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। युधिष्ठिर ने कहा, हम भी उसमें सम्मिलित होते किंतु इस समय इस प्रकार नहीं हो सकता क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास का नियम करना है। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते, फल मूल खाकर रहते थे। राजा युधिष्ठिर से उसके हम भाइयों पर जो महान दुख आ पड़ा है वे मेरी ही करने का तो फल है, उन्हें रात भर नींद नहीं आती और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। एक समय की अपने व्यास जी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाते देखकर जीवन निर्वाह करते हुए व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता, तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए उसे प्रसन्न होकर अपनी यथाशक्ति से दान दे। युधिष्ठिर ने कहा, महामुनि दान तपस्या में किसका फल अधिक है, दोनों में कौन कठिन है। व्यास जी ने कहा, राजन दान से बढ़कर कठिन कार्य स्थिति पर दूसरा नहीं है। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए धन का त्याग करना बड़ा ही कठिन है, अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है। उन्हें दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसमें से यदि कोई धन न्याय से कमाया गया हो तो उत्तम देश काल पात्र का विचार करके इसका दान किया जाए और इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है तो कर्ता की महान भरोसे रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह है मुद्गल ऋषि की कथा।
1: जी तो श्रोताओं, इस ऋषि की कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आपसे इजाजत लेने का हो चला है। और इसी तरह बहुत सारी कथाएं और प्रसंग महाभारत के अंतर्गत जो समाहित हैं वो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। Ha ha ha ha ha!

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब भी आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए, जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक. रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली. जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का. जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है. इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है. कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है. और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे. और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है. कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन है तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. त्वचा को जवा और चमकदार दिखाए रखने में भी काफी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार है, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और. बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं। और वो कैसे? वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के 7 दिन में आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतुबंधना आसन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंधना आसन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतुबंधना आसन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन है हो जाएगा, इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे. जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की. जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी. तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है. लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है. कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है. 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए. तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए. इतना ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है. धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है. सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है. और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है. इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए. कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का. तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी. अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ. सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमलप्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमलप्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमलप्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्रे घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्ट साक्षी में. कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को, भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ और दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया कि आज इस तरह खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बनके अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया। लेकिन देखिए, मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का इंडिया से क्या लेना देना। लेकिन उसी स्पोर्ट में करियर इन्होंने बनाया। ट्रेनिंग के लिए इटली और फ्रांस तक जाने का खर्चा उन्होंने लोन और क्राउड फंडिंग से मैनेज किया। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता। 2020 में हिस्ट्री लिखी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर की इन्होंने हिस्ट्री लिखी। भवानी ने एक ऐसे स्पोर्ट में नाम कमाया जहाँ लोगों का वो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता थी। जिंदगी के हर अटैक का सिर्फ एक जवाब था, भवानी की फेंसिंग स्क्वाड। और ये जो है, इन्होंने नाम तो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, जहां किसी को पता भी नहीं था कि ये फेंसिंग है क्या, वहां पर इन्होंने खेल के भाई सबका जो है दिल जीत लिया। चलिए, इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं हमारी बातें, फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अभी आपको बता रही हूँ मैं अपने सेगमेंट्स लेकर के आती हूँ। लेकिन अगले सेगमेंट पर ज़रूर जाऊँगी क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट है कौन बनेगा सेहतमंद। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और ये मिस कर जाते हैं, कोई भी बात दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप भाई

फरीदाबाद में हो या दुनिया में कहीं पर भी, वर्ल्ड में कहीं पर भी, आप भाई जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो भी कुछ ही सेकंड में। आपको बस क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या आईओएस मोबाइल फोन हो, वो लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप सुन सकते हैं ये कमाल के पॉडकास्ट, सुन सकते हैं, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। तो अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप कभी भी कहीं से भी आप हमारे साथ यानी कि रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं। बस अब यहां पर लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं और साथ ही अगला सेगमेंट भी ला रही हूं, बहुत ही ज्यादा खास ये सेगमेंट होने वाला है। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें पहेलियां आपसे पूछती हूं। आज की क्या है खास पहेली पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ, कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछती हूँ, जो देता है सही सटीक रोजाना जवाब देता है। जब भी मैं पहेली पूछती हूँ, पूरे महीने जो रहता है कंसिस्टेंट, उनको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो आने का और सभी आरजे से मिलने का। बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता दूं मैं अभी कि अभी बात मैं कर रही हूँ बहुत सारी और आपसे पहेली पूछ रही हूँ, तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जो पहेली आज की है भाई, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसका बहुत जल्दी से जवाब देना है। पहेली है, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं बी विटामिन का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? तो जल्दी से इसका झटपट से जवाब देना है। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं विटामिन बी में का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के सातों दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी, क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरोट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूँ। तो चलो, आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यहाँ चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6, इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए, यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ। तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है। और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ मैं, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा विटामिन हूँ मेरी पहचान है। इसका फटाफट से आपको जवाब देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं विटामिन, क्या है मेरी पहचान। फटाफट से इसका जवाब आपको देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने वृष्णा 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल एक पहेली आपसे पूछी मैंने, जिसका फटाफट से जवाब आ चुका है. हमारी लिसनर ने यह जवाब दिया है. लिसनर का नाम है प्रियंका. प्रियंका मिश्रा जो है इनका नाम है. उन्होंने जवाब दिया है सेक्टर 21 से, इन्होंने मैसेज करके मुझे जवाब दिया है. आपको बता दूं, एक बार पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूं. आंखों की रोशनी का हूं पहरेदार, रात में दिखने में करता हूं उद्धार. मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा विटामिन का नाम, क्या है मेरी पहचान. तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ए. जी हाँ, और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से. लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है, हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर हमने कई बार बात करी है, लेकिन इस प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि हर घर में हर कोई परेशान रहता है। मौसम जैसे ही बदलता है, फ्लू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। और आप भी देख सकते हैं कि आपके आसपास वाले क्लिनिक्स में पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है। पर मौसम बदलते ही ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है, ये फ्लू आखिर आता कहाँ से है और क्यों हमें इतना परेशान करता है हर बार, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे खास मेहमान हैं आज के। सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
0: सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम फ्लू की बात कर रहे हैं और अब जैसे कि बारिश का सीजन आ गया है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जैसे कि हर साल होती है, सो हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन लगी होती है फ्लू के पेशेंट्स की। अब ये फ्लू एक्चुअली होता क्या है पहले तो ये बताएं, और फिर ये मौसम बदलने के साथ इतना ज्यादा क्यों आ जाता है?
1: तो मैम, बेसिकली मौसम बदलने से फ्लू का रिलेशन ये है कि जब मौसम बदलना कहते हैं, मतलब समर्स के बाद जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वायरस जो एयर में हमारा सस्पेंडेड होता है, इसके लिए परफेक्ट एनवायरमेंट है टू ग्रो एंड टू स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वायरस फ्लरिशेज और आई वुड से थ्राइव्स इन अ लो टेम्परेचर एनवायरमेंट। वो गर्मियों में आप कभी नहीं देखोगे कि अप्रैल मई में किसी को फ्लू हो रहा है, अनलेस उसका कोल्ड एक्सपोजर ना हुआ हो। तो यूजली वायरस जो होते हैं यही फ्लू के जड़ के कारण होते हैं, वायरस इन्फेक्शन जिन्हें हम कहते हैं। तो जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है सीजन चेंज पे, तब ये ज्यादा आप देखते हो कि 1-2 सेकेंड, 2-3 स्प्रेड करता है, ये जंप करता है। तो यूजली मैम कॉमन वायरसेस होते हैं हमारे पूरे सस्पेंडेड एयर में, हमारे एनवायरमेंट में, सच एज राइनो वायरस करके होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यूजली राइनो एंड इन्फ्लुएंजा आर द मोस्ट कॉमनली कॉजिंग वायरसेस कॉजिंग फ्लू इन्फेक्शंस।
0: अक्सर हम देखते हैं कि ये जो बुखार है या ये जो सीजनल फ्लू है, ये अपने साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स लाता है। तो सीजनल फ्लू और नॉर्मल बुखार जो कभी वैसे ही हो गया, उन दोनों को डिफरेंस कैसे पहचाने?
1: मैम, जो वायरल का जो इन्फेक्शन का जो फीवर होता है, यूजली मैम अगर सपोज करो कि वायरस का ना बेसिकली प्रॉपर्टी होती है अपने आप को चेंज करता रहता है, जिसको हम कहते हैं हमारी साइंटिफिक भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये मैम जैसे बार बार हर साल दो साल में अपना अपने एक मेम्ब्रेन को या अपने आउटर कवरिंग को ही चेंज करता रहता है टू बी एबल टू अवॉइड और इवेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब ताकि शरीर में ये आराम से स्प्रेड कर पाए। तो जब एक नया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से चेंज हुआ वायरस आपको अटैक करेगा, तो आपका फीवर एक हाई ग्रेड का आएगा, 101, 102, मे बी शायद कन्वेंशनल पैरासिटामोल को ये रिस्पॉन्स भी ना दे। बहुत ज्यादा आपको बॉडी एक होगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपसे काम नहीं होगा, सर दर्द होगा, ये सारी चीजें। और अगर ये अपर रेस्पिरेटरी के माध्यम से आएगा, यानी नाक से या गले से, तो गले में दुखन होती है, नाक का बहना होता है। और अगर ये थोड़े समय अनट्रीटेड रहे तो ये नीचे भी अपने आप को ट्रांसग्रेस करता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ, ये फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, जैसे कि खांसी में बलगम, और जो ऑलरेडी जो पीड़ित लोग होते हैं जैसे अस्थमा या सीओपीडी या जिनको निमोनिया पहले हो चुका हो, जिनका स्ट्रक्चरली लंग डिजीज है, तो उनमें ये सांस की भी प्रॉब्लम कर देता है।
0: यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ के साथ चलती रहती हैं, और ये मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे आपने कहा कि गर्मी से थोड़ा ठंडा होता है, ये बहुत कॉमनली होता है। आप अपने ऑफिस में अपने आसपास लोगों को देखेंगे जिनको खांसी आ रही है और 4-5 दिन से नॉनस्टॉप आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इलाज आप खुद घर में कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? क्योंकि आपका इलाज अगर कहीं उल्टा पड़ गया तो प्रॉब्लम क्या बढ़ सकती है, ऐसी बातें भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और नॉलेज पार्टनर है हमारे एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आज फ्लू के बारे में, वो फ्लू जो मौसम बदलते ही हो जाता है और आपको लगभग एक हफ्ता तक तो परेशान करता ही है. कई बार ये ज्यादा भी हो सकता है या फिर इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा समय तक हो सकते हैं. खांसी, जुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन है और हम इनको बहुत लाइटली भी लेते हैं. लेकिन कभी ध्यान से सोचा है कि ये मौसम बदलते ही आखिर हो क्यों जाता है, सर्दियों में या फिर ठंडे मौसम में ही क्यों होता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर रोहित, मौसम बदलते ही फ्लू हो जाता है, आपने कहा कि ये ठंडे मौसम में ही होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा. अभी तक हम 41-42 के बीच में थे और अब अचानक से ये जो वेदर है ये 30 के आसपास पहुंच गया है. ठंड हो गई है, एसी का इस्तेमाल लोग थोड़ा कम करने लगे हैं. अब ऐसे में बीमार बहुत कॉमनली हुआ जा रहा है. सो ये क्यों ऐसा वायरस, ये वायरस क्या है जो सिर्फ और सिर्फ ठंडे मौसम में ही होता है?
1: तो मैम, इसको समझने के लिए ना बेसिकली आप समझो कि अगर कोई वायरस पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में, मतलब तो मैं कहीं बैठा हूँ जहाँ पे किसी को है इन्फेक्शन, उसने खांसी करी, छींका या बात करी और उससे उसके वायरस जो है एयर ड्रॉपलेट से सस्पेंड हो गए एयर में. अब वो मैंने इनहेल करे या तो मेरे नोज के नोज की लेयर पे जाके उन्होंने डिपॉजिट हुआ या फिर मेरे गले की लेयर पे जाके डिपॉजिट हुए. अब क्योंकि अगर मैम सपोज करो वेदर थोड़ा कूल है या वेदर चेंजिंग है तो मेरी बॉडी एज इट इज स्ट्रेस में है, जो अडेप्ट करने में एनर्जी खर्च कर रही है टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वेदर. अब इस चक्कर में मैम क्या होता है, हमारी जो बैरियर मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे गले में या नाक में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमको, वो थोड़े से वीक हो जाते हैं. जब वो वीक हो जाते हैं तो मैम वो जो अटैच्ड वायरस पार्टिकल है वो अगर मैम उसको वहाँ पे एक बैरियर अगर वीक मिलेगा तो इजीली मैम वो वहाँ से फिर ट्रांसफर होके वो अंदर चला जाएगा, जिससे फिर वो एक बारी सिस्टमिक उसने अपना एक बारी बेसिकली अपना प्रेजेंस जमा लिया तो फिर वहाँ पे मैम वो सिस्टमिकली स्प्रेड करके वो कहीं पे भी कुछ भी इन्फेक्शन जैसे होता है वो कर सकता है. इसके साथ क्या होता है मैम कि जब आपका फिर बॉडी अब वेदर से अडेप्ट हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब वायरस को भी एक हल्का सा ही वायरस, कोई भी अगर सपोज करो अगर एक राइनो वायरस है या कोई भी वायरस है उसको भी अगर लड़ने में अगर एनर्जी जा रही है तो जो थोड़े से जो घातक वायरस हैं वो भी सस्पेंडेड हैं, वो भी अटैच थे, अब उन्होंने भी एंट्री गेन कर ली तो इस चक्कर में मैम एक वायरस ने गेट खोल दिया दूसरे ज्यादा घातक वायरस के लिए कि उसकी एंट्री हो जाने पे अब

0: सिम्टम्स उसकी वजह से आते हैं.
1: ओके,
0: इसलिए मैम ये
1: शुरुआत में था उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं. हाँ, ज्यादातर प्रॉब्लम आगे वालों से.
0: यूजुअली मैम यूजुअली यही पैथोफिजियोलॉजी होती है एक बीमारी वायरस इन्फेक्शन की.
1: Okay.
0: तो जब आपको मैम सर्दियां होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हमेशा हैंड हाइजीन, जिससे कि आप अपने हाथ से अपने नाक पे या मुंह पे आप वो वायरस को ट्रांसफर ना करें. जब आप एक पब्लिक स्पेस पे हैं, चेंजिंग वेदर है, कोल्ड है और देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब लोग पीड़ित हैं, तो अपना मास्क पहन के रखें. प्लस जब आप घर पहुंचे आपको लग रहा है आज आपका गला हल्का सा दुख रहा है, प्लस मैम ये वायरस का क्या है कि ये इट डजंट लाइक हॉट एनवायरनमेंट एट ऑल, ये उसमें फ्लरिश नहीं कर सकता. दैट्स द रीजन जब आप देखते हो कि लोग स्टीमिंग क्यों करते हैं, कि जब आप बाहर से आए हो अंदर अभी, तो आप इट इज एडवाइजेबल कि आप एक क्विक 5 मिनट्स 3 मिनट्स का एक सेशन नेजली या ओरली एक अच्छा स्टीम का सेशन करोगे तो आपको चांस प्रोग्रेस करने का बीमारी का कम हो जाता है.
1: बिल्कुल. सो यही चीज़ें जो थी कोविड में जनरली हमें कही जाती थी कि आप स्टीम लीजिए, गागल्स कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो यानी गर्म चीज़ों से इस वायरस को खतरा है वो ख़त्म हो जाता है और ठंडी चीज़ों में ये पनपता है. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना. तो मौसम अगर ठंडा है तो फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसे में आपको खुद को अगर आप इन्वायरमेंट वाइज गर्म नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आप को एटलीस्ट वो चीज़ें या थेरेपीज दीजिए जिससे आपकी बॉडी गर्म रह सकती है, जैसे कि आप गागल्स कीजिए, स्टीम लीजिए या हल्का गुनगुना पानी भी पीजिए, तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. डॉक्टर मुखर्जी, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लू होने के. बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको जो फ्लू है वो आगे जाकर कई बार निमोनिया में भी बदल जाता है, विच इज़ वेरी रिस्की. बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई है, पर बच्चों की थैंकफुली वैक्सीनेशन है, सो उससे निमोनिया जो है बच्चों में आजकल काफ़ी रुक रहा है.
0: तो यूजली मैम आपने देखा होगा जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बिलो दी एज ऑफ 5 or 6-7 ईयर्स हम लोग उनकी वैक्सीनेशन बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं. दैट इज द रीजन जिस घर में बच्चे वैक्सीनेटेड हैं दे डोंट फॉल वेरी सिक और क्रिटिकली सिक नहीं होते. उनको एक पासिंग वायरल फ्लू इन्फेक्शन होता है एंड देन दे आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट. एल्डरलीज में बात करूँ मैम तो एज वी एज वी फॉरगेट अबाउट वैक्सीनेशन, वी रिलाई ओनली ऑन आर बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे हम लोग अपना बाहर निकलना कम करेंगे, डाइट थोड़ी ध्यान रखेंगे. बट वैक्सीनेशन मैम बहुत ही क्रिटिकल है इस चीज में, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन जो आपके अंदर आने वाला है उसकी अगर प्रिपरेशन मैंने अगर आपकी बॉडी को करवाई है तो एटलीस्ट कुछ तो फाइट माउंट करेगा बॉडी. तो एटलीस्ट कल को इन्फेक्ट अगर आप होते भी हो तो सिवियरली इन्फेक्ट नहीं हो गया आप.
1: Okay.
0: तो यूजली वैक्सीनेशन का रोल ये नहीं है प्रिवेंट करना इन्फेक्शन, इट इज टू लेसन द लोड ऑफ इन्फेक्शन इंसल्ट जो होने वाला है एंड टू प्रिपेयर योर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्वेडिंग वायरस पैथोजन. तो ये वैक्सीनेशन का मैम अपना प्रिंसिपल है. एंड यूजली आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हु शुड टेक केयर मोस्ट इन दीज सिचुएशन, सो मैम आई वुड सजेस्ट एनीबडी हु हैज इम्यूनिटी, हुज इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे कि एस्थमेटिक्स हो गए या कोई अगर सीओपीडी का पेशेंट है या फिर किसी को अगर पुराना लंग का इन्फेक्शन बार बार होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको लंग्स के लिए दवाइयों के लिए बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, इनको तो प्राइमरली इनको वैक्सीनेट ईयरली जुलाई में होना ही चाहिए.
1: Okay.
0: So that ये जो next 8-9 months है changing weather के, इसमें इनकी बॉडी थोड़ी प्रिपेयर रहे.
1: बिल्कुल.
0: डायबिटिक्स हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, इन सबको
1: इनको ज्यादा चांसेस होते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के. और डॉक्टर साहब, क्या बार बार इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी बरसातों में हुआ एक बार, फिर 3-4 महीने बाद सर्दी आएगी, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इन्फेक्शन हो गया, क्या ये बहुत रिस्की होता है, इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं?
0: मैम रिपीटेड इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही सिवेरिटी बढ़ती जाएगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस ऑर्गेनिज्म अटैच हुआ था और किसने आपको उस वक्त इन्फेक्ट किया था, प्लस बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है. बट येस, इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप एक बार ही इन्फेक्ट हुए हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे ये अगली बार हो तो बहुत कम हो या हो ही ना. तो बहुत सी चीज़ें मैम, जैसे हम लोग अपनी डाइट में विटामिन डी हमारा बहुत लो हो जाता है जब ठंड होती है, क्योंकि या तो क्लाउडी वेदर होता है या फिर विंटर होता है, तो हम लोग को सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी अपडेटेड रखना जरूरी है. दूसरा मैम अपना एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि ये यूजली रेस्पिरेटरी अफ्लिक्शन होता है, तो आपको अपना कार्डियो और पल्मोनरी जो थ्रेशोल्ड है वो अच्छे से हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज करते रहोगे तो अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होगा, बॉडी रिकवर कर जाएगी. डाइट हो गया, एक्सपोजर टू एनी आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स, बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए,
1: खासतौर पर से बदलते मौसम में ठंड आने पर या हल्का ठंडा मौसम होने पर. तभी कहा जाता है कि अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि डाइट का असर सीधा आपकी बॉडी को ठीक फील कराने में होता है. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर से हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि आजकल लोग खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का या तो वक्त नहीं होता या फिर डॉक्टर की लंबी लाइन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं. बट एक्चुअली में करना क्या चाहिए, इस सिंपल से दिखने वाले फ्लू में आपको क्या करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप किसी भी शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। बस ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है फ्लू के बारे में। फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर और कोई वायरस जब अटैक करता है बॉडी पे तो आप हो जाते हैं बीमार। लगभग एक हफ्ता इसका असर रहता है इन जनरल केसेस। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए, ये कोल्ड और कफ बढ़ जाए, तो ये निमोनिया भी बन सकता है। अब ये निमोनिया बन सकता है या फिर आप इसको लेकर ज़्यादा सतर्क हैं और खुद ही दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है? हर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में धड़ल्ले से मिल रही एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में शायद आपने विस्तार से कभी सोचा नहीं होगा। तो आज सोचिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर रोहित, मेडिकेशन की बात करते हैं। जनरली क्या होता है, जब बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं। एक दो दिन तक तो हम इसी से ही काम चला लेते हैं। खांसी जुकाम होते हैं तो खुद ही जाकर दवाइयाँ जो है वो कफ सिरप लेकर आते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। अब जब 3 दिन तक इन चीज़ों का असर नहीं दिखता, फिर हम केमिस्ट के पास जाके जनरल केसेस में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। 3 दिन का वो कोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, आपको थोड़ी नींद भी आती है, आप थोड़ा थका हुआ भी फील करते हैं, पर 3 दिन के बाद आप काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर सकते हैं। क्या ये तरीका ठीक है केमिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स लेने का फ्लू में?
1: तो यूजली मैम, कभी भी किसी को फ्लू होगा तो पहले जो सबसे प्रमुख सिम्टम आएगा वो बॉडी एक आएगा, फॉलोड बाय फीवर होगा, थोड़ा सा गले में दर्द होगा या फिर नाक का स्टफीनेस हो जाना होगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि फर्स्ट डे यू शुड लाइन अप आउटसाइड अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक। आप इसको बेसिक मैनेज कर सकते हो एक पैरासिटामोल से। हमारे घर पे होना ही चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स, पैरासिटामोल होनी चाहिए। हमारे पास स्टीम के लिए कार्बोल की कैप्सूल्स आती हैं, जो मेंथॉल होता है इनके अंदर। आप क्लोव भी डाल सकते हो, आप जीरा डाल सकते हो। ये सारे देसी नुस्खे हैं जिनसे आपके गले में अटका हुआ जो बलगम है वो क्विकली इसको बाहर निकालेगा, जिसको म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहते हैं हम लोग। तो इट हेल्प्स इन डूइंग दैट, जिससे इनिशियल वायरल लोड न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो एक्सपेल हो जाता है, एटलीस्ट बेसिक जो हम कर सकते हैं। अगर मैं अज्यूम करो ये फीवर day 1, day 2, day 3 तक अगर परसिस्ट कर रहा है, यानी हाई ग्रेड फीवर है, 101-102 का है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसके बाद अब आप फार्मेसी पे जाके अपनी दवाई लो। आई वुड सजेस्ट यू रीच योर जो आपका हाउस होल्ड डॉक्टर है, ही विल प्रॉब्ली मे बी स्टार्ट यू ऑन मे बी एन एंटीबायोटिक, बिकॉज इफ बाई day 3 द फीवर इज नॉट सेटलिंग एंड इट इज ओनली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स हेल्प। आप उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ सकते, तो मे बी ही विल स्टार्ट यू ऑन अ बेसिक एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री। एंड अज्यूम करें मैम कि उसके बाद भी day 4, day 5 हो गया, 2 दिन एंटीबायोटिक के भी हो गए, फीवर सेटल नहीं हो रहा है, खांसी है, देन आई वुड सजेस्ट टू मे बी प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन सच एज ब्लड टेस्ट और अ चेस्ट एक्सरे। आप अपने आप से नहीं करा सकते ये, क्योंकि ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही डिस्कस करने के बाद आप नतीजे पे आते हो कि किसी को एक्सरे कराना है या नहीं कराना है। आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी है, नहीं करानी है, एंटीबायोटिक कौन सी स्टार्ट करनी है। हर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है, इट इज नॉट लाइक कि वन शू फिट्स ऑल। कोई किडनी पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई एज ग्रुप अलग है, कोई फीमेल है, कोई प्रेगनेंसी में है, सो एवरी एंटीबायोटिक हैज टू बी चोजन एग्जैक्टली एज पर द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दवाई मैम कभी भी क्लिनिक फार्मेसी से डायरेक्टली जाके आप एक फार्मासिस्ट की सजेशन से तो नहीं लेनी चाहिए।
0: ये रिस्की हो जाता है बहुत सारे केसेस में, और बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि ये आदत ही होती है कि मेडिकल स्टोर से जाके ले लिया और उसके बाद काम पे चले गए।
1: हम 10 में से 9 बार आप शायद निकल जाओगे, बट एक बार अगर आप उसमें अगर आप फंस गए तो दैट विल लीड टू सम ऑर द अदर इवेंचुअलिटी, जिसमें आपको फिर मेजर कोई प्रॉब्लम होने का चांस है।
0: इसमें क्या नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आपको ये सारी आदत पड़ गई कि आप खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं?
1: तो मैम हर बारी तो बॉडी माउंट नहीं कर पाएगी वो फाइट जो जरूरी है। एक ना एक दिन मैम वो इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जब शुरू में होता है तो वो सेल्फ लिमिटिंग ही होता है, बट अगर कोई बहुत ही घातक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए या बी है, वो भी चेंज इन्फ्लुएंजा ए बी जो अभी नया सीजन में आया है, तो मैम वो हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करा के निमोनिया तक प्रोसीड प्रोग्रेस करा दे। आपको इनिशियली पता ही नहीं चलेगा कि निमोनिया हुआ है नहीं हुआ है, और आप एंटीबायोटिक ले रहे थे किसी के कहने पर जिसने एग्जामिन भी नहीं किया। तो बाय द टाइम यू रीच टू अ डॉक्टर हु इज इन अ हॉस्पिटल और वो एक्सरे कराता है, तो आपको पैच दिखना शुरू हो जाता है एक्सरे पे। इन दैट केस नाउ यू आर नोवेयर, मतलब आपको इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे आपको एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल्स एडवाइज हो जाएंगी, आपके ब्लड टेस्ट बढ़ जाएंगे, आपके शायद मे बी सीटी कराना हो, बलगम की जांच करानी हो, तो ये अननेसेसरली अवॉइड हो सकता है अगर आप टाइमली एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डॉक्टर से अगर आप लो।
0: जी बिल्कुल, यानी एक अच्छे डॉक्टर से मिलना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो या छोटी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर रोहित, मैं जानना चाहती हूँ कुछ कफ सिरप्स के बारे में, कफ सिरप या फिर कुछ ऐसे सिरप्स जिनको हम खांसी जुकाम में इस्तेमाल करते हैं, हम खुद जाते हैं और खुद खरीद लेते हैं। अब बहुत सारे कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है, आपको नींद आती है, और ऐसे में अगर आपको खांसी जुकाम है और आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटी एलर्जिक कोई दवाई आपने ले ली, तो उसके बाद आप ना ड्राइव कर सकते हैं ना आप काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि खांसी जुकाम की दवाइयों में इतनी ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है?
1: तो मैम, हर कफ सिरप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल्स जो होते हैं ना, उनका अलग एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो जैसे मैम, एक ड्रग है, लेट्स से ए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ड्रग है ए जो कफ सिरप ब्रांड के नाम से आता है, वो उसका काम है बलगम को निकालना, सांस की नलकियों को खोलना, और बेसिकली कफ को सेंट्रली दिमाग से सप्रेस करना। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पेशेंट के लिए हुआ। दूसरा होता है जो ड्राई कफ होता है, लेट्स से वो एक ड्राई कफ किसी रीजन से है जिसमें कोई बलगम ही नहीं बनता है, तो उसको मैम हम लोग सप्रेस फिर अगेन सेंट्रली करते हैं, यानी ब्रेन से करते हैं, तो वो थोड़ा ड्राउजी करता है। अब इस सोचो मैम, इस ब्रांड की दवाई को मैंने वो दे दिया उस पेशेंट को जिसको खांसी बलगम वाली थी, तो ये मैम ये कौन डिसाइड करेगा किसको कौन सी लेनी है? तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। अब एक फार्मासिस्ट को इतनी नॉलेज तो होगी नहीं, वो तो मे बी शायद जो दवाई सबसे ज्यादा निकल रही है, चल रही है, जो पड़ी हुई है शेल्फ में, वो दे देगा आगे। अब उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली कि पुरानी उसको कोई मेडिकल बैकग्राउंड है कि नहीं है, उसका वर्किंग ऑक्यूपेशन कैसा है, बहुत ही क्लिनिकल या फिर बहुत ही प्रिसीजन वाला है, तो उसको बी ब्रांड की दवाई देनी ही नहीं है। सो मैम, एक और ब्रांड की दवाई आती है जो सी होती है, तो इस ब्रांड ऑफ सी मेडिसिन में मैम किसी किसी को बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, तो ये जब होती है तो बता के रखना होता है पेशेंट को कि हाथ में कंपन, घबराहट, दिल का धड़कन बढ़ जाना, महसूस होना हो, तो ये बंद होनी चाहिए। अब पेशेंट ने अगर एक दो चम्मच लिया और ये हो रही है, तो उसके बाद उसको दोबारा डोज नहीं लेनी, ये बताना होता है। तो मैम ये सारी चीजें एक डॉक्टर के साथ बैठ के टेबल पे कंसल्ट हो सकती हैं। ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेके घर आ जाओगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर अ डे और टू, एंड बाय डे टू यू विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे प्रोग्रेस कर चुकी है मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट है। तो जो बीमारी का साइड इफेक्ट जो था वो तो अलग, अब एक दवाई का भी साइड इफेक्ट आ गया। तो ये चीजें मैम,
0: तो ये तभी खुद से जो दवाइयां ले लेते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो दवाई है, आपके घर में बच्चा या बड़ा बीमार है, उसको वो प्रिस्क्राइब की गई है, जरूरी नहीं है कि वो ही कफ सिरप आपको भी सूट करे। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत सारी और भी बातें हैं, आगे बात करेंगे वायरल या फ्लू को लेकर वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और किस उम्र में लगानी चाहिए, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में, खास तौर पर से फ्लू बदलते मौसम में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर किसी को कभी ना कभी तो परेशान करती है। लेकिन अगर ये फ्लू बहुत ज्यादा होता है तो फिर इसका सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वैक्सीन्स हैं मार्केट में, लेकिन वैक्सीन अगर आपने लगवाई नहीं है तो फिर कैसे बच पाएंगे। सो यही सारी बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी से, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर रोहित, वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन जो है वो अपने आप में एक रामबाण कहते हैं जिसको, कि अगर आपने लगवा ली तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि किस उम्र में लगवानी चाहिए। जैसे बच्चों में जनरली इन्फ्लुएंजा के डोजेस लगी होती हैं और आजकल जो चार्ट बन रहा है उसमें निमोनिया की भी वैक्सीन होती है, लेकिन बड़ों में आते आते आजकल जो हमारी जनरेशन है इनको शायद बचपन में हम लोगों को नहीं लगी है सारी वैक्सीन्स। तो क्या उम्र होती है फ्लू से बचने की वैक्सीन की और कितने ड्यूरेशन में लगवानी चाहिए?
1: मैम, बच्चों में तो खैर वैक्सीनेशन फ्लू की कवर होती ही है, अप टू द एज ऑफ 5 तक तो चलती ही है। उसके बाद मैम आई वुड सजेस्ट जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं ईयरली एक वैक्सीन हमारी जुलाई में लग जानी चाहिए बच्चों को, सो दैट उनको रिपीटेड ईयरली इन्फेक्शंस ना हो, स्पेशली उन बच्चों में जिनको एस्थमा है या जिनको एलर्जी है या जिनको कोई भी ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो शायद उनकी इम्यूनिटी डाउन है, या मे बी शायद स्टेरॉइड्स पे हैं या मे बी शायद किसी और मेडिसिन पे हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी लो चल रही है, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि मैम ग्रोथ
0: ज्यादा लोगों में आ जाते हैं।
1: मैम जहाँ पे ग्रोथ अगर हैम्पर नहीं चाहिए अपने बच्चे की, जिसमें है कि 12 महीने उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, एक क्लासिकल ग्राफ अपवर्ड रहे, तो आप नहीं चाहोगे बच्चा कभी भी ज्यादा समय के लिए बीमार रहे। तो आपको वैक्सीनेशन करा के अगर एक वो आपको एक प्रॉब्लम फ्री पीरियड मिल रहा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। रही बात मैम अबव 18, तो यूजली मैम अबव 18 का अब इंडिया में भी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं वो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि ईयरली जुलाई में लगा लेनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोफेशन कैसा है, आपका वर्क कल्चर कैसा है, या फिर आपकी इम्यून बॉडी का क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है। अगर आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, रिपीटेडली डायलिसिस पे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, या आपका पब्लिक इवेंट्स पे आपका रहता है, एक्सपोजर रहता है, तो यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड सो दैट टू अवॉइड कि आपका कभी भी सिवियर इन्फेक्शन ना हो। यूजली मैम इसकी कोई एज नहीं डिफाइंड है इसमें, इट इज एडवाइजेबल एज पर पेशेंट टू पेशेंट। यू कैन हैव एनीबडी टेक द वैक्सीन एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ये है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कल को इन्फेक्शन होगा तो बहुत सिवियर नहीं होगा, बहुत ही माइल्ड होगा, ओपीडी बेसिस पे या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन पे घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: यूजली मैम वैक्सीनेशन का अप टू द एज ऑफ 60-65 तक यही रहता है, बट अब 65 के अगर ऊपर चले जाते हो तो डिपेंडिंग ऑन अगेन ऑन हिस्ट्री मैम, सपोज करो किसी को किडनी डिजीज ही नहीं है, एस्थमा नहीं है, डायबिटिक नहीं है, दैट मींस वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, बट स्टिल इट डजंट मीन कि उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ ही हैज एज्ड, हिज ऑर्गन्स हैव एज्ड,
0: सो ऑलरेडी वो एक इम्यूनिटी तो वीक
1: हो गई है, सो इवन दे शुड टेक वैक्सीन्स, जो कि हमारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स जो है, जो मैम एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर हमारी वैक्सीन्स का जो स्ट्रेन होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये लोग हमेशा अपडेटेड वैक्सीन्स जो होती है अपने डॉक्टर से पता करके कौन सा स्ट्रेन का वैक्सीन लगवाना है वो जुलाई अगस्त में लग जाना चाहिए।
0: यानी हर साल आपको ये लगवा लेना चाहिए और एज कोई भी हो, आप बच्चों की जो उम्र है 10-11 साल से शुरू करके हम 70 तक आराम से 70-75 जैसे भी डॉक्टर,
1: as long as you're alive, I would say कि वैक्सीन अगर लग जाए तो कोई आपको नुकसान है ही नहीं वैक्सीन का।
0: बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासतौर पर से फ्लू से बचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो देखा है अभी तक फ्लू हर किसी को कभी ना कभी तो इफेक्ट करता ही है, और उस इफेक्ट से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जो कि बहुत इजीली आपके डॉक्टर लगा सकते हैं आपको और बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी तरफ तो जरूर बढ़ लेना चाहिए।
1: एक चीज मैं बताना चाहूंगा मैम, जैसे मेरी डेली प्रैक्टिस में जैसे मैं निमोनिया के पेशेंट्स देखता हूं, तो मैंने अगर मैं एक कंपैरेटिव एक ग्रुप्स बनाऊं पीपल हु आर वैक्सीनेटेड वर्सेस पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो जो अधिकतर लोग जो एडमिट होते हैं 99% जो लोग होते हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप से होते हैं, 1% या 2% होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हो या उनका शायद कोई अंडरलाइंग कोमॉर्बिड डिजीज जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर या रिकरेंट किडनी की वजह से डायलिसिस हो या हॉस्पिटल एक्सपोजर है, तो वो कभी निमोनिया की गिरफ्त में आ गए और वो एडमिट हो गए। तो 99% मैम वही लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, क्योंकि पहले वायरस अंदर आता है, फिर वो बैक्टीरिया को अंदर आने देता है, और फिर वो अंदर बैक्टीरिया जो है पूरा अपना निमोनिया की तरफ उसको ले जाता है पेशेंट।
0: जी बिल्कुल, यानी वैक्सीन के बहुत से फायदे हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम बड़ी ना हो उससे बचने के लिए वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं टीनेजर्स की या बच्चों की, अगर इनको हम फ्लू की वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे जिससे बच्चा जो है वो 2-4 दिन या फीवर आएगा? जनरली वैक्सीन में ये होता है
1: मैम। यूजली ये वैक्सीन्स ना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं। बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि इनके अंदर एक वायरस पार्टिकल होता है जो लाइव होता है, बट वो बहुत ही उसको सबड्यू कर दिया गया होता है कि ताकि वो क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं करा सकता, बट सब क्लिनिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि हल्का सा बॉडी एक आध दिन का या मे बी रनिंग नोज हो। इट इज सो एज टू चैलेंज द बॉडी। जब बॉडी चैलेंज होती है तभी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो यूजली मैम ये उस पेशेंट में अगर आप लगाओगे जिसको कोई अगर एलर्जी है, तो बहुत देख के लगाना होता है, बता के लगाना होता है। अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप उसको लगाओ। मे बी एक दिन का उसको आप बता सकते हो कि घर पे अगर सिम्टम्स आएंगे तो एक पैरासिटामोल लेनी है। और कोई इसका मैम थर्ड साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई।
0: बिल्कुल, यानी बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब साइड इफेक्ट ही किसी चीज के इतने खास नहीं है और आप इससे बच भी पा रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो इसकी तरफ बढ़ना जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद एक खास सोल्यूशन आपके लिए, कैसा होना चाहिए लाइफस्टाइल, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: Feel Good Feel Live Radio Manav Rachna 107.8 FM program ka naam hai All Is Well jisse support kiya hai SSB Heart and Multi Speciality Hospital Faridabad ne. Baatein chal rahi hain flu ke bare mein. फ्लू यानी मौसम बदलते ही होने वाला इन्फेक्शन जो कि बहुत ईजिली आपको कोल्ड का फीवर दे सकता है, बॉडी एक दे सकता है, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है. हमारे साथ डॉक्टर रोहित मुखर्जी हैं, हमारे खास मेहमान, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. सो डॉक्टर रोहित, अब मैं चलते चलते आपसे सिर्फ दो तीन चीज़ें ही जानना चाहती हूँ कि आखिर जब किसी को फ्लू हो जाता है So, वो ऐसी सबसे बड़ी गलती क्या करता है जो बहुत नेगेटिव हो जाती है उसके लिए?
1: मैम, यूजली जो मैं ओपीडी में इंकाउंटर करता हूँ, जो सबसे बड़ी गलतियाँ लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं कि खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं भाई, डे 3, 4, 5, 6, 7 तक करते हैं, फिर एक लोकल क्वैक के पास जाके कोई बहुत ही भारी एंटीबायोटिक लेके उसको लेके आते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते और वो तब तक प्रोग्रेस कर चुकी होती है बीमारी टू दी स्टेज ऑफ निमोनिया और मे बी समथिंग एल्स, जहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है. तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ ऐसी ना करें. जैसे मैंने बताया कि डे 2 तक घर पे अपना बेसिक फर्स्ट एड केयर, पैरासीटामोल, स्टीमिंग, बाय डे 3 अपना लोकल डॉक्टर को दिखा के, बाय डे 5 तक है तो फिर इन्वेस्टिगेट करके इसको हम लोग टाइमली चेक करके इसको प्रोग्रेस नहीं होने देंगे फिर हम. सेकेंड मिस्टेक है मैम कि जो मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग कभी कभार जब हमें जो एडल्ट मेल्स हैं वो कहते हैं कि सर कभी कभार हमने ब्रांडी ले ली या रम ले लिया, तो मैम वो इट्स आई वुडन्ट से इट्स क्या कहते हैं इट्स अ मिथ है, लेकिन मैम ये चीज़ कोई कोई डिफाइंड या फिर कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ब्रांडी से या रम से कहीं पे भी फ्लू ट्रीट होता है. इनफैक्ट रादर अल्कोहल ओनली गोज ऑन टू डिप्रेस योर इम्यूनिटी साइकिल, जो थोड़ा सा भी फाइट करने की जो माउंट करने की कोशिश कर रही थी वो सप्रेस हो जाता है, जिससे कि अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑनस्लॉट, नेक्स्ट वायरल का जो है बैक्टीरियल इन्वेजन है वो और ईजी हो जाता है बॉडी के लिए. थर्ड में मिस्टेक है कि आप अपना क्या कहते हैं खुद ही घर पे आप इसको वेट कर रहे हो, या आप एस्थमेटिक हो, या फिर आपकी कोई इम्यूनिटी आपकी वीक है, स्टेरॉइड्स पे हो, डायलिसिस पे हो, COPD पेशेंट है, और आपके डॉक्टर्स के कहने पे भी आपकी जो दवाइयाँ हैं वो ठीक से नहीं चल रही हैं, आप ले नहीं रहे हो घर पे, तो ये चीज़ों से मैम आपका अंडरलाइंग लंग का जो आपका प्रिजर्व है वो पुअर होता जाता है, जिससे अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो आपका बिल्कुल ही सांस जो है फूलना शुरू हो जाएगा. तो मतलब जो दवाइयाँ लिखी हैं डॉक्टर से वो बिना उनके बोले बताए कम भी नहीं करनी, बंद तो बिल्कुल भी नहीं करनी. तो ये तीन चीजें
0: जी, यानी दवाइयां मिस ना करें और साथ ही अल्कोहल की तरफ ना जाएं. ब्रांडी जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये ठंड में ले लेनी चाहिए, ठीक रहता है, तो जब आप ठीक हैं तब अगर ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जब आप बीमार हैं और फिर उसको ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? जैसे अक्सर हमने देखा है स्कूल जाते हुए बच्चों को पेरेंट्स छुट्टी नहीं करवाते हैं कि अटेंडेंस कम हो जाएगी, लेकिन उनको कोल्ड कफ रहता है, तो क्या ये ठीक है?
1: मैम मेरी राय यही है कि बच्चे अगर बात कर रहे हैं घर पे, हम लोग जो कर सकते हैं मैम उनकी डाइट में उनका विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के उनका विटामिन डी पूरा रखना ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक रखना ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में होने चाहिए, ना कि फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड. डेफिनेटली मैम अगर बच्चे को कोई फीवर विद अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे छींकें हैं, खांसी है, उनको मैम अवॉइड करना चाहिए भेजना स्कूल, ताकि दूसरे बच्चों को ना हो. नहीं तो आप देखें मैम इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन कि एक को होता है और पूरी क्लासरूम इज caught in the grip of viral infections. Secondly, मैं कहूँगा कि हमारे जो घर पे हम जो चीज़ें कर सकते हैं टू सेव ourselves फ्रॉम दिस वेरी कॉमन इन्फेक्शन विच मे प्रोसीड टू अ सीरियस इन्फेक्शन, कि हम लोग मैम अपना एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, अपनी मेडिसिन अगर कोई चल रही हैं तो टाइमली लेते रहें, वैक्सीनेट बिल्कुल कराना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट. एंड मैम लास्ट थिंग इज़ कि अगर कभी घर पे अगर हम लोग आते हैं बाहर से किसी पब्लिक गैदरिंग से या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, जब सीजन चेंज चल रहा है, जब पता है कि आसपास लोग खांस रहे थे, तो एक क्विक सेशन ऑफ स्टीमिंग विद मे बी क्लोव और मे बी जीरा, ये हम करके 5 to 7 minutes करके ये हम लोग अपने आप को थोड़ा सा एटलीस्ट प्रोटेक्शन इम्पेयर कर सकते हैं, अपने इम्पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कोई वायरल लॉज हुआ था तो वो डीनेचर हो जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए.
0: बिल्कुल, यानी वायरल को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप जनरली अवॉइड कर जाते हैं प्लीज़ मत कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा. सो डॉक्टर रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपने बहुत जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है ना वायरस को लेकर, वायरल इन्फेक्शंस को लेकर, फ्लू को लेकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चीज़ें आपने बताई कि किस प्रोसेस से ठीक होगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम.
0: तो फिलहाल फ्लू के बारे में बात हमने कर ली है, उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने मैसेजेस में बता सकते हैं अपनी राय 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। फील गुड फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम सत्यमेव जयते। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, और कभी मैं अकेला होता हूं तो कभी मेरे साथ मेहमान होते हैं और बात करते हैं आप ही लोगों के अधिकारों के बारे में। अधिकार की जब बात आती है तो हमें एडवोकेट याद आते हैं, और आज मेरे साथ एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम है शीला असवानी। शीला जी, सबसे पहले मैं आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं एडवोकेट शीला असवानी रेडियो मानव रचना से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: जी, और देखिए शीला जी, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब कानून की बात आती है, लोगों के अधिकारों की जब बात आती है। आज हम बात करेंगे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को यही बताइए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये क्या है?
1: क्या है ये? जी सर, देखिए हमारे इंडियन पेनल कोड और हमारा CRPC प्लस हमारा एविडेंस एक्ट, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम के जमाने के बने हुए हैं लॉज। आप ये देखें कि इंडियन पेनल कोड IPC शॉर्टकट में IPC बोलते हैं हम, ये हमारा 1860 का बना हुआ है, डेट मीन्स आज़ादी से पहले का ही है। और प्लस हमारा जो CRPC है वो 1974 का बना हुआ है, ये भी अंग्रेजों के टाइम का था लेकिन थोड़ा सा अमेंड करके इंडियंस ने अपना इसका इंडियंस के नाम दे दिया गया, लेकिन है तो ही अंग्रेजों के टाइम के जमाने का ही। और आप देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, ये भी 1872 का बना हुआ है। ये हमारे सारे लॉज हमारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं सर। ये तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, आज का जमाना अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आप ही देखिए कि उस टाइम पे किसी घर में फोन भी नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: फोन तो बहुत दूर की बात है कि जो लैंडलाइन फोन वो भी नहीं होते थे। यानी एक घर में है तो चार घर में नहीं होगा, और हम उस टाइम बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, अच्छा फोन आया है, बहुत इंतजारी होती थी। अब तो फोन की इंतजारी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं। और किसी को सूचना देनी होती थी, तार के माध्यम से सूचना जाती थी जिसको हम टेलीग्राम्स बोलते हैं। तो अगर किसी घर पे अगर तार आ जाए ना तो समझो तो उसके हाथ पर फूलने लग जाते थे कि ये क्या क्या न्यूज, कोई बैड न्यूज आई है, कोई बुरी खबर आई है। तो अब आप देखिए कि आजकल के टाइम में आजकल के टाइम छोड़िए, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि फास्टेस्ट सर्विस किसकी होती थी? एरोप्लेन की। और आज के टाइम में फास्टेस्ट सर्विस है आपकी मोबाइल की, विद इन कुछ सेकंड के अंदर किसी के पास सूचना पहुंच जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है ये हमारे उस टाइम पे नहीं था, तो उस लॉज के अंदर भी, ये हमारे कानून के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था। तो इसलिए प्रावधान हमारे चेंज किए गए हैं, पनिशमेंट चेंज की गई है, बहुत सी कुछ चीजें हैं जो रिफॉर्म किया गया है। यानी हमारे जो न्यू लॉज है वो हमारे भारतीयों के फेवर के लिए है। भारतीयों के फेवर के लिए कि भारतीयों को दंड ना मिले बल्कि उनको न्याय मिले। तो भारतीयों के न्याय के लिए ये हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए।
0: तो ये जो लॉज बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना है हमारी मेहमान शीला असवानी जी का। और शीला जी देखिए, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हैं, और उसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं एक गाना, और उसके बाद लौट करके आता हूं आज के मेहमान एडवोकेट शीला असवानी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी, हाई कोर्ट दिल्ली में है और आज बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवालों का जहन में उठना स्वाभाविक है। शीला जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है
1: जी।
0: लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं घर में, घर से बाहर। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के लिए हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई भी नागरिक देश का कंप्लेंट अपने किसी थाने में देना चाहता है, उसके लिए उसके क्या क्या अधिकार हैं?
1: जी सर, थाने में अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मान लो कि किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी है, उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो अगर वो क्रिमिनल नेचर का है, क्रिमिनल अपराध है, तो आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर थाने वाले आपके पुलिस स्टेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप ई एफआईआर कर सकते हैं। पहले हमारे जो पुराने लॉज है सीआरपीसी, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारी उस टाइम नहीं थी, आज के में टेक्नोलॉजी है, तो आप ई एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ई एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर वहां पे साइन करने जाना होगा। बिना साइन के आपकी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी।
0: ये तो जो आपने बताया EFIR, EFIR क्या है हमारे श्रोताओं को जरा
1: ये इलेक्ट्रॉनिक FIR है कि आप अपने फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन में अपनी EFIR के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे थाने के अंदर साइन भी करना होगा। हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे की आड़ में रहती हैं और जिनका पुलिस स्टेशन तक अप्रोच नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं या उन्हें कुछ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फ़ोन तो सबके पास होता है, वो अपने इस फ़ोन से पुलिस स्टेशन में मैसेज भी कर सकती हैं, फैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं या EFIR भी दर्ज कर सकती हैं। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल भी आती है कि आपके यहाँ से ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, बताइए क्या बात है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये लॉ बनाया गया है। सपोज कि अगर एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि जहाँ पे वारदात होती है आप उसी थाने में जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे पुराने लॉज में थी। अब जो न्यू लॉज हमारा आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसके अंदर एक प्रावधान और ये भी कर रखा है कि जहां पे घटना हुई है वहां पे तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे दूर है, उस घटना स्थल से दूर है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन अपने गांव में रहता है, गांव में कोई घटना हो गई है या उसका मकान हड़प लिया या कोई वारदात हो गई है, वो अब दिल्ली में है, आप कमाने के लिए आया है, अब वो गांव जाएगा तो इतने में तो सारे सबूत मिट जाएंगे, ठीक है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो वो जहां अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी अपनी EFIR या वहां के लोकल थाने के अंदर भी अपनी कंप्लेंट या अपनी FIR दर्ज करा सकता है ताकि उसको इंसाफ मिले। गांव पहुंचते उसके 2 दिन लग जाएंगे, तो ये प्रावधान यहाँ पे दे रखा है कि आप कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं कि सपोज कि उस पर्सन का जिस स्थान, जो पर्सन जहाँ पे रहता है, जहाँ घटना हुई है, वहां पे थाने के अंदर कोई मोनोपोली है, ठीक है, या फिर कोई प्रेशराइज है किसी पॉलिटिशियन का, वो उसकी दर्ज नहीं कर रहे कंप्लेंट, तो किसी और थाने से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, इरिस्पेक्टिव एरिया। ये मेंशन किया गया है FIR के अंदर, इरिस्पेक्टिव एरिया, EFIR हो गया आपका, ऐसी बातें इसमें दर्ज की गई। तो बहुत ही अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में BNSS में
0: जी। और दोस्तों देखिए, क्या है कि धाराएं होती हैं, आपके अधिकार होते हैं, उनसे जुड़ी धारा

0: होती हैं। और जैसा कि बताया शीला जी ने कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और वहाँ नहीं होती है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है शीला जी। और भी सवाल है, मैं आपसे करता रहूँगा, फिलहाल अपने दोस्तों को अभी एक गाना सुना देते हैं।
1: जी जी जरूर सर।
0: चलिए दोस्तों, आप गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा से आता हूँ आज की मेहमान एडवोकेट शीला असवानी जी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते में आज हमारे साथ एडवोकेट शीला असवानी हैं, हाई कोर्ट दिल्ली से। न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में बातें हो रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बातें पीछे बताई थी न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिटी सर्विस है
1: जी,
0: इसके बारे में क्या लॉज हैं?
1: जी जी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर। कम्युनिटी सर्विस हमारा जो हमारे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता नाम से पता लग रहा है कि भारतीयों को न्याय देना। और इंडियन पेनल कोड का मतलब अब इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया, दंड इसको मिलेगा भारतीयों को। तो एक तो नाम चेंज किया गया है कि हमारा आईपीसी हटा के हमारा अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता की नागरिक जो हमारे इंडियंस हैं उनको न्याय मिले। और इसके तो बहुत सी बातें, बहुत प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म किया गया है। इसमें एक रिफॉर्म और भी किया गया पनिशमेंट में, कम्युनिटी सर्विस। हमारी 5 टाइप की हमारी पनिशमेंट पहले थी और वही 5 पनिशमेंट यहाँ भी रखी गई है, साथ में एक पनिशमेंट और जोड़ दी गई है। 5 पनिशमेंट हमारी थी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया आपका, और आपका ये प्रॉपर्टी टू फॉरफीचर, फाइन्स हो गए, ठीक है। और इसमें एक पनिशमेंट और जोड़ दी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, नाम कम्युनिटी सर्विस से लग रहा है कि सामुदायिक सर्विस करना, सेवा करना। तो सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, ठीक है, और उसका जो चोरी का अमाउंट है वो लेस देन 5000 है, लेस देन 5 में 4999, लेस देन 5000 रुपीज से, और पहली बार चोरी करी है। तो कोर्ट बोले कि भाई देखो ये कहीं जेल में जाके कहीं बेस्ट क्रिमिनल बन के ना आ जाए, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस देगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि चलो उससे पेड़ पौधे लगवा दिए भाई, इतने 100 पेड़ पौधे लगा दे जरा, ठीक है, और ये काम कर दो, वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनसे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, इतना टाइम दे रखा है, इतना टाइम स्पेंड कीजिए। मीन्स कम्युनिटी, जिसको कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ऐसी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है अगर इसने फर्स्ट टाइम चोरी करी। और भी प्रावधान है इसके अंदर
0: जी,
1: ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस, ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इसमें। दैट्स कम्युनिटी सर्विस एक तरह की पनिशमेंट ही है।
0: ओके,
1: ऐसा नहीं है कि हमारा ये भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। आप देखिए कि जुवेनाइल जो एक्ट है, बच्चों के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, कोड बनाए गए, उसके अंदर भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी कुछ हमारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस दी जाती है।
0: जी, कम्युनिटी सर्विस क्या है और कम्युनिटी सर्विस आपको किस तरह के अधिकारों के साथ जोड़ती है? और देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। अब साथ में हमारे वकील साहिबा हैं तो आपको तो पूरी जानकारी है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है शीला जी कि सवाल अभी ख़त्म हो गए।
1: नहीं, से पूछिए आप सवाल।
0: हाँ, मैं सवाल और भी पूछूंगा, लेकिन सवाल और जवाब के साथ साथ लोगों को गाने भी सुनवाते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके साथ आपके कार्यक्रम सत्यमेव जयते में।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। आज की हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी। बात हो रही है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। शीला जी, आपने अभी कुछ बातें बताई थी, बहुत अच्छी जानकारी थी वो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस उसको सर्च करने के लिए उसके घर जाती है, तो उसको वीडियो बनाना या कोई ऑडियो बनाना, इस तरह से कवर करना, ये ज़रूरी होता है या वो ना करे तो चलेगा?
1: नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो ये बनाए गए हैं लॉ इसके ऊपर कि अगर कोई पुलिस सर्च करने जाती है किसी एक घर पे और उसमें सर्च में जो आर्टिकल्स निकलते हैं
0: जी,
1: उसकी पूरी ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी।
0: ओके,
1: ये बहुत ज़रूरी है सर। वो इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस कोई प्लांट खुद ना कर दे, खुद ना वहाँ पे लगा दे आर्टिकल्स की हाँ ये रिकवरी हुई है वहाँ से, तो उसकी एक ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी कि हमने ये सामान रिकवर करा है, हमने ये आर्टिकल्स रिकवर करे हैं। और जो लिस्ट बनाएंगे उसकी भी ऑडियो वीडियो होगी उसकी, और प्लस जो दो विटनेस साइन करेंगे उनका भी रिकॉर्डिंग होगा। और ये पक्का है, ये पक्का उनको करना है, इससे वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फौरन विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के वो ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेंगे डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को फौरन फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उस ऑडियो या वीडियो में कोई टैम्पर ना किया जाए।
0: लेकिन अगर पुलिस वाले गए हैं उनको सर्च करने के लिए और किसी भी तरह की वीडियो वो नहीं बनाते हैं, तब क्या होना चाहिए?
1: उन्होंने फिर राइट का उल्लंघन किया है सर, क्योंकि प्रावधान हमें यही कहता है कि उनको बनाना है
0: जी,
1: और जरूर बनाना है, 100% बनाना है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया है अपना, तो राइट्स तो वॉलेट हो ही रहे ना पब्लिक का, तो क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 105, तो ये प्रावधान दे रखा है, ये पुलिस वालों को करना ही करना है सर्च एंड सीजर के टाइम पे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान दे रखा है
0: जी।
1: जी
0: तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है शीला जी। अब देखिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेकिन समय और ज्यादा नहीं है
1: जी,
0: इसलिए आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है।
1: मैं तो यही कहूंगी सर सबसे कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, जो सोता है वो खोता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमें तो अपने कानून के बारे में पता ही नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, और कोई अगर पर्सन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं अपने कानून के बारे में, तो ये बात गलत है, इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। आप अपने अधिकारों को जाने, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उन पे भी अपनी क्यूरीज डाल के अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सर्च कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल शीला जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियां सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद सर। कहना चाहूँगी कि रेडियो मानव रचना का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और रूबरू कराया ऑडियंस के साथ, थैंक यू सो मच सर।
0: जी तो दोस्तों, अब फहीम भी आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगा कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।
1: शुक्रिया।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्मों जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे। तुमने कभी किसी में किसी को पाया? पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है, और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़, जैसे सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं, ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती है। सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती है। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती है। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐस के बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे, सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते, और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए, तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है। लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूदी मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता, मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था, लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं, अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है, ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है, 70 साल में पूरी हो जाती। जन्म के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू होता है, मरने के साथ पूरा होता है, लंबी प्रक्रिया है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन पर फैली है। जैसे झील पर लहरें फैली हों ऐसे जीवन पर मौत फैली है। अगर तुम मौत को छिपाते हो, ढांकते हो, बचते हो तो तुम जीवन के सत्य को ना देख पाओगे। जिसे तुम जीवन कहते हो इस जीवन का सत्य तो मृत्यु है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। सूरज उग चुका है, ढलने में ज्यादा देर न लगेगी। जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है,
सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई। जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है। जिसको तुम भर जवानी कहते हो वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है, लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन मत समझना, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो। जिसे तुम दुनिया कहते हो, तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए, भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे? जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते हैं। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो। अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़,
तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भौरों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में, तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, या उसके भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती।

लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता, हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे, न तो संसार का सवाल है न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया धन्यवाद, अपना कुछ है नहीं छोड़ेंगे क्या। इसलिए त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है। तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं, अभी नहीं थे तुम, अभी हो अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना, तुम संसार में रहना लेकिन संसार तुम में न रह पाए, गुजरना पानी से लेकिन पैर भीगे नहीं, जीना लेकिन भंवरे की तरह किसी को हानि न पहुंचे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है। क्या रस है, किस रस की बात कर रहे हैं बुद्ध, समझा दूं क्योंकि डर है कि तुम कुछ गलत ना समझ लो। बुद्ध किस रस की बात कर रहे हैं, किस भवरे की बात कर रहे हैं? तुम जिन्हें सुख कहते हो उनकी बात नहीं कर, तो वही रस है, क्योंकि जिसने वो जान लिया उसके लिए महारस के द्वार खुल गए। तो जीवन के हर फूल से और जीवन की हर घटना से, जन्मों की मृत्यु और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना, हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया, मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया, तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं पहुंचे, पहुंचे भी तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था, वो परमात्मा का राज्य, तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है मोक्ष, तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है जो अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है, तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है, उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे, रात गीत की धुन में खोए, कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था, वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूंक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो रहे चांदा ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई, रंध रंध से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता, फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर बाहर।

0: की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है, इधर तुम बुझे उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है, चुनाव तुम्हारे हाथ में। तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे, और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा, तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन निचाणु जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था। उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर। फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई, क्योंकि वो खुद कैद हो गया। तब वो चिल्लाया कि बचाओ। मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो। तुमने ही रखी है, तुम ही उठा सकते हो, कारागृह तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी और ने तुम्हें कारागृह में बंद नहीं किया है, खेल खेल में बना लिया है। खेल खेल में ही आदमी बंद हो जाता, जंजीरों में उलझ जाता है। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में। अब ऐसे मत चलो, अब जरा जाग के चलना हो जाए, अब जरा होश से चलो। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते। प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो। महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा। महाकाश्यप ना भी हुआ हो, हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा। कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं, बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूं तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले, जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता। बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा। उसने बस भर आंख देखा। उसने सोचा नहीं।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: पुरुष भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर पे भी।
1: नहीं, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जैसे प्रकृति ने ही हमें ये कहा हुआ है कि खाना बनाने का काम महिलाओं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए अलग अलग महिलाओं से न सिर्फ उनके जिंदगी की जर्नी लेकर आती हूँ, लेकिन साथ के साथ आपके लिए ढेर सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेकर आती हूँ। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक लंबे समय से आपके पास आ रहा है, लेकिन हर महिला से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो सशक्तिकरण के लिए बाकी है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है सोनाली चैटर्जी। सोनाली चैटर्जी पेशे से फाउंडर हैं पंचफोरन और उसके साथ साथ एक्सोटिक क्विसीन्स की, लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रोफेशनली ये एक आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी की कमान जो है वो अपने हाथों में ली। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने वो किया जो इन्हें पसंद था, यानी पैशन को फॉलो किया। लेकिन अगर हम देखें आज के जमाने में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। सोनाली जी से ये जानेंगे कि ये अपने पैशन को कैसे फॉलो कर पा रही हैं और पेशे से, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ शेफ होना अपनाया है, केटरिंग की बहुत बड़ी सर्विसेज ये ऑफर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है जो इनकी दुनिया में है जिनके बारे में शायद आपने आज तक ना सुना हो। उन सारी चीजों के बारे में आज हम इनसे करने वाले हैं बात, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
1: सोनाली जी, वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच आई हैव बीन आस्किंग ऑल द वुमेन, और ये मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस प्रोग्राम में होता है, व्हाट आई परसीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। सो इफ आई मे आस्क यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप एम्पावरमेंट किस चीज में देखती हैं?
2: वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ लोगों के लिए शायद फिनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन एम्पावरमेंट है, पर मेरे लिए वो नहीं
1: जी।
2: मेरे लिए एक इंडिविजुअल की सोचने और चुनने की आज़ादी को मैं वुमेन एम्पावरमेंट कहूँगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और वाकई मैं कई बार ये चीज़ महसूस भी करती हूँ सोनाली जी, सिर्फ पैसा दे देने से आप उन्हें शक्ति नहीं देते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप उन्हें सोचने और समझने की जो कहना चाहिए एक बेसिक राइट है वो नहीं देते हैं। So, अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं लेकिन आपके उस पैसे पर भी आपका अधिकार नहीं है तो बताइए आप कहाँ से एम्पावर्ड है। सो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एम्पावरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाए, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सशक्त महिला है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप सशक्त है, और जब तक आप अपने आप से ये सवाल पूछती हैं तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ। सो इन ख्यालों में खोने से पहले इस प्यारे से गाने में खो जाइए और जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत सी शाम को ये प्यारा सा प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और अगर आज मैं सशक्तिकरण की बात करूँ तो मैं जरूर ये आपसे कहूंगी कि भाई सशक्तिकरण को एक बार अपने दिल में झांक कर पूछ जरूर लीजिए और देख जरूर लीजिए कि क्या आप वाकई सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कर पा रही हैं या नहीं। और अगर आप एक पुरुष हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके घर में सशक्तिकरण है, क्या महिलाओं को ये अधिकार मिल रहे हैं कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाएं। बस छोटा सा सवाल पूछिए अपने आप से। और मैं आज की हमारी जो प्यारी सी गेस्ट हैं सोनाली चटर्जी मेरे साथ बैठी हैं, इनके हाथों में जादू है। आप इनके हाथों का जादू कभी चक्कर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। सो ये हाथों का जादू चलाती भी हैं और लोगों को खिलाती भी हैं। ये फाउंडर है पंचफोरन की और एक्सोटिक क्विजींस की। सोनाली जी, अगर मैं आज के ज़माने की महिलाओं के चैलेंजेस की बात करूँ, अलग अलग ज़माने में अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं, सो आपको क्या लगता है अभी करंट सिनेरियो में किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: सबसे पहले तो है देखिए, महिलाओं के सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको घर भी संभालना है और बाहर भी काम भी करना है
0: जी।
1: एंड जब हम लोग काम करने बाहर जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम घर के बारे में सोच रहे हैं, और जब घर पे हैं तो तब ऐसा होता है कि कभी हम ऑफिस के या हमारे काम के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग रखना और इन दोनों चीज़ों में प्रॉपर उनको पूरा अटेंशन देना एक अच्छी खासी चुनौती है हम सभी के लिए। एंड आजकल के ज़माने में इतना फास्ट लाइफ है एंड सब कुछ कर पाना वो एक बड़ी चुनौती है। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि एम्बिशियस तो सभी होते हैं, एम्बिशन को देखकर अपने बाकी जो चुनौतियाँ हैं उनको सामने रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी है, चुनौती या एम्बिशन
0: एक्चुअली।
1: और अगर चुनौती कोई हिंड्रेंस है तो उसे आपको क्रॉस करना है, आपको उसे पार करके आपके एम्बिशन की तरफ आपको बढ़ना है।
0: एग्जैक्टली।
1: चुनौतियां तो हर जगह है, हर काम में है।
0: देखिए मैं ये कहती हूँ पुरुषों के लिए भी चुनौतियां हैं, लेकिन हाँ। परेशानी ये है कि महिलाओं के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, पुरुषों के लिए वो चुनौतियां महिलाएं कम कर देती हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, सो कोई भी कभी भी आपने किसी पुरुष को ये सुना है कि अरे यार मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है और आज पूरे घर का काम नहीं हुआ है, आज घर में काम की जो हाउस हेल्प है या मेड है वो नहीं आई, या घर में पानी नहीं आ रहा था, मैं किस प्रकार से घर का काम भी करूंगा और आज मुझे ऑफिस आना पड़ा। बट पुरुषों के अलावा महिलाओं को ये फिक्र भी होती है। मान लीजिए वो ऑफिस आ रही है और सुबह सुबह घर पर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्हें घर जाकर वो काम भी करना है, ये चुनौती उनके लिए ज्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। सो कई बार अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं जेंडर में इक्वालिटी है, पर इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कामों का बंटवारा जो है वो इक्वल नहीं है। और यही कारण है कि आज भी महिलाएं सशक्तिकरण के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं, पा नहीं पाई हैं। कैसे होगा ये जरूर करेंगे इसके बारे में बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। सोनाली चैटर्जी से ढेर सारी बातें हो रही है। सोनाली चैटर्जी जो कि फाउंडर है पंचफोरन और एग्जॉटिक क्विजीन की, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जॉटिक क्विजीन है, अगर आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये सवाल तो मैं इनसे पूछने वाली हूँ। सोनाली जी मुझे बताइए कि हम अक्सर बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं, और जब कभी भी हम वहाँ जाते हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पर जितने भी शेफ्स होते हैं ना वो पुरुष होते हैं, और जब हम घरों में देखते हैं तो खाना महिलाएं बना रही होती हैं। तो मुझे बताइए इनइक्वालिटी किस लिए है, हमें बाहर प्रोफेशनली कमर्शियल किचन्स में इतनी महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं?
1: आपने बहुत सही कहा कि हम घर में हम महिलाएं ही खाना बनाती हैं ज़्यादातर, आजकल पुरुष भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर पे भी।
0: नहीं, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जैसे प्रकृति ने ही हमें ये कहा हुआ है कि खाना बनाने का काम महिलाओं का है, और वो डेफिनेट मतलब जैसे कहा जाता है ना, काम बांट दिए जाते हैं।
1: आई वुड से आई एम वेरी ब्लेस्ड,
0: यस,
1: कि मेरे घर में सबको खाना बनाना आता है।
0: वो इसीलिए क्योंकि ये आपका इनेट टैलेंट है तो वो सबके अंदर आना जरूरी है।
1: नहीं मैम, क्योंकि मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं काम पे जाती थी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा इन लोग भी संभाल लेते हैं घर, अगर मैं नहीं भी हूँ तो। मैं वापस आती हूँ घर बाहर से, कभी ये घर पे हैं तो मुझे चाय बना के पिलाते हैं, मुझे मतलब बहुत ही आई एम रियली फॉर्चुनेट। सो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को मिले।
0: yes.
1: जैसे हमारे हस्बैंड्स भी जब ऑफिस से आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, चाय बना के देते हैं जब हम रहते हैं घर पे, तो सेम चीज एक महिला भी एक्सपेक्ट कर सकती है और उनको भी मिलना चाहिए।
0: वेरी नाइस।
1: एंड अब आते हैं हम किचन के बारे में बात करते हैं, तो किचन्स में यूजुअली हमारे घर में महिलाएं ही काम करती हैं या खाना बनाती हैं, बट रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में मेन ज़्यादातर पुरुष वहाँ पे काम करते हैं। रीजंस है, क्योंकि एक है कि जो होटल इंडस्ट्री की मैं काफ़ी पॉपस करती हूँ, मैं फाइव स्टार होटल से अदर होटल्स में भी मैं जाती रहती हूँ, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है या मैम ने भी काम किया है। सो वहाँ पे सबसे पहली बात है कि होटल इंडस्ट्री में हमारे जो टाइमिंग्स हैं 12 आवर्स की ड्यूटी होती है
0: जी।
1: 12 आवर्स की ड्यूटी में दिन भर खड़े रहना और भारी भरकम बर्तन उठाना और ये करना, इट्स अ वेरी वेरी टीडियस जॉब
0: जी।
1: सो वेमेन इन शेफ्स प्रोफेशन बहुत कम हैं, आजकल काफ़ी हो गए हैं। 2018 के हिसाब से इंडिया में ओनली 5-6% वेमेन शेफ्स थे, और अभी 2025 में अराउंड 12% हो गए हैं। सो ये जो इंक्रीज है, आई एम हैप्पी टू सी दैट इंक्रीज, तो इसी कारण से है कि आजकल वेमेन सब कुछ कर पा रही हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। हमारे पास पहले तो इंजीनियरिंग काफ़ी सारे फील्ड में लड़कियां नहीं जाती थी, आजकल सब फील्ड में जा रही हैं। वी हैव फाइटर पायलट्स, वी हैव एवरीबॉडी, एवरीवेयर वी हैव वेमेन, सो ये इसमें भी आ गए हैं। बट ये है कि टफ जॉब है, तो शायद इसलिए वेमेन उतना नहीं आ रहे हैं। स्पेशली मैं देखती हूँ कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में या बेकरी में तो वेमेन है, बट जैसे होटल इंडस्ट्री में तंदूर या इंडियन सेक्शन में बहुत कम है
0: जी।
1: थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, आ जाएंगे।
0: सुबह देखिए, एक तरफ तो हम फिजिकल लेबर की बात करें तो महिलाएं इवन एज टीचर्स आजकल अगर आप देखें तो वो कम से कम 8-8 घंटे खड़ी रहती हैं लेकिन पढ़ाती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें किचन्स की तो वहाँ पर हीट भी होती है, और साथ के साथ तंदूर की अगर मैं बात करूँ तो वो जलती हुई आग होती है। तो शायद ये कारण है कि महिलाएं आपको अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपना सजाया है हमने और इतने सालों से हम इस सशक्तिकरण को देखना चाहते हैं, सो आने वाले समय में बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें भी बहुत सारी शेफ जो हैं वो महिलाएं मिलेंगी, और धीरे धीरे जो घर का खाना है वो घर के खाने वाली महिलाएं जो हैं वो शायद बाहर का खाना भी बनाएंगी, और हर तरफ हमें एक इक्वालिटी नज़र आएगी। बट यस, जहाँ पर हम फिजिकल काम की बात करते हैं या फिजिकल लेबर की बात करते हैं या वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें भी महिलाओं के लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। सुना रही हूँ एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा एपिसोड। और आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो हैं वो दरअसल एक बहुत ही खास कहना चाहिए क्वालिटी रखती हैं अपने खाने की। सो शेफ्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन है ना वो इनकी खासियत है, यानी कहना चाहिए इनकी यूएसपी है। और वो चीज़ न सिर्फ आँखों को अट्रैक्ट करती है लेकिन आपकी जीभ और आपके दिल को भी अट्रैक्ट करती है, और ये इनके खाना बनाने की खासियत है। खाना भी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी, लेकिन जिस ढंग से वो उसे प्रेजेंट करती है ना वो तो काबिले तारीफ है। अब अगला सवाल सोनाली जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ही की एम्पावरमेंट की जर्नी का। आप एक सशक्त महिला हैं, आपने वो किया है जो आप करना चाहती थी, और एक बड़ा डिसीजन होता है आज के ज़माने में। बट मुझे ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा एम्पावरिंग डिसीजन लिया था जिसे लेने के बाद आज तक आप उस पर प्राउड हैं और आपको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा?
1: सबसे पहले तो मेरा जो प्रोफेशनल करियर है
0: जी,
1: तो प्रोफेशनल करियर में जब मैंने आर्किटेक्चर में ज़्यादातर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ही काम किया है
0: जी।
1: तो 2019 तक मैंने उस पर काम की है
0: जी।
1: 2015 से 2015 से 2019 तक मैं दोनों प्रोफेशन चला रही थी, क्योंकि ये जो फूड जो मैं खाना बनाना या प्रेजेंटेशन जो है जिसके कारण लोग मुझे जानते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन, शायद ये मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड से के कारण भी हो सकता है। और एक चीज़ है ना, हम पहले आँखों से खाते हैं, फिर हम चखते हैं जीभ से खाते हैं, फिर हम इसको महसूस करते हैं। सो ये तीन प्रोसेस है। सो जब तक आपको अच्छा कुछ दिखेगा नहीं तो आपको वो खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। फिर जब वो आप एक बार टेस्ट करोगे तब आप उसका महसूस करोगे, टच है, फील है, फिर आप उसको फील करोगे उसको। तो ये चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस है जस्ट खाना बनाना इज़ नॉट द मेन प्रोसेस। सो मेरे लिए ये था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी, अच्छे से कर रही थी, और फ्रेंड्स को बुलाती थी और उनको अच्छे खाना खिलाती थी। तो उन्होंने एक दिन, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, यार यू मस्ट डू समथिंग, यू नो आपका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, ये टैलेंट को आपको कुछ करना होगा।
0: yeah.
1: मैंने कहा इतने बड़े बड़े केटरर्स हैं, मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करूँगी, आई एम जस्ट अ स्मॉल पर्सन। बट हाँ, आई टुक दैट डिसीजन, मैंने घर से शुरू किया। विद इन वन ईयर मे बी सिक्स मंथ्स आई गॉट काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आने लगे
0: जी।
1: तो जब बड़े ऑर्डर्स आने लगे वो घर से पॉसिबल नहीं था।
0: yes.
1: जब मुझे कॉरपोरेट ऑर्डर्स आने लगे फॉर 50 पीपल, 100 पीपल, एंड स्पेशली यू नो माय ग्रेजिंग प्लैटर्स और ये सब ग्रेजिंग टेबल्स वगैरह होते थे, सो वो चीज़ जब हम करने लगे तो घर से पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे एक बेस किचन खोलना है, कमर्शियल किचन खोलना है। हम जब लोगों से बात करने लगे सो 90% पीपल सेड बेस किचन या ऐसे किचन मत खोलिए, क्योंकि हर रोज़ खुल रहे हैं, हर रोज़ बंद हो रहे हैं
0: जी।
1: मैंने दो बार सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है खोलने की, बंद करना होगा कर देंगे।
0: yes.
1: ट्राई करने में क्या जाता है, और मुझे मालूम है कि मुझे बंद नहीं करना पड़ेगा, टच वुड। सिर्फ कोविड के टाइम पे कुछ महीने बंद है, इसके अलावा 2017 से लेके अभी तक 2026 तक किचन इज रनिंग।
0: सो भाई देखिए, यही शायद सही मायने में मैं ये कहती हूँ कि एम्पावरमेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपकी ज़िंदगी आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करती हैं। महिलाएं ये सोच कर कि हाय बाद में कहीं हमें अपने ही इस डिसीजन पर पछतावा ना हो, कहीं बाद में लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, कुछ डिसीजंस ले ही नहीं पाती हैं। और शायद वहीं हम कहीं ना कहीं अपनी सशक्तिकरण के एक बहुत अहम अधिकार को गंवा देते हैं। जरूरी है कि हमें इसे महसूस करना है और इस अधिकार को हमेशा प्रैक्टिस करना है। हर महिला जो सशक्त है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीजन जरूर लिया था, और आज वो इस डिसीजन को लेकर ना सिर्फ खुश है लेकिन साथ के साथ तो उस डिसीजन को खूबसूरती से जी पा रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। कोई सपना है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कहीं अटकी हुई है और लग रहा है ये डिसीजन क्या और कैसे लिया जाए, तो ले लीजिए। आई बिलीव कि आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। Feel good, feel alive.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। एक ऐसी महिला से मिला रही हूं जो ना सिर्फ सशक्त है लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी भी जी रही है और अपनी खुशी से अपना काम कर रही है। सोनाली जी, आज एक अहम सवाल। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाफ हार्टेड प्रोफेशंस में हैं क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कई बार वो होती है जिसका डिसीजन हम पर या तो थ्रस्ट किया होता है क्योंकि पेरेंट्स ने लिया होता है, कभी पियर ने लिया होता है, कभी समाज ने लिया होता है, ये बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है इसे कर लीजिए, इससे आप जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। या फिर वो डिसीजन होता है जिसको पूरा कहना चाहिए कि दुनिया वैलिडेट करती है, आप इस लाइन में चले जाइए, जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे, यू विल हैव अ साउंड इनकम। लेकिन हमारा दिल कुछ और करने का होता है क्योंकि आपका टैलेंट कुछ और है। सो जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट, आपको लग रहा होगा कि लाइफ इज गोइंग वेरी गुड, बट सडनली जब आपने ये डिसीजन लिया किचन में आग में 12 घंटे 15 घंटे और कई बार तो आपको काफी लंबा काम करना पड़ता होगा जब आपके पास कॉर्पोरेट केटरिंग आती होगी, कभी ऐसा मन डगमगाया, कभी लगा ओ माय गॉड वो डिसीजन ठीक था कहाँ, पैशन फॉलो करने चली आई, या आपको लगा कि नहीं जब अपने दिल से अपने तसल्ली का काम करा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पैशन और प्रोफेशन में बेसिक क्या डिफरेंस है। डिग्री हमें क्या देती है कि हमें एक रोड मैप देती है, एक रास्ता दिखाती है कि आप इस रास्ते पे जाइए, इसके बाद आपका ये स्टेप है, इसके बाद ये है, आपको अगर आपने एक डेस्टिनेशन सोच के रखा है आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे
0: जी।
1: लेकिन पैशन क्या है? पैशन आपके लिए कोई रोड मैप बना के नहीं रखा है
0: जी।
1: पैशन आपके लिए है कि हमें यहाँ पहुँचना है या हमारा ये, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे इन पैशन, एंड पैशन को लेकर आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है देन फॉलोइंग योर डिग्री और योर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं।
0: यस,
1: तो फिर भी पैशन इज समथिंग जो दिल से होता है। थैंकफुली मेरा जो प्रीवियस जो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती थी वो भी मेरा पैशन ही था
0: जी।
1: बट वो पैशन में जब मैंने देखा कि हाँ अच्छा तो हो ही रहा है, यू काइंड ऑफ गेट बोर्ड, ओके यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आपके पैशन ये भी है, हम ये भी करना चाहते हैं, हो सकता है मैं अब से 10 साल बाद मेरा पैशन मैं कुछ और भी करूं, मेरे और भी पैशन्स हैं।
0: वाओ,
1: सो हो सकता है कि आफ्टर 65-70 आई वांट टू डू समथिंग एल्स, और भी कुछ करना चाहिए। सो हाँ, ये पैशन को ड्राइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके लिए रोड मैप नहीं होता है। सो बट पैशन में जैसे अभी भी कभी रात को 2 बजे भी लौटती हूँ मैं, 3 बजे भी लौटती हूँ, पार्टीज खत्म हो रही है, रैप अप करना है, इट्स नॉट अ वेरी ग्लैमरस थिंग। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में भी लगता था अरे बहुत ग्लैमरस है, पर एंड ऑफ द डे जब हम हैंड ओवर करते थे साइट तो रात भर काम करके सुबह 5 बजे लौट रहे हैं सफाई करा के सब कुछ करा के। तो सेम थिंग हमारे प्रोफेशन में भी है, केटरिंग में भी यही है कि हम लेट नाइट भी आ रहे हैं, ये जो है ये जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं काम से ही लेट हो रही हूँ, ये भी एक एम्पावरमेंट है कि मुझे एम्पावर्ड हूँ मैं कि मैं ये काम करके इतना लेट आ रही हूँ, दे ट्रस्ट मी एंड हैव गिवन मी। सी बैकबोन तो वही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: वाकई देखिए, जब कभी भी मैं पैशन की बात करती हूँ ना, सो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं ना तो आपको थकान कम महसूस है, आपको ना बड़ा सेटिस्फाइड महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं ना आप उसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस। और यही कारण है कि आप पैशन को एफर्टलेसली कर पाते हैं, एनर्जी उसमें आपकी ज्यादा होती है और आपको ना रिग्रेट्स कम होते हैं। और जहां पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर वो आपका पैशन नहीं है उसे फॉलो करते हैं तो होता क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल ना कम हो जाती है और वहां आप हर रोज ये सोच रहे होते हैं ओहो मुझे ये करना है रादर देन कि मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकता हूँ, बस यही डिफरेंस होता है। अदरवाइज तो दुनिया है और सारी दुनिया अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस अपनाती ही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई टैलेंट है तो चाहे उसे हॉबी के रूप में चाहे उसे किसी भी तरीके से फॉलो जरूर करिए, आपकी जिंदगी में एंथुजियाज्म और एनर्जी एक्चुअली बनी रहेगी और तब आप जिंदगी को और खुशी से जी पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सोनाली चैटर्जी से। सोनाली चैटर्जी जो हैं वो फाउंडर हैं पंच फोरन और एग्जॉटिक क्विज़ीन की। अब सोनाली जी, बहुत सारी बातें आपसे की, लेकिन मुझे ये बताइए, जाने से पहले आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, क्या कह के जाना चाहेंगे आप उन सभी को?
1: एम्पावरमेंट सबसे पहली बात है कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं खुद के लिए नहीं, मैं ये फॉलो भी करती हूँ। सो ऐसा है कि मैं एक ब्रांड की, अभी मैं ब्रांड पे काम कर रही हूँ और उनका कुछ कॉरपोरेट्स में जो हेल्दी फूड देना है, तो वैसे एक ब्रांड के साथ हूँ और कई सारे मतलब पॉइंट ऑफ सेल खुल रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली NCR। बट हमारा मोटो ये है कि हम उसमें इट्स मोर वेमेन ओरिएंटेड ब्रांड, बिकॉज जो ओनर्स हैं वो वेमेन हैं, एज अ शेफ आई एम अ वुमेन, एंड हमारे जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो लड़कियां, वहां पे हम ज़्यादातर लड़कियां ही रखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो हम वेमेन को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।
0: वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इनफैक्ट मैं हमेशा यही कहती हूँ, जैसे मैं इस कार्यक्रम की बात करती हूँ, वी यानी वी स्टैंड टुगेदर, अगर हर महिला अपने आसपास कुछ महिलाओं के हाथ पकड़ ले तो हम सशक्तिकरण को बहुत ही स्पीड से ना सिर्फ एंजॉय कर पाएंगे लेकिन उसे महसूस कर पाएंगे। और जब एक परिवार

0: लीजिए आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मैं सभी पुरुष या महिलाओं सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है
0: जी,
1: ये कोई मंजिल नहीं है
0: जी,
1: ये रोज की आदत होनी चाहिए।
0: यस,
1: सो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि ये हमें एक आदत पे डाल दे कि ये दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स नॉट जस्ट कि हमें आगे ये करना है, ये मंजिल नहीं है, आज से शुरू होना है, अभी से शुरू।
0: वाकई भाई, इसी बात पर मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात। टिल देन, फील गुड, फील लव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ बिंदास भावना और प्रोग्राम रन से लंच तक। रन से लंच तक में अब वक्त है।
2: रन से लंच तक में आप सुन रहे हैं विद्यांत बिंदास भावना के साथ।
1: वक्त है विद्यांतरिक्ष का, यानी विद्या के अंतरिक्ष का, और ये विद्या का अंतरिक्ष है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का खूबसूरत सा अंतरिक्ष, और इसके कहना चाहिए छांव तले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं आपके लिए जो करियर की एडवाइस लेकर आती हूँ, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई एक गेस्ट जरूर होते हैं, एक्सपर्ट जरूर होते हैं, जो आपके करियर को और भी खूबसूरत और अच्छा बनाने की सलाह आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है स्कूल ऑफ साइंसेस मानव रचना यूनिवर्सिटी, और हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर ज्योत्सना पंडित, डीन स्कूल ऑफ साइंसेस मानव रचना यूनिवर्सिटी, हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं। और आज ये आपको बताने वाली हैं कि अगर आप कोई साइंसेज में थोड़ा सा भी रुझान है, अगर आपका पैशन है, या अगर आप इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एंड ऑफ कोर्स मानव रचना यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस के बारे में तो हम जरूर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तो आज मैं यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ज्योत्सना मैम, एक बड़ा अहम सवाल है, जब कभी भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास नया ऑप्शन क्या है, क्योंकि आज का जमाना जो है वो जमाना ऐसा है जहां हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। सो क्या हम भी, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इनके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ खास प्रोग्राम्स लेकर आए हैं?
3: हाँ जी बिल्कुल, अभी अगर मैं बात करूँ स्कूल ऑफ साइंसेज में, पहले हम लोगों का जैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अब उसमें बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लोग कहते हैं कि उसका ऑप्शन नहीं है, स्कोप नहीं है आगे, तो इसमें क्या करते हैं अभी हम, कि अभी हमारा पुराना जो एमएससी केमिस्ट्री है वो तो हम लोग अभी रन कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोगों ने करिकुलम में बहुत सारी नई चीजें उसमें हम लोगों ने डाली हैं, ताकि बच्चों को आगे बहुत अच्छे से उसमें स्कोप मिले और वो कहीं अच्छे इंडस्ट्रीज में एब्जॉर्ब हो
1: जी।
3: उसके अलावा 3 नए प्रोग्राम हम लोग लेकर आए हैं, तो पहले मैं अगर बात करूं बीएससी ऑनर्स फोरेंसिक साइंस में, तो आज की डेट में फोरेंसिक साइंस एक ऐसा फील्ड कहेंगे जिसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है
1: वाकई,
3: तो यहाँ पर अगर बच्चे एडमिशन देते हैं बीएससी ऑनर्स में फोरेंसिक साइंस के, तो बहुत सारे उनके पास में जॉब ऑप्शंस, उनके लिए करियर ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एमएससी इन एग्रोकेमिकल्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ये हम लोग एक ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद गोदरेज एग्रोवेट,
1: जी
3: तो गोदरेज एग्रोवेट हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है इसमें, और इसमें भी आगे आज की डेट में जैसे कहेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसमें हमारे एग्रोकेमिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेस्ट मैनेजमेंट का भी, तो वो कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं एमएससी फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है इसमें सीडेक के साथ में
1: जी।
3: तो क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आज बात करें, आज की डेट में एक बहुत बड़ा बज वर्ड है, हर कोई बात कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो आज अगर हम इसमें अगर देखें फिजिक्स के साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग अगर जुड़ जाता है तो बच्चों के पास में अतः मतलब इसमें आपके ऑप्शंस जुड़ जाएंगे जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, तो ये मैं कहूंगी नए प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बच्चों को खूब आगे जाकर वो इसमें तरक्की कर सकते हैं, अच्छे माहौल में अपना कहीं जॉब कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन सारे प्रोग्राम्स में।
1: तो देखिए अगर फोरेंसिक साइंस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली बढ़ते हुए क्राइम के साथ आज के जमाने में फोरेंसिक साइंसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर और एग्रोटेक की हमेशा से जरूरत रही है, और आने वाले समय में अगर हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो बड़ा इन वर्ड है। डॉक्टर दीप्ति आपका स्वागत है, लेकिन साथ के साथ आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम क्वांटम रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली ये क्या रेवोल्यूशन है?
4: थैंक यू भावना, मैं सभी श्रोतागणों को नमस्कार करती हूँ
1: जी।
4: मैं इनिशिएट करूंगी क्वांटम रेवोल्यूशन से। आज के टाइम में जैसे एआई ने काफी कुछ रेवोल्यूशन लेकर आ चुका है ऑलरेडी एआई, इसी तरह से आने वाले समय में क्वांटम रेवोल्यूशन आने वाला है. सो ये वर्ड सभी लोगों के लिए बहुत ही, अगर आम भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो इसे इस तरह से समझा सकती हूँ. एक वक्त था जब आप लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे, और आज का वक्त है जब आप मोबाइल फोन से लेकर और आपके लैपटॉप से लेकर हर चीज आपकी कंप्यूटिंग से चल रही है
5: जी.
4: उसी कंप्यूटिंग में फर्दर कुछ बदलाव होने वाले हैं. अभी तक का जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग चला रहा है वो सिर्फ एक जीरो और वन बिट जैसी चीजों पर आधारित है, बट भविष्य में जो आने वाला क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्यूबिट पे आधारित है, जिसमें है तो जीरो और वन ही, बट ये दोनों इस तरह से हैं कि इन दोनों को आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं
5: जी.
4: इससे होगा क्या, आपको मैं एक बहुत ही साधारण एग्जांपल से समझाना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कन्वेंशनल कंप्यूटर यूज करते हैं और आपको अनलॉक करना है बहुत सारे डोर्स को
5: जी.
4: जो आपके सामने हैं, और आप उनको जाके अगर अनलॉक करेंगे तो आप वन बाई वन हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि वो चेक है या अनचेक है. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आपको ये संभावना दे देगा कि आप एक साथ एक ही समय पर उन सारी संभावनाओं को आप एक साथ एक सेकंड के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं
5: जी.
4: तो अगर एक आम आदमी को मैं समझाना चाहूँ तो इसी तरीके से समझा सकूंगी. और आने वाले टाइम में ये जो है ये किस तरह से पूरे भविष्य को बदलने वाला है, आने वाले बच्चों के भविष्य को बदलने वाला है, अगर आप उस पर नजर डालें तो देखिए, अभी कोविड आया था
5: जी.
4: कोविड की वैक्सीन की अगर खोज हुई है तो आप देखेंगे कि काफी वक्त लगा उसे खोजने में
5: जी.
4: वही खोज अगर क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से करी जाए तो वो जो आपका टाइम है साल भर या छह महीना, उसे आप हार्डली एक हफ्ता एक दिन में भी आप बदल सकते हैं. तो आप उसकी स्पीड और कैपेबिलिटी को आप एक तरह से अनुमानित कर सकते हैं कि वो कितनी तेजी के साथ काम करेगा
5: जी.
4: और ऐसा ही नहीं कि आपका ये सिर्फ एक मेडिकल क्षेत्र को छुएगा. अगर मैं बात करूं आपकी साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी में आज की डेट में अगर आप एनक्रिप्शन की बात करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकता है एनक्रिप्शन को, क्वांटम रेवोल्यूशन जो आपका है. साथ के साथ ये आपको ऐसे अनहैकेबल चीजें क्रिएट करने में मदद कर सकता है जो कभी भी क्रैक नहीं हो सकती
5: जी.
4: तो एक ये डोमेन है, सपोज मैंने आपको दो एग्जांपल्स, एक मेडिकल का डोमेन दिया, एक मैंने आपको नॉर्मल आपका
5: साइबर सिक्योरिटी का
4: डोमेन दिया. इसी तरह से आपके बहुत सारे डोमेन है. फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की या स्टॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो आप एक सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में से आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी होगी जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क. तो इस तरह से ये जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया आपके आम रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक डोमेन को टच करने वाला है. और इसे समझने के लिए क्वांटम रेवोल्यूशन जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है आज की डेट में. और अगर मैं और आपको इसमें बताना चाहूँ तो आपके वैश्विक लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, बिलियंस में इन्वेस्ट कर रही हैं, और भारत ने भी इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जिसे हम लोग कह रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है
5: जी.
4: इस इन्वेस्टमेंट का जो असली उद्देश्य है वो क्वांटम इकोसिस्टम को डेवलप करना है इंडिया के अंदर, राइट. तो अगर वो इकोसिस्टम आपका डेवलप होता है तो उसके अंदर हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही कैरियर की अपॉर्चुनिटीज ग्रो होने वाली है. और अगर बच्चे का इस दिशा में रुझान है तो वो अपना कैरियर बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है आने वाले समय में.
5: वाकई देखिए, अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करूं तो आपने कभी देखा है कि आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मोबाइलों को देखते हैं, उनके फीचर्स को कंपेयर करते हैं, चाहे फिर आप उसे इंटरनेट पर ही क्यों ना करने की कोशिश करें, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करने के लिए आप कंपेल हो जाते हैं कि भाई यही बेस्ट है. लेकिन अगर आप यही ऑप्शन 10 से ज्यादा मोबाइल्स पर कर पाएं या उससे भी ज्यादा मॉडल्स पर कर पाएं तो आपके पास शायद बेस्ट ऑप्शन होगा. फिर शादी के टाइम में तो मुझे लगता है ये अप्लाई नहीं करेगा कि आपको अगर सही लड़के का चयन करना है या सही लड़की का चयन करना है तो वो कैसे हो सकता है. लेकिन डेफिनेटली बाकी सारी चीजों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम किसी भी चीज को एक बड़े ग्रुप पर अपनाना चाहते हैं, चाहे एनालिसिस की बात हो, चाहे चॉइसिस की बात हो, या लोगों के प्रेफरेंसेस की बात हो, सो हमारी जैसी पॉपुलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य क्वांटम रेवोल्यूशन जरूर कहलाएगा. सो इसमें में स्टूडेंट्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, किस तरीके की जॉब्स होंगी, सो क्या है हमारा भविष्य। और अगर हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और उसके साथ किस तरीके के हमारे कोलैबोरेशन है, आने वाले भविष्य में वो स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट देने वाला है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे जानना चाहूंगी।
3: जी भावना, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस करा है नया प्रोग्राम MSc फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग
5: जी।
3: और ये हम लोगों ने करा है सीडेक के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में लॉन्च कर रहे हैं। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो भारत का एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर
5: जी।
3: ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने फरवरी के महीने में जब इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जब हुआ था, तो हम लोगों ने ऐतिहासिक MOU साइन किया सीडेक के साथ में भारत मंडपम में जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम कहेंगे हमारे स्कूल के लिए, मानव रचना के लिए, हम लोगों के लिए रहा है। और जब बात करेंगे हम MSc फिजिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो जैसे अभी डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि इसके बहुत सारे रोल्स हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बच्चे क्वांटम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, क्वांटम एल्गोरिथम इंजीनियर, क्वांटम रिसर्च साइंटिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्पेशलिस्ट, ये बहुत सारे तमाम रोल हैं जिनमें बच्चा अपना करियर बना सकता है। और अगर मैं बात करूँ टॉप रिक्रूटर्स की, तो सीडेक उनमें से एक है जो बच्चों को आगे रिक्रूट करता है, इंटर्नशिप के बाद में उनको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। उसके अलावा IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HCL, DRDO, ISRO और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं जहां पर कि बच्चे अपना करियर वहां पर बना सकते हैं
5: जी। सो देखिए भाई, अगर मैं करियर की बात करूं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज तो आपको पता लगे कि किस किस रोल में आप जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करूं, सो ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटिंग का जो फायदा है वो ये है कि आपके पास ना सिर्फ आने वाले भविष्य में, आप कहना चाहिए कि इक्विप्ड होंगे एक ऐसी स्किल से जो फ्यूचर रेडी बनाने वाली है। अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करूं, अगर हम क्वांटम रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये भविष्य को किस तरीके से अलग ढंग से लेकर आने वाली है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो क्वांटम रेवोल्यूशन है वो कंप्यूटिंग के फ्यूचर को ही बदल देगा, ये किस तरीके से पॉसिबल है?
4: बिल्कुल सही सवाल पूछा है भावना आपने। एक्चुअली अगर हम क्वांटम रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है उसको 4 हब्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हब आपका कंप्लीटली क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेडिकेटेड है, दूसरा हब आपका क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड है, तीसरा हब आपका क्वांटम सेंसिंग के लिए डेडिकेटेड है, और चौथा आपका क्वांटम मटीरियल्स एंड डिवाइसेस के लिए डेडिकेटेड है। तो आप देख रहे होंगे कि हर हब के नाम के पहले एक क्वांटम वर्ड जुड़ा है, क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो कम्प्लीटली एक तरह की कंप्यूटिंग है, बट कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से हटकर है, जो कि हमारे क्वांटम के नियम पर आधारित है
5: जी।
4: तो अगर किसी को क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड जो है उसको क्वांटम के प्रिंसिपल्स को समझने की बहुत ही अनिवार्यता है
5: जी।
4: अगर उसे क्वांटम के प्रिंसिपल समझ आते हैं, साथ ही साथ उसका कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या कुछ भी आप कहें, इनके साथ अगर उसका अच्छा कनेक्शन, मतलब बच्चे की अगर अच्छी समझ है, तो इन सब चीजों को मिक्स कर आने वाले भविष्य को बहुत ही सुनहरा बना सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी
5: जी।
4: तो अगर आप कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्वांटम कंप्यूटिंग अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग नहीं है
5: जी,
4: ये अपने आप में फिजिक्स को लिए हुए है, साथ ही क्वांटम कम्युनिकेशन की अगर आप बात करते हैं, तो ये क्वांटम के साथ अपने आप में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग पार्ट्स को लिए हुए हैं। अगर आप क्वांटम मटेरियल्स की बात करते हैं, तो क्वांटम के साथ में मटेरियल साइंटिस्ट को लिए हुए हैं। अगर आप क्वांटम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो डिवाइस मेकिंग पीपल्स को उसके साथ में लिए हुए हैं। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी की अगर आप बात करते हैं, तो आपकी जितनी भी सेंसिंग डिवाइसेस हैं, प्लस जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज और जो भी हमारे आज के डेट में रिसेंट मैं कहूंगी आपके फैक्ट्स ऑफ कंसर्न या मैटर ऑफ कंसर्न है, जैसे आप क्लाइमेट चेंज हो गया या हमारा एनवायरमेंट हो गया, उन सब चीजों को अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर तरीके से लिए हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा इस दिशा में एक भी कदम आगे बढ़ाता है, तो भविष्य उनका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाला फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं है, इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग ही आने वाला फ्यूचर है।
5: भाई देखिए, जब कभी भी स्टूडेंट्स के लिए हम करियर देखते हैं ना, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे का सफर आपका है। और मैं ये कह सकती हूं कि क्वांटम रेवोल्यूशन आगे का सफर सफर है। अगर इतनी सारी फील्ड्स आने वाले भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए खुलने वाली हैं तो उन्हें ट्रेडिशनल से हटकर बहुत मौका मिलेगा कि वो कुछ नया कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक समय के बाद अपनी जॉब्स को या फिर अपने काम को करते हुए बोर हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको बोर होने का मौका ही नहीं देंगी और आपके लिए हर सुबह नहीं होगी और आपके पास हर रोज एक चैलेंज होगा कि हाँ आपके पास कुछ ऐसा है जो आप कर पाए। अगर मैं बात करूं हमारी मानव रचना यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइंसेज की, सो हम जिस प्रकार से एमएससी क्वांटम कंप्यूटिंग ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को, सो इसकी क्या खासियत रहने वाली है?
4: देखिए, इसकी खासियत ये रहने वाली है कि नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर जो एक हब आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का है
5: जी,
4: ये उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने में बहुत ही बड़ा योगदान देने वाला है। आने वाले समय में यहाँ से पास आउट बच्चा जो भी होगा वो इस दिशा में अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकता है। साथ के साथ अगर उसका इसके अलावा बाकी अदर डोमेन्स में भी इंटरेस्ट है तो उसके पास अथाह संभावनाएं हैं कि वो उन सारे डोमेन्स में एंट्री कर सकता है, क्योंकि उसको बेसिक अगर क्वांटम की समझ है तो वो कंप्यूटिंग हो या सेंसिंग हो या मेट्रोलॉजी हो या डिवाइस, वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मूवमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ किसी एक ही डोमेन का नहीं है, वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन का है। तो क्वांटम में यूं कहना चाहूंगी

0: क्वांटम कंप्यूटिंग को, जो कि आपके बाकी सारे डोमेन्स को आपस में कनेक्ट करके रखे।
1: डॉक्टर दीप्ति, क्योंकि ये प्रोग्राम मास्टर्स का प्रोग्राम है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब हम कह ही रहे हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी होने वाला है, तो कौन कौन है जो इसे कर सकते हैं?
0: अभी तो हमने जो ओपन किया है इसको, हमने बीएससी नॉर्मल ऑनर्स बच्चे के लिए किया है,
1: बीएससी
0: फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए।
1: साथ ही
0: साथ बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा अभी इसमें एनरोल कर सकता है। आने वाले टाइम में इसमें कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, जो भी इसके इंटरसेक्शन पे काम करता है बच्चा, वो आसानी से इसमें एंट्री ले सकता है। प्लस हमने इसके साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटी में बीटेक का कोर्स भी फ्लोट किया है, जिसमें हम स्पेशली स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। सो दैट्स अ न्यू कोर्स, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। सो अभी हम अपने पूरे देश के क्वांटम के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ये दो कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग और बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग।
1: मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स, जैसे आप तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर पाती हैं, मुझे बताइए किस तरीके का रुझान है स्टूडेंट्स में इस प्रोग्राम के लिए?
0: देखिए, अगर बच्चे का बेसिक क्लियर होता है तो बच्चा 100% इस डायरेक्शन में बेंड होने की कैपेबिलिटी रख रहा है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे का 10+2 तक का लेवल थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो उसे थोड़ा सा समझने में दिक्कतें जरूर आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में सारे टीचर्स बच्चों के हैंड होल्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, सो दैट उनका इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में बरकरार रहे।
1: दोस्तों, मैं ये जरूर बताऊंगी कि मानव रचना यूनिवर्सिटी या मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, आइए आप कहीं भी, आप जब इस विद्यांतरिक्ष के तले आते हैं ना, तो एक चीज आपको बहुत अच्छी मिलती है, वो है आपकी मेंटोरशिप, यानी मेंटर मेंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। आपको ऐसा मेंटर मिलता है जो ना सिर्फ आपकी मदद करता है, लेकिन पूरे समय आपके लिए एक गाइड की तरह रहता है, जो ना सिर्फ आपको आपके करियर ऑप्शंस के बारे में बताता है, आने वाले भविष्य में आप किस तरीके से कुछ कर सकते हैं, इसके भी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी रुझान अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाने का है, तो आपका एक ही डेस्टिनेशन होना चाहिए, और वो डेस्टिनेशन है मानव रचना यूनिवर्सिटी। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति है, डॉक्टर ज्योत्सना है। डॉक्टर ज्योत्सना, अगर कोई एस्पिरेंट आना चाहता है, हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो किस प्रकार से ये किया जा सकता है?
2: जैसे ही अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास में आता है, तो हमारे से इंक्वायर करता है, क्वेरी पूछता है, हम उसको प्रोग्राम के बारे में बताते हैं सारी डिटेल्स उसको, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, यहाँ से जाने के बाद में हमें किस तरीके की जॉब मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको सारे करियर ऑप्शंस बताए, तो वो सारी चीजें हैं। और साथ में जब बच्चा यहाँ पर आता है, जैसे डॉक्टर दीप्ति ने भी बताया, हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं बच्चे की हैंड होल्डिंग करने का, कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं लेफ्ट आउट हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उससे कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, उसको एक मेंटोर एलोकेट करा जाता है और वो मेंटोर उसका पूरा ध्यान रखता है जब तक वो यहाँ से पास आउट नहीं होकर चला जाता है। तो बच्चों को ये है कि खाली हमें पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अब इसमें हम लोगों का है कि हम उनको गेस्ट लेक्चर करा रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज रहे हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, और मतलब इंडस्ट्री के साथ में उनका इतना एक्सपोजर कर देते हैं कि बच्चा यहाँ से जब जाए तो बाहर जाके इंडस्ट्री में जब काम करने लगे तो उसको कुछ ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आए। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बच्चों को उनका उसका रुझान उस तरफ बच्चों का जागृत करते हैं, ताकि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के यहाँ से निकले और वो किसी भी क्षेत्र में जाए और अच्छा करियर वो अपना बना सकते हैं वहां जाकर।
1: सो ऑल रोड्स लीड टू जस्ट वन रोड, दिल्ली सूरजकुंड रोड सेक्टर 43 अरावली हिल्स, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज या मानव रचना यूनिवर्सिटी कैंपस। तो आप यहां आ सकते हैं, फिजिकली आकर यहां ना सिर्फ खूबसूरत से कैंपस को देख सकते हैं, लेकिन साथ के साथ यहां पर हमारी सभी फैकल्टी से मिल सकते हैं और आकर यहां एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ साइंसेज से आज हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना और डॉक्टर दीप्ति, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भावना, आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने हमें ये मंच दिया ताकि हम अपनी बात पहुंचा सके और जिससे जो जन सामान्य लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे कि ये कितना इंपॉर्टेंट ये वाला एक प्रोग्राम है, और बहुत सारे आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये नहीं मिलेगा। और साथ में जब मैंने आपको बताया कि सीडेक के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है, तो वो तो सोने पर सुहागा है कि एक तो प्रोग्राम हमारा इतना फ्यूचरिस्टिक है, ऊपर से कोलैबोरेशन इतनी हम लोगों के अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, तो ये बहुत ज्यादा एक आपका बेहतरीन प्रोग्राम जो निकल कर आएगा, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और बच्चों का रुझान देखने को मिल रहा है किस तरीके से वो एडमिशन्स लेने के लिए इस टाइम बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा जिज्ञासा दिखा रहे हैं इस चीज के लिए।
1: तो भाई अगर आप भी कीन हैं तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, फिजिकली आप हमें आकर कैंपस में मिल सकते हैं, डिजिटली अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास ये ऑप्शन है www.mru.edu.in। जाइए इस वेबसाइट पर, चेकआउट करिए क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं और हिस्सा बन जाइए मानव रचना परिवार का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सो मच।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ बिंदा इस भागना और प्रोग्राम प्रिंट से लंच तक। प्रिंट से लंच तक में अब वक्त हो गया है।
1: प्रिंट से लंच तक में आप सुन रहे हैं विद्यांश बिंदास भावना के साथ।
0: वक्त है विद्यांतरिक्ष का, यानी वक्त है आपको ये बताने का कि विद्या के अंतरिक्ष के तले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो हम मानव रचना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, और मानव रचना यूनिवर्सिटी का जो खास कहना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ आ चुकी हैं डॉक्टर ममता अरोड़ा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मानव रचना यूनिवर्सिटी, और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच भावना मैम।
0: डॉक्टर ममता, अगर हम बात करें इनोवेशन की तो ना हर कैंपस, हर यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट पूरा देश ये चाहता है कि ढेर सारे इनोवेशन हो, लेकिन जब एक स्टूडेंट कैंपस में आता है, पहला दिन कदम रखता है, उसका एक्साइटमेंट का लेवल आई थिंक 200% होता है, और उसके बाद उसे इनोवेटर बनाने तक का एक बड़ा लंबा सफर होता है। मुझे बताइए कि ये जो इतनी लंबी जर्नी है, इसमें स्टूडेंट को कैसे आप एक्चुअली इस तरीके से मोटिवेट कर पाते हैं कि वो इनोवेशन की तरफ जाए, क्योंकि पहला साल मुझे लगता है कि उसका एक्सप्लोर करने में ही जाता है। क्या पहले साल से ही वो इनोवेशन के बारे में सोच सकता है?
2: यस, थैंक यू सो मच पहले तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, जो काफी सारे पेरेंट्स चाहते होंगे इसका आंसर सुनना। कॉलेज लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल और एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेस है, राइट? सो इनोवेटर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि डिफरेंस क्या है एक स्टूडेंट में और एक इनोवेटर में।
0: यस,
2: एक स्टूडेंट और इनोवेटर में डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं है, वो डिफरेंस है क्यूरियोसिटी का, वो डिफरेंस है करेज का, और वो डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। सो मैं बात करना चाहूंगी क्यूरियोसिटी पे। इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश करना नहीं है, इनोवेशन हमेशा शुरू होती है हमारी आसपास की प्रॉब्लम्स को। एक इनोवेटर सोचता है कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी जगह एक्स की जगह वाई को अगर लगाऊं तो कैसे ये सोसाइटी को बेनिफिट करेगी। सो इनोवेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। सो जो स्टूडेंट क्यूरियस है इन द क्लासरूम, इफ दे आर हैविंग द एनर्जी टू आस्क द क्वेश्चन, दे हैव करेज टू कम अप विद द आइडिया। सो एट मानव रचना यूनिवर्सिटी वी प्रोवाइड डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर कि हम उनके आइडिया को कन्वर्ट कर सके एक इनोवेशन में, और इंक्यूबेट कर सके उनके अपने बनाए हुए सॉल्यूशंस में।
0: भाई आई एम श्योर कि कोई ऐसा बेटा बच्चा या बेटी होगी जिन्होंने अपने माँ को कपड़े धोते हुए देखा होगा, उन्होंने वॉशिंग मशीन बना दी, फिर उन्हें लगा कि अरे इससे काम नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा और ऑटोमेटिक किया जाए, जिसमें कि एक बटन दबाने के बाद मेरी मम्मी या फिर मेरे घर के रिश्तेदार जो है वो निश्चिंत हो जाए। सो इस तरीके के इनोवेशन ऐसे ही होते हैं, और इनकी शुरुआत हमेशा आपकी नीड या आपकी जरूरत से होती है। अब अगर आपको मटर छीलने के लिए जरूरत है कि आपकी मटर अपने आप छिल जाए तो ये हमारी जरूरत है, भिंडी अपने आप कट जाए, लेकिन होता क्या है, ये सारी चीजें कहां से आई? आई एम श्योर इस दुनिया का सबसे आलसी इंसान होगा जिसने की वाईफाई से कनेक्ट करके चीजों को ऑन एंड ऑफ करना, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर बचपन से ही हम ये सोचते थे कि काश हम खुद एसी का बटन ऑन ऑफ या फिर लाइट को ऑन ऑफ कर पाते। और आज के जमाने में चाहे आपका पंखा है, चाहे आपका एसी है, चाहे आपका कोई भी गैजेट है, इन सारी चीजों का हैंडल जो है वो आपके पास आपके मोबाइल फोन पर है या एक रिमोट के साथ है। सो आप समझ गए ना कि कहीं ना कहीं अगर किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं होता तो इनोवेशन आती कहां से। अगर मैं बात करूं हमारे मानव रचना कैंपस की, तो क्या हम यहां पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और कैसे उन्हें कैसे पता लगता है इसके बारे में?
2: ओके, सो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इनोवेशन मानव रचना की रूट्स में है
0: जी।
2: डे वन से जब बच्चा हमारे पास आता है तो डायरेक्टली उसको क्लासरूम का एक्सपोजर ना देके हम उसका ओरिएंटेशन करते हैं
0: जी।
2: उस ओरिएंटेशन में उस बच्चे को बताया जाता है कि कितनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कई बार बच्चा बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है. सो वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर मेंटरिंग. ओरिएंटेशन के दौरान ही हम अपने स्टूडेंट्स को जिनके सक्सेसफुली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं हम उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जो एंट्रेंस हैं हमारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ कनेक्ट कर सके, उनको सारे क्लब्स की इन्फॉर्मेशन दे सके, उनको बता सके कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ दी जाती है हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे युक्ति जैसे पोर्टल पे अपने आइडियाज को डालने के लिए. सो डे वन से ही वी स्टार्ट. सो इसमें स्टूडेंट को बताया जाता है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से क्लब है, अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में कौन कौन से क्लब है, बिकॉज इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज मेकिंग समवन्स लाइफ बेटर. सो इन दिस वे वी डू.
0: भाई देखिए, एक तरफ तो इनोवेशन इज मेकिंग पीपल्स लाइफ बेटर, और मानव रचना में हम कहते हैं क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन बींग्स, यानी वो अच्छे ह्यूमन बींग्स जाकर लोगों की जिंदगी को और खूबसूरती से संवार सकते हैं. बहुत सारी बातें हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ, बट इस प्यारे से गाने के बाद रेखा भारद्वाज की आवाज, और अगर आपके पास है कोई भी सवाल तो बस उठाइए अपना मोबाइल फोन, मुझे बताइए 8010781107.

0: मीरा भारद्वाज की मखमली सी आवाज। लीजिए भाई, ये दिल फिर से वापस ले आया मुझे यहीं पर। बहुत सारे सवाल रह गए हैं पूछने। डॉक्टर ममता अरोड़ा हमारे साथ हैं और उनसे ये सवाल पूछे बिना तो मैं उन्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। सो विद्यांतरिक्ष में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ममता अरोड़ा से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी। और अगर आपकी डेस्टिनेशन मानव रचना यूनिवर्सिटी या मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज है, तो भाई ये खूबसूरत सा कैंपस है जहां पर आप आ सकते हैं, एडमिशन का टाइम है, एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप कहां फिट बैठते हैं और क्या आपकी पसंद का करियर आप यहां बना सकते हैं। आज ना हम इनोवेशन की बात करें। माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है भाई पूरे भारत से और उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें अप्लाई करिए। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये चाहते भी हैं कि हमारा देश बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर हो जाए और उसके लिए आई एम श्योर कि यंगस्टर्स को थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। डॉक्टर ममता, मैं अगर बात करूं प्रोसीजर की, आपने कहा कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्कूल से जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो उनके कहना चाहिए कि शायद चेकलिस्ट में इनोवेशन नहीं होती है। वो कॉलेज होता है, कैंपस होता है, कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज की जर्नी होती है, लेकिन उसमें वो ये सोचकर नहीं आए होते हैं कि हम यहाँ आकर कुछ करेंगे। लेकिन शायद उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि कॉलेज से निकलने के बाद एक अलग ही दुनिया होती है जिसे कहा जाता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो इसी टाइम पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्या वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या उन्हें प्रोफेशनली कहीं किसी लाइन में जाना चाहिए। सो कैसे करते हैं ये आप लोग, कैसे मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को?
1: एग्जैक्टली बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉलेज ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग चीजों को बिना डर फेलियर के, राइट? सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगी पूरा का पूरा प्रोसेस। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट के पास अलग अलग आइडियाज होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो वी सजेस्ट देम टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर आइडिया पिचिंग
0: जी।
1: सो मानव रचना यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर वो अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सके।
0: अरे वाओ।
1: नाउ आइडिया को प्रेजेंट करने के बाद कमेटी उस आइडिया पे काम करती है, वेट करती है। जब आइडिया लगता है कि वी कैन कन्वर्ट इट इन द इनोवेशन, तो उस स्टूडेंट के साथ मेंटर्स एसोसिएट किए जाते हैं। अब ये मेंटर सिर्फ कॉलेज की फैकल्टीज नहीं होते, कॉलेज की फैकल्टी के साथ साथ हम उनको इंडस्ट्री मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज मानव रचना यूनिवर्सिटी बिलीव इन हैविंग द इंडस्ट्री अकेडमिया गैप टू ब्रिज इट। सो इंडस्ट्री और फैकल्टी मिलके उस स्टूडेंट को पूरा मेंटर करेगा। मेंटरशिप करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट है किसी फंडिंग की, सो कमेटी आगे फंड की रिक्वेस्ट को जनरेट करती है और स्टूडेंट को फंड प्रोवाइड किया जाता है उसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए
0: जी।
1: जब प्रोटोटाइप डेवलप हो गया, देन वी आस्क, वी रिक्वेस्ट द स्टूडेंट नाउ टू शो द प्रोटोटाइप वेरियस हैकेथॉन्स में। तो वहां पर स्टूडेंट प्रोटोटाइप लेके जाते हैं अलग अलग हैकेथॉन में। इसके साथ में आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि अभी हमारी विनिंग टीम्स रही थी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स में।
0: वाओ,
1: राइट? सो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब स्टूडेंट अपने प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करता है, वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेट्स नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ भी सीखता है। इतना होने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अब उस स्टार्टअप को एक शेप देना, जहां पर हम लेके जाते हैं अपने इंक्यूबेशन क्लब में, वो कंपनी में रजिस्टर। तो यहां से निकलने से पहले सोचो कि बच्चे के पास एक अपनी कंपनी है। सो दिस इज अ प्रोसेस दैट वी एक्चुअली फॉलो फॉर इन द मानव रचना यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज नॉट एट ऑल ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट, बल्कि हर बच्चे को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है क्योंकि हम भी विश्वास रखते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने का।
0: वाकई देखिए, सबसे जरूरी चीज ये होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो खुद ही ब्राइट होते हैं और जिनका फोकस ऑलरेडी होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फोकस ही नहीं होता है। अब अगर हम उनका फोकस ना बनाएं और सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स पर ही काम करते रहे तो हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। और इसीलिए मानव रचना यूनिवर्सिटी में खास तौर पर इस चीज पर काम किया जाता है कि हर स्टूडेंट को ये मौका दिया जाता है। अब ये स्टूडेंट्स को मौके मिलते कैसे हैं, तो सबसे पहले उन्हें मिलता है ये मौका, शायद उनके पीयर ग्रुप से पूछ के देखती हूँ। डॉक्टर ममता, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्हें हमने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद वो एक आइडिया लेकर आए, फिर उसे वेट किया गया, हैकेथॉन्स में जाकर उन्होंने प्रेजेंट भी किया, इन सारी चीजों के लिए जो उनका इनिशियल अगर कहना चाहिए मोटिवेशन है या कुछ, तो क्या वो पीयर ग्रुप होता है कि वो उन्हें एम्बेसडर के जैसे इस चीज के लिए रोप इन करें?
1: यस, बिल्कुल। हमारे मानव रश्य यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स हैं, जिसमें से इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन भी एक क्लब है।
0: वाओ।
1: इन क्लब्स की सबसे अच्छी बात है कि इट इज क्रिएटेड एंड लेड बाय द स्टूडेंट्स कम्युनिटी ओनली।
0: जी
1: राइट। तो वहां पर क्या होगा, एक स्टूडेंट जस्ट स्टूडेंट से मिलेगा और स्टूडेंट को स्टूडेंट की गाइडेंस के साथ मेंटर की गाइडेंस मिलेगी। सो उस बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मेरा सीनियर ने इस चीज को अचीव किया विद द हेल्प ऑफ मेंटरशिप, तो मैं वहां तक भी जा सकता हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: भाई देखिए, जब हम अपने सीनियर्स को ये देखते हैं ना कि उन्होंने ये अचीव किया, उन्होंने वो अचीव किया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग जरूर आती है कि भाई हम भी तो इसी कैंपस में हैं, हम भी तो उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसे क्यों नहीं कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, एंड आई थिंक इस अच्छी फीलिंग से हम बहुत सारे और नए इनोवेशन अपने ही भारत में देख पाएंगे और बहुत सारे नए जॉब क्रिएटर्स को हम देख पाएंगे, रादर देन कि हम उन्हें कहें कि अब की बार आप प्लेसमेंट में बैठे। कि भाई जब स्टूडेंट्स आते हैं और इनोवेटर बन के जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जहां हम ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने किस किस प्रकार के अलग अलग किस्म के इनोवेशंस किए हैं और अपने स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए हैं। डॉक्टर ममता, अगर मैं बात करूं कि हम स्टूडेंट्स को जब एनकरेज करते हैं कि वो इनोवेशंस की तरफ कदम बढ़ाएं, तो आई एम श्योर कि उनके पास कई बार ये भी नहीं होता होगा कि हम किस बारे में सोचें, अगर हमें इनोवेट भी करना है तो किस एरिया में जाएं, तो इन सारी चीजों की भी हेल्प जो है या नॉलेज देते हैं।
1: बिल्कुल। हमारा फोकस सिर्फ यही रहता है, इनोवेशन सिर्फ हमेशा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, हमें हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को देखना चाहिए।
0: जी।
1: अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हमारी सराउंडिंग्स में क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक सॉल्यूशन में,
0: जी,
1: सो दिस इज द इनोवेशन। तो इसके लिए मैं एक कोट करना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल कि कैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को वी हैव गाइडेड कि दे कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। सो ये कहानी है चार बच्चों की जिनकी फैमिली बिलोंग करती थी फार्मर्स, राइट। सो उनको एक टास्क दिया गया कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके जो उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करो और उसको हमारे साथ डिस्कस करो। तो उन बच्चों ने काम किया, दे हैव अ डिस्कशन विद देयर पेरेंट्स, तो वो प्रॉब्लम्स लेके आए। सो अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर उनको कुछ पूछना होता है, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि टाइप करें या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। सो नाउ दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ट्राई टू क्रिएट अ चैटबॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज।
0: वाओ।
1: राइट, इन तेलुगु। तो अब वो तेलुगु में ही अपनी क्वेरी पूछेंगे और उसी लैंग्वेज में उनको आंसर मिलेगा। सो दिस वाज द इनोवेशन एंड दिस इज रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट, इट इज अ फाइल पेटेंट ऑफ विद द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट्स ओनली।
0: वाओ। तो आप देखो ना कितनी अच्छी चीज है कि देखो बच्चों को ये पता था कि हमारे माता पिता सिर्फ वहीं की भाषा में बात करते हैं, अब अगर उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की अगर कहीं भी परेशानी है और वो गूगल पर जाकर सर्च भी करते हैं और उन्हें उस परेशानी का जवाब चाहिए, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्या करें। तो भाई एक चैटबॉट है जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डालिए और आपको अब सबसे अच्छी चीज है कि आप ही की भाषा में जवाब मिलेगा, और ये जो ट्रांसलेशन वाली चीज है और ये इसको सही कनेक्ट करने वाली चीज स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने अपनी नेटिव, अपने आसपास की चीजों की परेशानियों को समझा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो कि शायद अब मानव रश्य यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उन्हें आप?
1: बिल्कुल। सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इफ यू वॉन्ट टू स्टेप इन टू द इनोवेशन जर्नी,
0: जी,
1: आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ऑलवेज बी क्यूरियस। आपको अपने क्लासरूम में अपने टीचर से यू नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बन जाए। सेकेंड, यू ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट टू ट्राई न्यू थिंग्स। फेलियर से नहीं डरना, क्योंकि इनोवेशन और फेलियर एकदम साथ साथ चलते हैं। एंड द थर्ड आई वॉन्ट टू से कि ऑलवेज बी कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स.
0: वाकई भाई सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी सी एडवाइस दी है डॉक्टर ममता अरोड़ा ने. और मैं तो अगर कोई स्टूडेंट वाकई कुछ इनोवेशन करना चाहता है ना, तो मैं दो ही चीजें मांगती हूँ. एक तो सुबह सुबह की गर्मा गर्म जो ब्रेड होती है ना, वो फ्रेश अपने घर में कॉम्पैक्ट तरीके से अवन के अलावा कैसे बन सकती है ये जरूर ढूंढिएगा. इतना छोटा सा गैजेट हो जो बड़ी आसानी से कहीं फिट हो जाए और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी गर्मा गर्म और मजेदार हो जाए और आपको कहीं से खरीद कर एक्सपायरी डेट चेक करे बिना ब्रेड खाने को मिल जाए. और दूसरी चीज, जब कभी भी ऑफिस आते हैं और जाते हैं ना, तो सबसे लंबा टाइम हमारा कहाँ जाता है, रेड लाइट्स पर. अगर कोई ऐसा गैजेट आ जाए जो आपको ये बता दे कि कौन सी रेड लाइट पर कितना टाइम लगने वाला है, तो आई एम श्योर हम जैसों की तो जिंदगी आसान हो जाएगी. तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आइडिया बहुत ही मजेदार है, तो चलिए जाइए इनोवेशन कीजिए और बन जाइए हिस्सा मानव रचना यूनिवर्सिटी का. जी हाँ, एड्रेस बता देती हूँ आपको. आपको आना है सेक्टर 43 दिल्ली सूरजकुंड रोड मानव रचना कैंपस. और यहाँ पर आकर आप न सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अपने लिए एक अच्छा भविष्य चुन सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता. क्या कहना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं?
1: आप आइए और कनेक्ट होइए मानव रचना के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन क्लब से जुड़िए. थैंक यू एवरीवन.
2: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था. मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है. और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा.
3: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे. रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश.
2: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप? और मुझे आप बताइए कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुनते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? और नंबर हमारा 8010781078, अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं कि कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियाँ कैसे लेकर के

आए इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीज हो जाती है और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने समझने काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फर्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं और आपका सपोर्ट मैसेज के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए, लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की ये शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कोलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा, मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। और यकीन मानिए, पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है, इसकी आदत आप बनाइए। देखिए, लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए। अब वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी सी देर में। इंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं, बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पर इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके जरे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना

सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाने वाली है, राइट? ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज़ और, जो हमारे बुज़ुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है, आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हों, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और साथ ही मैं तो चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद?

पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है, वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे बड़े कहकर गए हैं और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है, कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए और आप ही परेशान होंगे। इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के, तकलीफ़ के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है. होता है ना ऐसा? और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए. पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है. आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर. इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है. जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए. और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा. पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए. और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए. ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है. ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी. तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे. ये तभी चीज़ें पॉसिबल है. इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं. इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे. अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है. वो तुलना करते हैं एक दूसरे से और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी. वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए. इसके बारे में बात होगी. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

मैं हूं प्रांका आपके साथ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके, कैसे खुश रहना है, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं, और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है, चीज़ें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है। लेकिन पता क्या होता है, हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं। जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहाँ हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो हम कंपेयर करने लगते हैं। और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है। और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं, ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है, तो ये आप नहीं कीजिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, राइट? इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर, इसको आज ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है। तो वो आप मत कीजिए, अपनी आदत को आप समझिए। आप समझ सकते हैं कि खुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी, और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं। तो देखिए ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं, जैसे हैं, आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं, और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई। आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं। ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में, आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ, और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे। तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं। जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा। शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया। मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्यों, मैं क्यों

नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा है या कर पा रही, ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है। जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, राइट? तो मैं तो यही कहूँगी, कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इन्जॉय कीजिए। ऐसी ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी, और वो क्या है, किस बारे में है, ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। चलिए एंजॉय करते हैं गाना। रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं. एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना. पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है. और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है. मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरिजन लोग करते हैं. लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ. क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है. तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए आगे, उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा. और पता है आज के टाइम पे ना हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी, और अच्छी जगह पर हमें रहना है. हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है. और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं. लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है. तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे. कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078. होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए. मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि आपका नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. बाय.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं को समर्पित

करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। तो आज इनके बारे में यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राजदरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राजदरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कविदेव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौण रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर। पल भर

प्यार गुलाब। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवे करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहू ओर, सुदेव घटा घिर की चहू दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नफरत

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई ते ही छिन देव, सु प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर किसान भाइयों आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीताफल के बारे में। देखिए किसान भाइयों, सीताफल जिसे आम बोलचाल की भाषा में शरीफा भी कहा जाता है, आज आप लोगों के लिए मुनाफे का शानदार विकल्प बनता जा रहा है। ये फल स्वादिष्ट, मीठा और पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहती है। किसान भाइयों, सीताफल का उपयोग केवल फल के रूप में ही नहीं होता, बल्कि इससे शरबत बनता है, मिठाइयां बनती हैं, आइसक्रीम भी बनती हैं और वाइन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसकी व्यावसायिक खेती तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार भी बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है और कई राज्यों में बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। कम लागत और बेहतर मुनाफे के कारण सीताफल की खेती छोटे और मध्यम किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बात हैं जो जानना जरूरी है, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज आपसे बात कर रहा हूं सीताफल के बारे में। देखिए, सीताफल की खेती के लिए सही समय और अनुकूल जलवायु का चयन बहुत जरूरी होता है। इसकी जो बुवाई है साल में दो बार की जा सकती है, पहला समय जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा फरवरी से मार्च के बीच सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये जो फल है ना किसान भाइयों, सीताफल, ये गर्म और हल्की शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड और पाला नहीं पड़ता, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहाँ तापमान संतुलित बना रहे। गर्म मौसम में पौधे तेजी से विकसित होते हैं और फलों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस मिट्टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, अगर हम सीताफल की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, सीताफल की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, पहली बात तो यह है। लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कमजोर और पथरीली जमीन पर भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि पीएच मान की जानकारी मिल सके और सीताफल की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करते समय 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और हर एक गड्ढे के बीच लगभग 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और जीवाणु नष्ट हो सकें। इसके बाद गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, खली और एनपीके उर्वरक मिलाकर भराई की जाती है। अब सवाल आता है कि इसकी बुवाई का समय क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो किसान भाइयों, सीताफल की बुवाई के बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीताफल की बुवाई के लिए पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, पॉलिथीन की जो थैली होती है, उन पॉलिथीन की थैलियों में मिट्टी भरकर उसमें बीज डालना चाहिए, और पौध तैयार होने के बाद इन्हें खेत में रोपित किया जाता है। इससे पौधों की जो वृद्धि है वो बेहतर होती है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है। गड्ढों में खाद और उर्वरक डालने के बाद 3 से 4 दिनों तक सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर शुरुआत में पौधों की सही देखभाल की जाए तो आगे चलकर उत्पादन काफी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आप जो भी फसल अपने खेत में बोएं उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो। तो चलिए कुछ और भी बातें हैं आपको बताऊंगा सीताफल के बारे में, कि इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में। सीताफल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रति पेड़ लगभग 20 से 22 किलोग्राम जैविक खाद या गोबर की खाद देना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 40 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश की मात्रा भी हर साल दी जानी चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर होता है। होता क्या है किसान भाइयों, जैविक खाद जो है ना, उसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अब सवाल आता है सिंचाई का, कि सिंचाई और इसकी देखभाल कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारी उपज और भी बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई और इसकी देखभाल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, देखिए सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। सीताफल की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ड्रिप सिंचाई और छिड़काव विधि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। गर्मियों के मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पौधों को हर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, पौधों की नियमित देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और समय समय पर छिड़काव करने से रोगों और कीटों से बचाव किया जा सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे से हर साल लगभग 100 फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 50 किलोग्राम उत्पादन के बराबर होता है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके आप लोग उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
2: अरे है।

0: करता है।
1: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। देखिए किसान भाइयों, सीताफल की खेती के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सीताफल की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। एक एकड़ खेत में लगभग 400 से 450 पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे सालाना लगभग 30 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सीताफल की अच्छी कीमत मिलने के कारण किसान इससे सालाना 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप लोग आधुनिक तकनीकों और उचित प्रबंधन के साथ खेती करें तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बागवानी फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और सीताफल की खेती किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में इसकी खेती और अधिक लोकप्रिय होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर। आज को हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और यकीनन कामयाब कहानियों की बात होती है यहां पर। कामयाब एज इन जिनकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं, वो कामयाब कहानियां जो ये कामयाब हो पाया हमारा सपना। हम इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पर इस शो के माध्यम से आपके दो फायदे हों। पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको सर्व करता है ये शो, जो आपको बताता है कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पीछे, एंड एग्जैक्टली इंडस्ट्री कैसे काम करती है कोई भी अगर करती है तो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से हम ऐसे अलग अलग सर्विसेज देख पाते हैं अपनी कंट्री में, और दूसरा ये कि हमारे देश में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसका। तो आज फिर से आए हूं लेकर के शो, बहुत सारी बातें करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी इंडस्ट्री है, बात करेंगे कंपनी कौन सी है। बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उस म्यूजिकल ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब

ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है। ज्वाला।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो

0: हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइक
1: ज्वाला। समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहाँ से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: तुझी से।
1: फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रस्थ 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं वहां से, कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी है, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए कंज्यूमर्स के पास, आप माने या ना माने, लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है। क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड फील

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीजें अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां।

दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को केटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको

वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

बिना किसी देरी के आपको बताते हैं भैया, आज की जो कंपनी है इसका नाम है कलर बार। कलर बार 2004 में स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्टली आप इसको टेक के स्टार्टअप के तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस आपको टेक का फीचर नहीं देखने को मिलता है। बट देर आर सो मैनी थिंग्स जो इस कंपनी के विजन में फॉल करती है। इमेजिन यू आर एंटरिंग अ स्टोर जहां पर मेकअप का सामान आपको मिलता है एंड दिस इज द टाइम ऑफ अर्ली 2000s, जहां पर आपको या तो एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स मिलते हैं या फिर आपको चीप लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो एक गैप था इन दो चीजों के बीच में। नाउ व्हाट दिस कंपनी डिड इज उन्होंने सिंपली इस थॉट को चैनलाइज किया कि इंडियन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज अफोर्डेबल प्राइस पर क्यों नहीं ले सकते, या फिर व्हाई कांट वी गेट क्वालिटी स्टफ विदाउट पेइंग फॉर लग्जरी प्राइस। दैट वाज अ थॉट बिहाइंड दिस कंपनी एंड जिसके बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो एक इंडियन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो डील करती है मेकअप में, स्किन केयर में, नेल प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी एक्सेसरीज में, प्रीमियम ब्यूटी एक्सपीरियंस में। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली से एंड इट ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड आउटलेट्स एंड मल्टी ब्रांड स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स। सो बेसिकली ये कंपनी जो है टाइम के साथ इवॉल्व हुई है काफ़ी, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। सो दिस इज अ थॉट बिहाइंड इट कि आपको या तो लग्जरी ब्रांड मिलते थे या फिर चीप ब्रांड्स आपको मिलते थे जिनके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वालिटी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस कंपनी ने दोनों को मर्ज करके बीच का एक ऑप्शन आपको दिया कि अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिलेगा विदाउट पेइंग हाई एंड प्राइसेस। दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट। आई होप यहां तक आप शो को समझ पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। ऑन दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। शो हमारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड द स्टार्टअप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कलर बार। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। सो हाउ डिड इट स्टार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये कंपनी स्टार्ट इसलिए नहीं हुई कि किसी को मेकअप से प्यार था, ये कंपनी इनफैक्ट स्टार्ट इसलिए हुई किसी ने मेकअप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल किया, और वो इंसान थे समीर मोदी। उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स बहुत फैशन कॉन्शियस तो हो गए हैं बट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। और जैसा मैंने प्रीवियसली कहा कि या तो आप हाई एंड प्राइस पे करेंगे अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टफ चाहिए, या फिर अगर आप कम प्राइस में ले रहे हैं तो आप क्वालिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लग्जरी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उन्होंने इंडिया के लिए उनको अफोर्डेबल बना दिया। और बिगिनिंग बहुत स्मॉल थी, मात्र 16 लिपस्टिक्स एंड 16 नेल कलर्स जो है इतना वो लेकर के आए थे। बट दैट वॉज द थिंग, पर्सनली इन्होंने खुद जाके स्टोर्स पे विजिट किया, रिटेलर्स को कन्विंस किया कि उनके प्रोडक्ट्स को आप रखिए यहाँ पर, लगाइए, देखिए लोग इनको पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो पैशन के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक स्टार्टअप आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलर स्टोरी रितेश अग्रवाल की रही है, हु स्टार्टेड ओयो। उनका भी सेम था कि एक पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने देखी कि यार यहाँ पर ना गैप है एक बहुत बड़ा, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसको मर्ज किया। सो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि वो जाकर होटल्स को कन्विंस करते थे कि मैं आपके होटल को कुछ दिन के लिए लिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगे तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और एग्जैक्टली ऐसे अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी मार्केट्स में आपको ऐसे गैप नजर आएंगे। इट्स जस्ट हाउ टू मर्ज दीज टू थिंग्स, दैट्स हाउ द आइडिया वर्क्स। सो ये एक उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट अगर आप नहीं हुए किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ में आ रहा है कि बॉस यहाँ पर गड़बड़ है, इसको फिक्स किया जा सकता है, यू आर स्टिल गुड टू गो। दैट्स हाउ दिस होल कंपनी स्टार्टेड। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

ऑल राइट, बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. व्हाट वाज द मेन आइडिया? सो द आइडिया वाज नॉट टू सेल द लिपस्टिक और सेल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स. द आइडिया वाज लेट्स डेमोक्रेटाइज द ब्यूटी. मतलब हर एक इंसान का अधिकार है सुंदर दिखने का, हर एक इंसान का अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का. तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सेस दिलाने का काम किया इस कंपनी ने. कलर बार ने फोकस किया कि आपका फील प्रीमियम हो, आपके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हो, इंडियन स्किन टोन्स के साथ वो मर्ज हो, ठीक है, वाइडर कलर चॉइसेस आपको मिले, इंक्लूसिविटी आपको मिले. एंड लेटर ऑन उन्होंने बाद में अपग्रेड किया खुद को, उसके बाद ये वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ गए, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ गए, सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ गए. जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्हें समझ में आया कि ओके, एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है और लोगों की चॉइसेस चेंज हो रही हैं एंड वी एज अ कंपनी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बाद में उन चीज़ों का अडॉप्ट किया जिससे आप मदर नेचर को यू नो एटलीस्ट ज़्यादा डैमेज पहुंचने से या ज़्यादा हार्म पहुंचने से बचा सकते हैं. सो हिज नेम इज़ समीर मोदी. फाउंडर की स्टोरी की बात करते हैं. सो पहले थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर कलर बार वर्ड. बिफोर कलर बार उन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम किया एट फिलिप मॉरिस जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने मोदी केयर बिजनेस जो है स्टार्ट किया, उसके बाद मल्टीपल ग्रुप वेंचर्स जो है उन्होंने अपने स्टार्ट किए, ठीक है. एंड ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, स्टेट लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, आर्ट एंथुजियास्ट रह चुके हैं, म्यूजिक लवर हैं, ठीक है. एंड दिस इज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ बिजनेस पढ़ा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स आपके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं. ओके, एंड कलर बार जो ये कंपनी है ये ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुई थी. एंड याद रखिएगा 2004 की हम लोग बात कर रहे हैं, वे बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दिस स्टफ, उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. उस टाइम पर इन्होंने इस चीज को देखा और वहां पर गिव अप नहीं किया अपना. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि ही वॉज कन्विंस्ड विद दिस बिजनेस आइडिया कि लोगों को पसंद आएगा. और अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लग रहा है उसे सिर्फ अपने दिमाग तक क्यों रखना, लेट्स टेक अ शॉट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देन उसके बाद फिर बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स थे जो उस टाइम पर, उनके साथ कम्पीट भी किया, उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल अप किया एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते गए, कॉन्स्टेंटली रीडिजाइन करते गए, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया स्टोर एक्सपीरियंस को, कॉन्स्टेंटली कैटेगरीज को एक्सपेंड किया, कॉन्स्टेंटली ये भी ट्रैक किया कि लोगों की चॉइसेस क्या है. एजुकेशन है इनकी डून स्कूल, हिंदू कॉलेज एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. So this is the whole life of this founder, Mr. Samir Modi. Now we'll take another musical break. उसके बाद show continue करेंगे. कुछ और चीजें हैं जो इस कंपनी के बारे में आपको बतानी चाहिए, but वो later on discuss होगी. फिलहाल मजा लीजिए गानों का. Stay tuned, feel good, feel.

उम्मीद यही कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आ रहा है और जो पर्पज है हमारा शो का फुलफिल हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। कलर बार हमारी आज की कंपनी है। अब बात करेंगे इसकी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि आपको हजारों कंपनीज नजर आएंगी लेकिन हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है कि कौन सी वो चीजें हैं जो उस कंपनी को खास बनाती है। सो इस कंपनी की यूएसपी है लग्जरी फील एट एक्सेसिबल प्राइस, ठीक है, बट इसमें बहुत डीप लेयर्स भी हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी रेंजेस मिल जाती हैं शेड्स की, लार्ज रेंज ऑफ शेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वीगन प्रोडक्ट लाइंस आपको मिलती हैं, एंड ब्यूटी पर्सनलाइजेशन का भी एक यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है विदाउट पेइंग फॉर द लग्जरी प्राइस। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें, कंज्यूमर शिफ्ट, ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स चेंज हुए, नीड बेस्ड बाइंग से हट करके हम लोगों के थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सपेंड हुई, हमने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। तो लोगों ने क्या चेंज किया, मुझे लिपस्टिक चाहिए यहाँ से लेकर के आई वॉन्ट दिस ब्रांड, ये अभी आप देखते हैं कि लोगों की चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग ज़्यादा खुल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो अब नीड से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है और इस बात से हम सब लोग अग्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम एंड ब्यूटी क्रिएटर्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ, बाइंग बिहेवियर, ठीक है, ब्यूटी बिकेम लाइफस्टाइल, ब्यूटी बिकेम एक्सप्रेशन, ब्यूटी बिकेम आइडेंटिटी। देन उसके बाद प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ लोग जाने लगे, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट हो, क्वालिटी हो, ये भी इस कंपनी ने अच्छे से अडॉप्ट किया और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कंपनी 2004 से लेकर अभी तक काम करती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर लें, कितना ही अच्छी आप मार्केटिंग कर लें, कितना ही अच्छी आप चीजें कर लें, लेकिन अगर आप रेलिवेंट नहीं है, अगर आप अप टू द डेट अपने प्रोडक्ट्स को नहीं रख पा रहे हैं, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो डील करती है कि बर्थडे डेकोरेशन में, अब रिसेंटली कोई थीम आई है, कोई मूवी आई है, फॉर एग्जाम्पल बीते दिनों बार्बी एक मूवी आई थी, तो हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने ना जैसे ही बार्बी मूवी लॉन्च हुई एग्जैक्टली वैसे ही अपनी किट्स बनाने शुरू कर दी बार्बी बेस्ड थीम। व्हाट वाज दैट? अ मार्केटिंग थिंग, कि ऑलरेडी हाइप चल रही है, ऑलरेडी क्रेज चल रहा है, हम आपको आपके घर पर ही डिलीवर करके देंगे, दिस इज द थिंग, और अच्छा किया उन कंपनीज ने। सिमिलरली आपको हर एक यू नो ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है, हर एक ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा, और जब आपको ट्रेंड समझ आने लगते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि लोगों का टेस्ट चेंज होता है और बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है उनके आसपास का। दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस। सो आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो या इनफैक्ट अगर आप जॉब भी करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यू नो अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर बिजनेस, स्टे अप टू डेट, दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। आई होप यहाँ तक मैं समझा पाया हूँ। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

इस उम्मीद के साथ कि आपको मजा आ रहा है, शो को अपने आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम टू कंक्लूड आवर शो। आज हमने जिस कंपनी की बात करी, इस कंपनी का नाम है कलर बार। अभी इस कंपनी के 100 से ज्यादा खुद के स्टोर्स हैं, 1200 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब अलग अलग ब्रांड के आउटलेट्स पे आपको इनके प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान है इनके पास, ठीक है। स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, वैसे वैसे कंपनी ने खुद को चेंज किया है, खुद को इवॉल्व किया है। दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती हैं या कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती है। बट नो, दैट्स इनकरेक्ट। परफेक्शन इज अ मिथ। दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अ मिथ। और ये बात बार बार बार बार बार बार अलग अलग कंपनीज के थ्रू हमने प्रूव करके भी आपको दिखाई है। सिमिलरली यहाँ पर है, तो एक गैप देखा इन्होंने अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के बीच का, उसको मर्ज किया, फिक्स किया उसको, देन उसके बाद खुद को इवॉल्व किया। लिपस्टिक और नेल पेंट से स्टार्ट करते करते आज इतनी वाइड वैरायटी इनके पास है कि लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, अफोर्डेबल प्राइस पर ये देते हैं और कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से जो बहुत लग्जरी आपको एक्सपीरियंस देते हैं। सिंपल आइडिया। आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी, और साथ साथ अगर आप ऐसा कोई सिमिलर केस जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पे। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर हॉल्ट देने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

0: Gagan Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hoon RJ Sagar, aaj hum lekar ke show, Voice of Youth. Show bahut special hai, uski bahut sari wajah bhi hai ki yahan par ye show bahut sari cheezein aapko sikhata hai. I mean, har baar hamare saath yahan par kuch experts hote hain jo apni life ke overall experience se kuch kuch skills hum logon tak pahunchate hain. आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं. यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ. बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता हैं एंड फोटोग्राफर हैं एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं. वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन. सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेठिया का. यतिन, स्वागत है हमारे शो में.
2: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ. ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैन भी, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ. और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है. मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस

0: था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने
0: फिर
1: शुरू किया।
0: बहुत सुंदर नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है, हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है, आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.7 FM।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And agar aapke paas koi feedback hai, mere liye, Yatin ke liye, koi bhi cheez hai jo aapke zehen mein hai aur hum tak pahunchani hai, do make sure 8010781078 is number tak aap pahuncha chuke ho. Filhal apne show ko aage badhayenge. Yatin, mera next question aapse rahega content creation ke bare mein. When you think about a content, a piece of content, to usko kaise aap sochte ho and what is the process? Kya jata hai uske piche?
1: प्रोसेस ये है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ.
0: मतलब what could be an ideal approach to start the content creation journey?

0: से हो सकता है शुरू?
1: देखो सबसे पहले जील होनी चाहिए कि यार ये मुझे करना है, इज्जत होनी चाहिए कि यार ये करना है, और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है अगर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता आप मतलब आप 1% जानते हो 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो। सबसे पहले सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे। सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है। तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना। आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो, आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ, और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा। सबसे मेन चीज है शुरू करना, और शुरू कैसे करना आपको खुद ही, अगर जिद है दिल है तो आप कर सकते हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जील, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉइड के भी कुछ आज के एंड्रॉइड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉइड, तो आप वीडियो बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में, वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे, तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें, तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ, और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर,
1: कुछ
0: बहुत
1: भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो, बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। अब जस्ट नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको गाने अच्छे लगे। वंस अगेन आई एम होपिंग ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा

0: जरूरी नहीं है, एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधे पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है, लेकिन हाँ एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है, शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी, लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सेम वीडियो एक बना के चार प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। तीन प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है, और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है, और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। तो ये तीन प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे वन पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
0: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं एक साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
1: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
0: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है किसी चीज का शुरुआत। शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदिन से बात करी, यदिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यदिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 के से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका, थैंक यू सो मच मैन।
0: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं, अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: ज़्यादा विजिबल हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक ही बता सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत सारी बात वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई कि आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या। तो आज हमारे कार्यक्रम ऑल इज वेल में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक लेजर और जनरल सर्जरीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया
0: जी।
1: और आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक तो कर रहे थे पिछले 20 साल से, रिसेंटली 5 इयर्स बैक लेजर इंक्लूड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में
0: जी।
1: और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस के आ रहे हैं। तो आपने आज जो इंट्रोड्यूस किया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में
0: जी, तो
1: वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस में होता है, क्यों होता है और उसका क्या करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा प्रॉब्लम।
0: जी बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ये खांसी जुकाम की तरह नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। सो बेसिकली वेरिकोज वेन्स है क्या?
1: जैसे कि आपने कहा कि पैरों में नसें होती हैं, तो नसें तो चाहिए, आर्टरीज हैं जो आर्टरीज हैं जो ले जाते हैं खून को आगे दूर की तरफ, और उस तरफ से फिर रिटर्न के लिए जो नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू दिखते हैं आपको कई बार पैरों में
0: जी।
1: तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वॉल होती है और वॉल में कुछ वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। तो कई कारणों से इनका बैक फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वेन्स डायलेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेन्स। तो फिर वो डायलेट होने से जो मोटे मोटे वेन्स दिखने लगते हैं लोगों को, या कई तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के हैं, और उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: जी। यानी ये जो नसें विजिबल हो जाती हैं, जाल की तरह हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाई जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स होने से प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर किन लोगों को हो सकती है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में ये खास जानकारी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजी दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ये सारी जानकारी वेरिकोज वेन से जुड़ी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में. एक ऐसी समस्या जो काफी आम नहीं है लेकिन फिर भी जिसको होती है वो ही इसकी तकलीफ समझ सकता है. आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि जाने माने सर्जन हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करें वेरिकोज वेन से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवाल. सर आपसे अब मैं जानना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में हम बात करें. आपने बताया कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं वेन्स वापस लेकर आती हैं और इस वेन्स का जो एक जाल बन जाता है वो वेरिकोज वेन्स कहलाया जाता है. लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किन लोगों को इफेक्ट कर सकता है, किस एज में कर सकता है, क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है, यंगस्टर्स को हो सकता है?
1: एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जैसे आपने बोला ना जाल हो जाते हैं, तो कई तरह के वेरिकोज वेन्स के कई टाइप्स हैं
0: जी.
1: जैसे कुछ वेरिकोज वेन्स जो स्पेसिफिक बोलते हैं उसमें जो खून की नसें डायलेट हो जाती हैं मोर देन 3 mm साइज अगर हो जाए
0: अच्छा.
1: तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं.
0: ओके.
1: अगर 1 mm से कम है तो फिर वो टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं.
0: ओके.
1: और अगर उससे थोड़े बड़े हों 1 to 2.9 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स.
0: Okay.
1: जैसे आप बोलती हैं जाल इज रेटिकुलर.
0: ओके.
1: तो जाल की तरह होते हैं और वेरिकोज वेन जो 3 mm से बड़े होते हैं वो आप देखेंगे टॉर्सुअस हो जाते हैं. और एकदम लंबे लंबे से सांप की तरह आपको पैर के ऊपर दिखेंगे,
0: स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाते हैं.
1: तो वो वेरिकोज वेन्स है बेसिकली 3 mm से बड़े साइज के. तो ये होते हैं और उसका कारण क्या होता है मेनली कि सारे जगह वाल्व्स होते हैं. पैर में 2 सिस्टम ऑफ वेन्स हैं, 2 डीप है और 1 सुपरफिशियल है. उस दोनों के बीच में वाल्व होता है. तो जब हम खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, मतलब मोर देन 100 mm ऑफ एचजी तक हो जाता है वेन में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हम रहते हैं खड़े. तो उसको सस्टेन करने के लिए वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है. क्योंकि पैर से जब ब्लड निकलता है, पैर में आपने सुना हो एक पेरिफेरल हार्ट भी होता है, सोलियस मसल होता है, तो जब हम चलते हैं काफ मूव करता है तो फिर वो वेन ब्लड जो है ऊपर पंप होता है हार्ट की तरफ. फिर और सांस भी लेते हैं लंबी तो वहाँ निगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में, तो वेन ब्लड को सक करता है ऊपर.
0: ओके.
1: तब ब्लड जो है पेरिफेरी से हार्ट में आता है.
0: ओके.
1: तो इस तरह से उस प्रोसेस में हिंड्रेंस हो जाता है, वाल्व खराब होने से बैक फ्लो हो जाता है.
0: ओके.
1: ब्लड का पुलिंग होने लगता है, पैर में ब्लड जमा होने लगता है.
0: ओके.
1: तो इसको इससे ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज ये हो जाता है कि हार्ट को कम ब्लड जाता है, पैरों में ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है.
0: ओके. यानी वो नसें जो है वो इतनी स्वेलिंग सी हो जाती है कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से हार्ट पर भी असर पड़ सकता है. ये तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को अंदाजा ही नहीं है कि पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने से आपके दिल पे असर पड़ता है. और डॉक्टर साहब उम्र क्या होती है जिसको ये इफेक्ट करता है, क्या किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चे जनरली इतना ज्यादा
1: बच्चों में नॉर्मली ये नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत कम चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एजेनेसिस ऑफ वाल्व होता है, वाल्व बनते ही नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो उनको अर्ली स्टेज में हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये एक्वायर्ड रहते हैं. और जो यंग एज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में जब लेडीज जो यंग एज में प्रेगनेंसी है जैसे 20s-30s में शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से कई बार वाल्व खराब होते हैं.
0: Okay.
1: तो प्रेग्नेंट लेडी में थोड़े कॉमन होते हैं ये वेरिकोज वेन्स, बनना शुरू हो जाता उसी समय से.
0: Okay.
1: बट मैनिफेस्ट होते होते कई साल लग जाते हैं.
0: Okay. यानी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बाद में. ओके. और बुजुर्गों में काफी देखे गए हैं,
1: जैसे जैसे एज बढ़ता है वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है.
0: ओके.
1: तो ये एज से रिलेटेड है, कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ फैमिली में भी चलते हैं ये.
0: अच्छा. यानी हेरिडिटरी भी हो सकता है.
1: हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिलियल बोलते हैं.
0: ओके.
1: तो ये हो जाता है. और कुछ मोटापा हो, वेट गेन हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो प्रोफेशन हैं उसमें भी होता है ये, जैसे टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या फिर सर्जन जो लॉन्ग आवर ऑफ सर्जरी करते हैं, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस थोड़े रहते हैं
0: जी. यानी अगर आप 6-7 घंटे के आसपास खड़े हो रहे हैं डेली नॉन स्टॉप, जैसे मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर गार्ड्स बहुत सारे होते हैं,
1: टीचर्स गार्ड हैं, उन लोगों में सबके चांसेस रहते हैं.
0: सो अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 6-7 घंटे-8 घंटे अगर खड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ तो एक अलग लेवल पर हो रही है, बाकी चीजें भी आपकी बढ़ सकती हैं. जैसे आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है. लेकिन वेरिकोज वेन्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर की वजह से आपको परेशान कर सकती है. तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और साथ ही जानेंगे कि पहचाने कैसे इस प्रॉब्लम को. लेकिन अभी वक्त एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का, इसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी. तब तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप शायद उन्हें ना जानते हो या आपसे कभी उन्होंने डिस्कस ही ना किया हो, लेकिन अगर उनकी बहुत लंबे समय तक खड़े होने की जॉब है, जैसे बहुत सारे टीचर्स या फिर सर्जन्स या फिर गार्ड्स या फिर मॉल में खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में काफी परेशानी भी झेल रहे होते हैं क्योंकि वेरिकोज वेन्स उन तक पहुंच रही होती हैं। शुरुआत में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम कुमार, जाने माने सर्जन, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वेरिकोज वेन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब। सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिसेज में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे?
1: बहुत अच्छी बात है कि पहले तो प्रॉब्लम है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है वो जानना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, पैरों में।
1: जैसे आपने बोला बहुत से लोगों को, स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम में 50% लोगों को है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेनस डिजीज। तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आप देखते होंगे सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
0: एक दो साल का समय लग जाता है।
1: हाँ जी, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्चुअस हो जाता है,
0: जैसे आपने कहा वो स्नेक वाला वैसा दिखने
1: टाइप के दिखेंगे आपको। तो ये सेकंड उसके बाद का स्टेज है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है।
0: जी,
1: तो वो एक उसके बाद का स्टेज है जिसपे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ उसमें फैट डिपोजिट होने लगता है। और फिर उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा। तो
0: अच्छा।
1: कई बार आप देखते होंगे लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता है,
0: दर्द बहुत होता है, खुजली बहुत होती है,
1: तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में काफ में क्रैम्प्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको भी अभी इग्नोर करते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, कुछ केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर अल्सर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इचिंग के बाद छोटे छोटे घाव बनेंगे और वो ग्रेजुअली डीप हो जाते हैं और उनको वेनस अल्सर कहते हैं। ये फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हील, किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होता है। कुछ भी आप एंटीबायोटिक देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, उससे ठीक नहीं होगा,
0: नहीं होगा
1: जब तक कि हम उसके कॉज को खत्म नहीं करेंगे। लाइक जब तक वेरिकोज वेन को एबलेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं, ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक घाव बंद नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप सर्जन हों, चाहे आप गार्ड हैं या फिर किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और आप खड़े बहुत देर तक रहते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, सो आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। पैरों में होने वाली स्वेलिंग, साथ ही पैरों में होने वाली इचिंग जो होती है, आपकी टांगों में अगर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और नसें जो हैं वो अब विजिबली दिखाई दे रही हैं, थोड़ी मोटी हो गई हैं और आपको तकलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर वेरिकोज वेन्स में तब्दील हो सकती है। ये अभी शुरुआत है, इसलिए ये सिम्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती है। इसलिए अभी अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिले।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या जो आपकी टांगों में होने वाली प्रॉब्लम है, नसों का बहुत ज्यादा विजिबल होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होना, इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर में सिम्टम्स के तौर पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये घाव यानी चोट सी भी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये शुरुआती दौर के सिम्टम्स आपने समझ लिए तो फिर क्या इलाज होगा और डॉक्टर कैसे आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार से, जो कि जाने माने सर्जन हैं, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट भी। सो डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब एक व्यक्ति है, कोई टीचर है सपोज, और 36-37 साल की उम्र है, उनको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके पैरों में वेरिकोज वेन्स की हल्की हल्की समस्या आने लगी है, जैसे आपने कहा कि वेट की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, सो अब उनको क्या ट्रीटमेंट आप देंगे?
1: बहुत अच्छी बात। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो कितना समस्या कितनी गहरी है, कितना कहां से शुरू है, ये पता करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो हम देख के आंख से और डिफरेंट मेथड से ये पता करें कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं
0: जी।
1: तो नॉर्मली पैर में ना दो वेन सिस्टम है, एक तो डीप और सुपरफिशियल बताया। सुपरफिशियल में भी एक ग्रेट सेफेनस वेन है, लंबी वाली, जो जांग के पास से थाइक्स के से शुरू होके और फुट तक जाती है।
0: ओके।
1: तो उसको ग्रेट सेफेनस वेन बोलते हैं, और एक नी के पीछे से काफ मसल्स के थ्रू फुट में जाती है
0: जी।
1: उसको शॉर्ट सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं जिसमें वेरिकोज वेन्स होते हैं नॉर्मली। तो उनको हम लोग पहले इवेलुएट करते हैं, क्लिनिकल मेथड से देखते हैं कि किस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज होता है जो डॉपलर बोलते हैं।
0: वेनस डॉपलर वगैरह,
1: कलर डॉपलर
0: जी जी।
1: तो वेन्स का भी करते हैं, आर्टरी का भी करते हैं, इसमें वेनस डॉपलर करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा रियल वाल्व कौन सा खराब है, किस लेवल पे खराब है, और फिर उसके नीचे डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो परफोरेटर है उसमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व कहाँ पे खराब है, तो जहां जहां होता है उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं स्किन पेंसिल से ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉपलर के टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं
0: जी जी जी। तो यानी पहले आप उस चीज को समझेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात मैं करूँ तो ट्रीटमेंट क्या खाली ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी या किसी तरीके की और कुछ आप चीजें करते हैं?
1: कई स्टेज है ट्रीटमेंट के, अगर बहुत अर्ली है तो मेडिसिन भी है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, और उनको बड़े लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है विद मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे वेट लॉस करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे पेरिफेरल हार्ट, जो सोलियस मसल के अंदर जो पंप है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वेनस फ्लो को बढ़ा देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो स्टेसिस कम हो जाता है। तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद एक स्टॉकिंग सुना होगा आपने, कंप्रेशन स्टॉकिंग होता है, तो उसमें कई टाइप के हैं, ग्रेड 1, 2, 3 करके, तो उस स्टॉकिंग को आप पहन सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब आप वॉक करते हैं या लॉन्ग खड़े रहते हैं तो उस समय आप पहन के उसको यूज करके अपने वेनस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इससे फायदा भी हो सकता है।
0: यानी चीजें बेटर हो सकती हैं सिर्फ ओरल मेडिकेशन से,
1: ओरल मेडिकेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जो बड़े सारे दिन खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पैर में सूजन आना शुरू हो गया तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना शुरू करना चाहिए
0: जी जी। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से होती है, लेजर होती है या जैसे आप करते हैं नॉर्मल सर्जरी वैसे होती है, और कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है इसमें?
1: शुरू में जब हम लोग पढ़े कॉलेज में थे तो उस समय तो ओपन सर्जरी ज्यादा होता था, स्ट्रिपिंग करते थे, वेन के अंदर एक तार डाल के उसको खींच के निकाल देते थे, थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी उसके होते थे, नर्व इंजरी वगैरह हो जाता था, धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट सा हो गया है, और आज के दिन में जैसे एडवांसमेंट हुआ सर्जरी में बहुत सा चीज आ गए, तो लेजर के आने से एकदम से रिवोल्यूशनाइज हो गया। पिछले 10-15 साल से लेजर वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं जी, और उसमें बहुत कम तकलीफ होता है, बस एक नीडल प्रिक करते हैं वेन में और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और फिर एक सीथ डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर्स जाता है और ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ठंडा पानी या okay. उसमें विथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, सो दैट की पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो.
0: okay.
1: तो उसमें फिर लेजर फाइबर से मतलब 60 जूल पर सेंटीमीटर एनर्जी डिलीवर करते हैं, सो दैट की वो बर्न हो जाए, कोलैप्स हो जाए वेन्स. फिर वेन धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, वो बंद होता जाता है.
0: ओके जी. और इसमें रिकवरी कितने समय में हो जाती है? क्या व्यक्ति दोबारा वही जो जॉब है अपनी कर सकता है? सपोज कोई टीचर है तो वो टीचिंग प्रोफेशन वापस अपना शुरू कर सकती है?
1: कब से रिज्यूम करे अपना जी? तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहले तो एक लेजर था, फिर उसके बाद थोड़ा RFA आया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन बोलते हैं वो. फिर कुछ हाल के दिनों में कुछ ग्लू भी आए हैं, तो उससे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ज्यादा, बट और भी कम पेन और फास्टर रिकवरी. जो आप बोलिए कब ज्वाइन कर सकता, तो नॉर्मली ये सारे जो भी कोई प्रोसीजर करते हैं हम लोग 24 आवर में सारे पेशेंट घर चले जाते हैं. मतलब कैन डू इन डे केयर आल्सो, बट एहतियातन उनको रख लेना, थोड़ा रेस्ट देना अच्छा रहता है. तो 24 घंटे में तो 99% लोग घर चले जाते हैं.
0: अच्छा, और उसके बाद 2-3 हफ्ते में काम शुरू कर सकते हैं.
1: मतलब 1 week के बाद भी अगर शॉर्ट स्टैंडिंग का काम है तो जा सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग पहनना बड़ा जरूरी रहता है. 1.5-2 महीने तक स्टॉकिंग दिन में पहनना चाहिए, रात को सोते वक्त में उतार
0: देना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वेरिकोज वेन्स की समस्या ये ट्रीटमेंट सारे होने के बाद दोबारा भी आ सकती है?
1: बड़ा इम्पोर्टेंट है और सब लोग ये पूछते हैं, जानना भी चाहिए कि रिकरेंस के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं. मतलब 5-10% लोगों को 5 years डाउन द लाइन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बॉडी में एक बड़ा मतलब फैंटास्टिक फीचर बोले कि हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, रिपेयर करते रहता है. तो जिस वेन को हम लोग बर्न कर देते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे रिकैनलाइज हो जाते हैं.
0: अच्छा,
1: जैसे कई बार आपने सुना होगा पैर के नसों में ब्लड जमा हो गया, थ्रोम्बस बन गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो 4-6 महीने में आप देखेंगे वो रिकैनलाइज हो जाते हैं, फिर से उसमें नए वेन्स पेटेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं. तो वैसे ही बॉडी अपने को रिपेयर करता है और वो वेन फिर से पैदा हो जाते हैं. और लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में, 5-10% बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो ऐसे लोगों को होने की संभावना है 5 years के बाद.
0: ओके, सो वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया है, सर्जरी से या फिर ओरल मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज से या फिर ग्लू से. जी हाँ, ग्लू से भी वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है. लेकिन आगे हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, रीअकरेंस ना हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी चीजें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं आज वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अक्सर आपने बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, पर बात करना जरूरी है। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप काफी घंटों तक नॉनस्टॉप खड़े रहते हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है और नसें जो हैं आपकी वो विजिबल हो रही हैं, थोड़ी मोटी दिख रही हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या आप क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स खतरनाक क्यों है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि भाई ये हार्ट पर भी असर डालती हैं। अगर नसों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सीधा दिल पर असर पड़ेगा, और दिल पर असर पड़ेगा तो आपकी पूरी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए वेरिकोज वेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लू हो या फिर सर्जरी हो या फिर ओरल मेडिकेशन, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने सर्जन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर साहब, अब जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, उसके लिए अपना ख्याल क्या रखें, क्या डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दिया जाता है।
1: मैडम, इसमें ना दो तरह के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ चीजें जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एजेनेसिस ऑफ वाल्व है या फैमिलियल ट्रेट्स हैं, तो ये इतनी ग्रुप है, किसी किसी देश में किसी किसी रीजन में ज्यादा होता है, तो ये सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनको, लेकिन इनका रोल बहुत कम है
0: जी,
1: बहुत रेयर है ये सब, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं उस पर हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेट गेन को रोकना, तो उसमें आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस और फिजिकली एक्टिव रहना, ताकि आपके जो पेरिफेरल हार्ट हैं, सोलियस मसल्स का मूवमेंट हो, काफ का मूवमेंट ज्यादा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वेन डेवलप नहीं होंगे। या जैसे आपका, आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब हैं, तो वो भी बीच में थोड़ा ब्रेक लें और पैर को मजबूत रखें विद गुड एक्सरसाइज, वॉक करके, बीच बीच में आप काफ को मूव करें, फुट को मूव करते रहें, सो दैट कि आपका काफ रिलैक्स रहे मसल्स को। जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो वो उसमें लिखा रहता है प्लेन में भी कि पंजे को चलाते रहें, बीच बीच में पैर को उठाएं, ताकि आपका ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये एक्सरसाइज, ये मॉडिफिकेशंस आप अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में भी डाल सकते हैं, जो आपके वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकता है।
0: ओके जी जी, यानी अपना जो है फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को लिमिटेड ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है अगर हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो वेरिकोज वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं, बस हमारा तात्पर्य या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना ख्याल रखें और फिट रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब कुछ कमा सकते हैं, बस सेहत नहीं कमा सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक से जुड़ी हुई बातचीत पर। तब तक मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: Dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim.
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
2: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आपको लेकर जाती हूँ और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूँ, उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूँ जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की, मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुँचाती हूँ। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
2: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आपके पास समय है, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए ये खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ?

0: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं IFS ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और IB स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर टीचर्स, एंड MNCs में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो हैं और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रीहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूँगी। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फीस है, तो उस इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स। क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक। अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है और मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मैं हमेशा, आज की डेट में भी, मैं हमेशा हर महिला को ये बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एक ही टर्म पता है, आपको बाकी लीगल राइट्स अपने पता नहीं है, तो आप एक बार मेरे पास आए, कंसल्टेशन करें, और उसके दौरान मैं आपको आपके सारे लीगल राइट्स बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आप इस शादी में रहकर भी सेफ रह सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स ही डालना है, तलाक ही डालना है। तो जब उन लेडीज़ का रिस्पांस मुझे मिला और ये लगा कि हाँ, ये बहुत एक मददगार एक चीज़ हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस समय मैंने 2021 में ये रीत फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया। और रीत फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं। आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं। इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
1: जी।
0: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा, जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ, और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए। और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट। दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा। तो हमें रीथ फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है। और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीथ फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीथ फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में। और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
1: जी,
0: और बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके। और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीथ फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान। तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीथ फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितने भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है।
1: देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट मैं रीथ फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और शायद महिलाओं से। ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है। अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार। छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। Feel good, feel love.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीत फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीत फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। रितु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने 1 महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए हैं।
0: जी।
1: तो जहाँ 1 महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि 1 महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से, और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है। सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखना कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो 1 महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस, और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, सर्टेन रीजंस, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो, हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहां मरने के लिए नहीं भेजूंगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूंगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड, एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। ही वाज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे, उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ, और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहां पर भी हमारी रीत फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी 6-7 महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जस्ट आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहां पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सके।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीथ फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इतने साल बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है, ये सब ताने हैं। और बिसाइड्स दैट, शायद महिलाओं के परिवार को लेकर जो बातें कही जाती हैं या फिर वहां से आने वाले लोगों के बारे में जो कहा जाता है, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं घरों में। बट शायद पुरुषों को ये नहीं पता है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो रीथ फाउंडेशन इसमें कैसे मदद करती है?
1: सी, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, उसमें एक इतना अच्छा ये एक्ट आया था 2005 में, ये स्पेशल एक्ट आया था। और मैं हमेशा जितनी भी मेरी क्लाइंट्स, मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वांट योर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी ही मेरे वर्क प्लेस में ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहाँ पर मेरी इंसल्ट हो, जहाँ पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूँगी कहाँ, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस घर में फिर रह सकती हूँ, और मैं उनके ही अंगेंस्ट केस भी डाल दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब मैं उन्हें बताती हूँ कि सेक्शन 17 पढ़ो। तो जितने भी आपके लिसनर्स भी हैं उनको मैं प्लीज ये बोलूंगी, सेक्शन 17 डील्स विद शेयर हाउसहोल्ड. शेयर हाउसहोल्ड होता है जिसमें आप शादी करके आए हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आपके बच्चे उसी घर में हुए हैं, आप अपने जिंदगी बिता चुके हैं, तो आपको कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता. तो हम ये एक सबसे पहला जाकर एक इंटरिम रिलीफ लेते हैं कोर्ट से कि नॉट टू डिस्पोजेस हर फ्रॉम दिस हाउस. शी हैज फुल राइट टू स्टे इन दिस हाउस. वहाँ पर उसको पूरा हक है इस घर में रहने का, बिकॉज ये इसी घर में शादी करके आई है, इसके पास और कोई घर नहीं है, पति यहीं रहते हैं, तो इनको क्यों निकाला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठा ली. तो शेयर हाउस होल्ड के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें दिया है, कई बार कई महिलाओं के पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हैं, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वाइफ नौकरी कर रही हैं, या वाइफ नहीं भी कर रही हैं, तो वो एक रेंट दे रहे हैं. और अब कोई झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा हो गया है तो हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए हैं, और अब वो टेंशन में है कि अब बच्चों की फीस का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी अपना
0: जी.
1: तो सेक्शन 19 जो है वो डील करता है राइट टू रेजिडेंस से. राइट टू रेजिडेंस है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप ने कुछ छोड़ के चले भी गए हो तो भी रेंट आप ही दोगे. आप इस महिला को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप इनको घर से बाहर निकालने की सलाह कर लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो. तो सेक्शन 17 और 19 रेजिडेंस से डील करता है, 18 प्रोटेक्शन से डील करता है, 20 जो है वो मॉनेटरी रिलीफ से डील करता है, जैसे कि हर रोज दिन डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो वाले उनको बहुत टेंशन होती है कि मैम ये ग्रॉसरी का खर्चा नहीं देगा, मैम जैसे ही मैंने केस डाला तो ये बच्चों की फीस रोक देगा, पेट्रोल का खर्चा नहीं देगा, मैं कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देगा, तो मैं कैसे ये चीज़ें चलाऊंगी. तो वो हम सारा का सारा कोर्ट से सेक्शन 20 में मॉनिटरी रिलीफ ये लिख सकते हैं कि ही इज़ अर्निंग दिस मच और ये करता आ रहा है सारे ये खर्चे, पूरे परिवार का खर्चा ये चला रहे हैं. अगर महिला भी काम करती है तो डेफिनेटली कोर्ट वो भी कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं है कि महिला काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो कमा कर उनको देना ही देना है, तो कोर्ट बहुत अच्छे से दोनों का इनकम एंड एसेट एफिडेविट मंगवा कर और जितना उन्हें समझ आता है कंसिडर करके एंड देन दे डिसाइड दी मॉनिटरी रिलीफ. सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी से डील करता है
0: जी.
1: कोई भी माँ जो 5 साल से तो पहले उसे बच्चे से अलग किया ही नहीं जा सकता, और अगर वो अलग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि वो कस्टडी अपनी वो क्लेम कर सकती हैं उसमें. 23 बहुत स्ट्रॉन्ग है
0: जी.
1: जो लास्ट में आप बताना चाहूँगी, सेक्शन 23 घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, हर महिला को ये बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है केस डालने के टाइम पर कि मैम अगर मैंने ये केस डाला ये 2-3 साल चलेगा केस, ये लंबा चलता है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं कोर्ट नहीं आना चाहती, लोग बोलते हैं कोर्ट में आप धक्के खाते रहोगे, ऐसा होता है कि इतनी देर तक ऑर्डर्स ही नहीं आते. तो मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाती हूँ कि सेक्शन 23 जो है वो इंटरीम रिलीफ से डील करता है. तो इंटरीम रिलीफ होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जितनी भी देर केस चलेगा. तो हम जब जज साहब के पास जाते हैं या कोर्ट में हम केस डालते हैं तो हम यही बोलते हैं कि केस तो चलता रहेगा, तो उसके दौरान अभी इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटेक्शन की, वो है नॉट टू डिस्पोजेस की, मुझे घर से निकाला ना जाए, वो है मेरी मॉनिटरी रिलीफ की
0: जी.
1: मेरे बच्चों की फीस ना रोकी जाए, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना रोक दे, ये रेंट ना देना रोक दे, तो वो विद इन 6 मंथ्स कोर्ट आपको रिलीफ दे देती है. विद इन 6 मंथ्स होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये 8-9 मंथ्स तक स्ट्रेच होगा
0: जी.
1: डिपेंड करता है बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस पे भी. तो ये एक बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रावधान है जो मैं जब भी अपने रीथ फाउंडेशन के भी मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ सब महिलाओं को कि प्लीज़ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें, और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, इसकी जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं।
0: बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, बट उनके राइट्स क्या हैं ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीत फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएँ किसी भी प्रकार से, किसी भी कंडीशन में वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। ऋतु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, बहुत सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, तो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी, और अगर किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए तो कभी भी वो हमें फ्री
0: सुबह। अगर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डिवोर्स पर जाकर ही रुके। कई बार सिर्फ एक छोटी सी सलाह से भी आपका जीवन सुधर सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए आपके पास है रीत फाउंडेशन, जो ना सिर्फ आपको ये सारी सलाह देंगी लेकिन साथ के साथ आपके लिए मदद का हाथ भी बढ़ाने वाली है। सो भाई, रीत फाउंडेशन अलग अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है, डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है व्हाट्सएप पे। एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूँगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनका लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें, 5x9 81002। 1002। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ज़रूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, कि हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं, संभल कर डालिए, उसके प्रिवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए, क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज़ ना करे। सो अगर उसके मिसयूज़ से बचना चाहते हैं, तो आपके पास डिजिटल सहेली है। खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉर्फ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा सकती हैं और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबे सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लव इज़ नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, तो देन इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की असलियत सामने आने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्यार नहीं है। और उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएँ और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं। सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें, आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई, एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं बिंदास भावना, फिर से ले रही हूं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं को आपके पास लेकर आती हूँ, ऐसी महिलाओं की कहानी आपको सुनाती हूँ जो अपने आप में सशक्तिकरण का दूसरा नाम है। और अगर मैं बात करूं सशक्तिकरण की, तो ये एक ऐसी चीज है जो हर महिला के पास है, बस इस पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर पाती हैं। सो इसीलिए इस कार्यक्रम की जरूरत है और इसीलिए महिलाओं को समय समय पर ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि उन्हें सशक्त होना पड़ेगा, जिससे एक सशक्त समाज बन सके। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये मेरा बिल्कुल ऑनर है कि वो हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बात कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ वर्तिका द्विवेदी जी से। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मिटी

0: पीछे एग्जीबिशन की। एक बहुत ही जानी मानी पब्लिशर हैं, साथ के साथ टेडेक स्पीकर ये रही हैं, लेकिन सही मायने में एक सशक्त महिला हैं, एक डायनेमिक वुमेन हैं, और हम इनका स्वागत करना चाहेंगे रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे इन्वाइट करने के लिए। नो, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं वुमेन महिलाओं के लिए अपने लाइफ से कुछ पॉइंट्स निकाल के कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू।
0: वर्तिका जी, इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, और वी नाम से हम जब वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो इसका दूसरा तात्पर्य या इसका दूसरा मतलब ये भी होता है वी यानी वुमेन स्टैंडिंग टुगेदर एज वी, और अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ आ जाए तो वो दुनिया बदल सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक महिलाओं ने इस चीज को कम रियलाइज किया है। इस कार्यक्रम का एक पहला सवाल है जो मैं अक्सर हर महिला से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप कैसे परसीव करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को?
1: देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं एक वुमेन होने के नाते भी एंड साथ में वेड एशिया जो वुमेन इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन डिज़ाइनर्स जो है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चलाती हूँ द लास्ट 10 ईयर्स से, उसके नाते में ये बोलना चाहूँगी, आई ऑलवेज फील दैट वुमेन आर एक्चुअली एम्पावर्ड।
0: यस,
1: दे डू नॉट नीड एम्पावरमेंट एज सच, दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर एम्पावर्ड। उनका जो वो एम्पावर्ड है, उनका ये पहचान, उनको पता होना, मैं बोलूंगी ये है एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी।
0: मतलब देखिए वर्तिका जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब या उसकी डेफिनेशन जो है पैसा होती है। उन्हें लगता है यार मेरे पास पैसा होगा तो आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ। कुछ महिलाएं हैं जिनके पास अबंडेंस में पैसा है, लेकिन उस पैसे को यूज करने के लिए या उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए उनके पास परमिशन ही नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए ना कि मैं जो चाहती हूँ वो कर पाऊँ तो वो मेरे लिए सशक्तिकरण होगा। शायद कुछ महिलाएं जो कॉर्पोरेट्स में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर डेजिग्नेशन, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरुषों के पास है, ज़्यादातर पुरुषों के पास मिलती है, सो उनके लिए शायद वो एम्पावरमेंट होगा। हर किसी के लिए, हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये बड़ी पर्सनल और बड़ी अलग है। बट आई टोटली बिलीव कि हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट का डेस्टिनेशन है वो एक ही है, व्हेन शी हैज द राइट टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और उस राइट के साथ वो उसे कर पाए। इस बात से आई एम श्योर यू विल रेजोनेट।
1: एब्सोल्युटली भावना जी, एब्सोल्युटली।
0: So, दोस्तों, वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जारी रहने वाली है आपके साथ, और इस कॉन्वर्जेशन में फिलहाल मेरे साथ हैं वर्तिका द्विवेदी। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और उतने ही प्यारे से एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्तिका जी बैठी हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, एक पब्लिशर हैं, एक बहुत ही अकम्पलिश टेडेक्स स्पीकर भी हैं, लेकिन इनके जीवन की अपनी एक कहानी है। वर्तिका जी, आपने इस दुनिया में इतना नाम कमाया है, मतलब टुडे वेड एशिया इज अ नेम। और अगर देखा जाए तो आपके जो मेटेशिया एग्जीबिशंस हैं ये पूरे विश्व में फेमस हैं। बट ये जो जर्नी आपके लिए रही, दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी जर्नी। सो अगर मैं आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूं, सो आपने शुरुआत की ऐसी उम्र से जिस उम्र में शायद बच्चे अपने लिए सब्जेक्ट क्या चूज करना है उसका डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, वहां से आपने शुरू किया और आज आप यहाँ तक पहुंची। सो आपके इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगी लोगों को?
1: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सफ़र हम चुनते नहीं हैं, हमें मिलता है बहुत कुछ
0: जी।
1: लेकिन जो आपको मिलता है उससे आप क्या बनाते हैं वो आप बनते हैं। तो मैं जब 9 साल की थी, मेरी माता जी, मेरी मदर की डेथ अचानक से हो गई, मतलब इट वाज अ प्रेगनेंसी केस एंड भाई 7 दिन का था, मॉम वाज नॉट फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड
0: जी
1: बट इट हैपेंड। तो जब माँ का डेथ हुआ, पापा वॉज ऑल टोटली, मतलब उनका जो हालत था, जहाँ तक मुझे याद है कि पापा किसी से बात नहीं करते थे, वो बदल गए थे कम्प्लीटली, उनको कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियस है, सबका टेंशन इस तरफ था कि 5 बच्चे, मैं सबसे बड़ी हूँ और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें अपने पापा का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैं खेलने कूदने वाली लड़की अचानक से जैसे कि एक ही पल में बड़ी हो गई
0: जी।
1: और जब बड़े हो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता है तो उस बच्चे के साथ क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं।
0: वाकई
1: कुछ नहीं पता मुझे कि मैं क्या, किस तरह से मैंने उस वक्त को समझने की कोशिश किया, अपने आप से जूझते हुए, समाज से जूझते हुए, गिरते पड़ते, मैं जैसे लाइफ का सिचुएशन था वैसे ही मैं ढलती गई। एक पल ऐसे आया जब पापा का भी डेथ हुआ, और उससे पहले बल्कि मैं ये समझ गई थी कि या तो मेरा रहने का कोई मकसद नहीं है लाइफ में, और या तो बहुत बड़ा मकसद है, क्यों ना मैं बड़े मकसद की तरफ चुनूं। कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, कोशिश तो कर सकती हूं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती हूं अपने भाई बहनों को, और छोड़ के मिलेगा भी क्या अगर मैंने अपने लिए कुछ बना भी लिया। मैं बहुत पहले सोच चुकी थी, बहुत पहले समझ चुकी थी कि जिंदगी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। पैसे से आप क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जिंदगी से क्या बनाते हैं, जो चीज़ आपको मिला उससे आप क्या बनते हैं, राइट, वो मैटर करता है। तो मैं ये समझ गई थी कि मैं कुछ भी करूं अपने भाई बहनों से, अगर मैं अपने लिए सिर्फ देख लूं, आसान लगता है ना किसी को शॉर्टकट लेना, ईजी लगता है और संभव लगता है। मैंने कहा कि मैं संभव क्या है उस पर जाऊँ तो मैं कुछ भी मुझे लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मैं अगर कर पाऊँ उनके लिए, भले ही असंभव है, लोग मुझे पागल बोलते थे। जब मैं 17 साल की थी, मैंने सोचा कि मैं कहीं और चलती हूँ जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर, मेरी से जो छोटी सिस्टर है, मैंने उंगलियों को, 4 उंगलियों को उसके सामने रखा और मैंने कहा, देख ऐसा है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन कहाँ निकलना होगा अब चुनते हैं। शायद 2 मिनट में हमने डिसाइड किया था कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कहाँ जाना है। तो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उस टाइम के हिसाब से, कि मुंबई में हमने सुना था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, एक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। हमारे बच्चों जैसे जो दिमाग है उसमें जो समझ में आया, फिर हमने चेन्नई कहा, लैंग्वेज का इशू है, कलकत्ता हमने सुना था कि बहुत सारा यू नो इंडस्ट्रीज वहाँ पे उतना नहीं है, एंड दिल्ली, हाँ ये तो राजधानी है, सुन के ही लग रहा है कि कुछ होगा वहाँ पे, बढ़िया होगा शायद कुछ। तो उस सोच के साथ बहुत ही इनोसेंट सोच के साथ, क्योंकि ये पता था कि जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकते. प्लस लड़कियाँ थे तो लोगों को भी ये लगता था कि भाई लड़कियाँ हैं, इनके शादी करवाना है, इनका ये है वो है, इतने पैसे चाहिए होंगे. हमें उस सोच से बहुत बहुत दूर जाना था, और एक जन जाएंगे तो दूसरों को भी खींच के लाएंगे. वो थॉट था. थॉट वॉज वेरी वेरी क्लियर, बट क्या आगे मिलेगा उसको सोचने से बहुत घबराहट सी होती थी, क्योंकि रास्ता आगे का नहीं दिख रहा है, उतना दूर का कैसे सोचें. लेकिन कदम तो बढ़ाना है, डर तो नहीं है बिल्कुल भी. ये बात हम सारे भाई बहन समझ चुके थे, भले बहुत छोटे थे, भाई तो समझ ही सकते कितना छोटा था, तो ये बात समझ चुके थे हम कि हम एम्पावर्ड खुद अपने मन में पहले होते हैं, फिर हम एम्पावर्ड वाला काम करते हैं. बिना काम किए, बिना फियरलेस हुए, बिना आगे बढ़ाए कदम, कोई कुछ नहीं कर सकता. और कोई आके आपके लिए करके देगा, ये कभी सोचना नहीं चाहिए. भावना जी, आपने एक अपने कुछ बताया था पहले कि ये विमेन जिनको पैसा मिलता है फादर से, ब्रदर से, मान लीजिए किसी से भी,
0: यस यस,
1: मिलता है, क्या वो एम्पावर्ड होते हैं, फील करते हैं? आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल. क्यों? एम्पावर्ड होना फाइनेंशियल डिसीशंस नहीं आपको दिलाता है. आप क्या अप्रूवल ले रहे हो फॉर द मनी? इफ यू आर टेकिंग, अगर आप अप्रूवल ले रहे हो पैसे के लिए, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भले आपके पास पैसे हैं. ये मैं सोचती हूँ और ये मेरा कहानी है.
0: सच ए ब्यूटिफुल स्टोरी, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना वर्तिका जी की. आप इमेजिन करिए, छोटी सी लड़की 17 साल की उम्र में दिल्ली आती है, ये सोचकर कि चार भाई बहन है, सबसे छोटा भाई है जो बिल्कुल छोटा है, और यहाँ आकर इन्हें अपना बिजनेस खोलना है. 17 साल की उम्र में ये सोचकर आई थी, नागालैंड जैसी जगह से जहाँ लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं. छोटी उम्र में माता और पिता दोनों चले गए, घर नहीं था, और जो अलग अलग कहना चाहिए सिबलिंग्स हैं, क्योंकि चार छोटे भाई बहन थे, अब कोई कोई रिश्तेदार उन्हें पाल रहा था. बड़ी बहन को ये लगा कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं इन सारे भाई बहनों को अपने पास रख पाऊंगी और उन्हें वो जिंदगी दे पाऊंगी जो शायद माता पिता ने कभी सोची थी या प्रॉबेबली इन्होंने सोची थी. और सोचिए वो जिंदगी आज ये दे पा रही हैं, और ना सिर्फ उन्हें दे पा रही हैं लेकिन बहुत सारे घरों को दे पा रही हैं. वेड एशिया अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है. और आज वर्तिका नंदा जी, फिर से लूँगी, आज वर्तिका द्विवेदी जी अपने आप में एक नाम है. लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन औरों के लिए ये किस तरीके से एम्पावरमेंट फैला रही हैं उसके बारे में ज़रूर करेंगे बात. जुड़े रहिएगा रेडियो वन रचना 107.8 FM के साथ. वक्त एक छोटे से प्यारे स्कल म्यूजिकल ब्रेक का, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। उतने ही इंस्पायरिंग एपिसोड में आज हम वर्तिका जी के साथ बैठे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर है द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मेट एशिया एग्जीबिशन की, एक पब्लिशर है, नोटेड पब्लिशर है और साथ के साथ टेडेक्स स्पीकर भी हैं। पर मजेदार बात यह है कि एक महिला तो है ही, लेकिन इन्होंने जिंदगी को हार्ड तरीके से बहुत ही खूबसूरती से जीने का तरीका सीख लिया है और वही तरीका आज हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिचेस के साथ पैदा होना और उसके बाद कुछ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो इनिशियल पैसा ही नहीं है तो आप कमाएंगे कैसे? और आपके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। वर्तिका जी, अगर मैं बात करूं आपके आगे बढ़ने की और वेड एशिया की शुरुआत की, तो कैसे हुई है शुरुआत और यहाँ तक का सफर कैसे आपने पहुँचाया?
1: बहुत ही प्यारा सवाल है भावना जी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम जो सिस्टर्स हैं, चार सिस्टर्स, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये कर पाएंगे। तो मेरे आर्मी में कौन था? मेरी तीन बहनें और एक छोटा भाई
0: जी।
1: तो ये सिस्टर्स, अगर तीन सिस्टर्स जिनके पास कुछ नहीं है, ना घर है ना कुछ है, वो अगर ये कर सकते हैं तो सारे, अगर बहुत सारे सिस्टर्स एक साथ होंगे तो वो क्या कर सकते हैं?
0: इमेजिन।
1: वेड सिस्टर्स हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये सोच के कि वेमेन इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का कोई प्लेटफॉर्म पहले तो नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, जो ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है ना, बैक सीट में रह के कर रहे थे
0: जी,
1: दे वर नॉट इन द फ्रंट सीट। एंड प्लस क्या, जो काम कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन का रिकॉग्निशन नहीं दिख रहा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमने सोचा कि क्यों ना, जिस तरह से हम सिस्टर्स एक साथ आके कुछ किए, हम वेड सिस्टर्स बनते हैं और सबको लेके आते हैं उनको, और एक जगह जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे।
0: वाकई
1: दैट वाज द थॉट, और वहाँ से शुरुआत की। और क्योंकि मैं ऑलवेज एंटरप्रेन्योरियल थी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आपके पास अगर स्किल्स है, आप अगर उसको यूज़ नहीं करके मनी अगर नहीं बना पा रहे हो, तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ना अपने लाइफ में, ना अपने अपनों के लाइफ में, ना समाज के लाइफ में,
0: वाकई
1: कहीं पे भी नहीं कर सकते। सो अगर मैं उनको चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तो मुझे भी एग्जांपल बनना पड़ेगा, ताकि वो जब देखे, इफ़ आई एम वॉकिंग द टॉक देन दे विल ट्रस्ट। यू नो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड खुद से करना पड़ेगा, ताकि उनको हम एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म दें। So it was very important मेरे लिए from day one कि we have to be profitable, we have to be doing good, at the same time contribute करें। क्योंकि हम बहुत कुछ मन में सोच सकते हैं अच्छे, क्योंकि women का मैं एक myth जो होता है ना, वो मैं तोड़ना भी चाहती हूँ। वो सोचते हैं कि अगर पैसे के लिए कर रहे तो गलत कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: ये बात इतना गलत है, इतना गलत है। वो खुद अपने लाइफ में सफर जब करते हैं, जब परेशान होते, तब समझते कि नहीं, ये बात सच्चाई है कि हम अगर पैसे, स्किल बिल्ड कर रहे हैं, स्किल मैं समझती हूँ एक दरवाज़ा है पैसा बनाने के लिए। आप कुछ दे रहे किसी से, आप कोई फेवर नहीं कर रहे या फेवर ले नहीं रहे, ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे, उसके बदले में आप कुछ ले रहे, राइट?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे तब ले रहे, तो उसको वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, उससे आपके पास जो पैसा आता है उसको आप ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। आप अप्रूवल नहीं लेते फिर, क्योंकि आपका पैसा है।
0: बिल्कुल,
1: एंड आप अपनों के लिए, अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर सकते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: हैविंग सेड दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेमेन जो है इस बात को समझे कि स्किल्स ही दरवाज़ा है पैसे के लिए। अगर आपको जरूरत नहीं है स्किल्स की, आपके पास पैसा ऑलरेडी आ रहा है, फिर भी आपको स्किल्स सीखना चाहिए। मैं ये बोलूंगी, क्यों सीखना चाहिए? इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप हमेशा अप्रूवल लेते रहोगे, अप्रूवल हमेशा आपको मिलेगा नहीं, आपकी चॉइस की चीज़ें आपको करने को नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, जो अप्रूवल देता है वही डिसीशन मेकर कहलाता है,
0: वो अथॉरिटी में होता है।
1: यस, तो आप देखिए आप क्या बनना चाहते हैं।
0: एक्चुअली सो आई ऑलवेज बिलीव वीमेन आर इक्वल जेंडर, और हमें ना कहीं भी इन्फीरियर तो सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में कि ओ हम तो सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कोई भी ऐसा ग्रंथ या फिर आप किताब दिखा दीजिए जो कि रिलीजियस हो या फिर किसी भी तरीके की हो, जहाँ ये लिखा हो कि महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ख्याल रखना है। यू आर एन इक्वल जेंडर, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको भी एज ह्यूमन बींग उतना ही राइट है कि आप अपने जीवन को खुशी से जी सकें। सो इसके लिए प्रायोरिटाइज ज़रूर करिए अपने आप को एंड खुश रहने की कोशिश करिए। और खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाइए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम वर्तिका द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेद एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, और एक पब्लिशर भी हैं, एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं, और एक एम्पावर्ड महिला हैं, यानी एक सशक्त महिला है। वो महिला जिसने न सिर्फ अपने परिवार की बागडोर संभाली, लेकिन वो महिला जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए वेद एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पर हर महिला आ सकती है और ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा सा जीवन चुन सकती है, लेकिन अपने लिए एक अच्छा करियर और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस भी चुन सकती है। अब बात करते हैं वर्तिका जी चैलेंजेस की। सुनने में ये कहानी बहुत आसान लग रही है। आप बता रहे हैं 17 साल की उम्र में कुछ सपने लेकर आ पाई, और ऐसी बॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्में भी लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तब समझ में आता है जीवन कितना मुश्किल है। आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम जहां आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं मारी होंगी जिससे कि आप ना सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, लेकिन शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकें। और धीरे धीरे धीरे आज जीवन के आप उस स्तर पर हैं जहाँ यू हैव चोजन बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन, यू हैव चोजन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर योर सिबलिंग्स। और आज आप ये कह सकती हैं ना, पलट कर जब आप देखती हैं अपनी ज़िंदगी के इतने सारे सालों को, सो आप ये कह सकती हैं कि हाँ, मैंने इन चैलेंजेस को बीट किया है। सो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े?
1: देखिए, शुरुआती दौर की बात करें तो चैलेंजेस ही थे।
0: हाँ, वाकई
1: सिर्फ चैलेंजेस थे। ये कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त हो, कि मैं सोचूं कि मैं कुछ भी हूँ, एग्जिस्ट भी कर रही हूँ। इतने चैलेंजेस थे भावना जी कि
0: कभी कभी रोबोट वाली फीलिंग आती होगी आपको।
1: रोबोट वाली फीलिंग क्या बताऊँ मैं आपको, रोबोट मुझे बनना पड़ा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को नहीं दबाएंगे तो इमोशंस आपको मार देते हैं।
0: वाकई?
1: ओके, तो मैंने अपना ऐसे वक्त बिताया जब मैंने अपने इमोशंस को बोलती थी कि आप 2 साल बाद आना नॉक करना, मेरे को आपका सोचने का वक्त नहीं है।
0: वाकई
1: ऐसे होता था, और ऐसे वक्त एक बार नहीं, हजारों बार हुआ। बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं कर सकती हूँ, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। लेकिन जब बच्चों को देखती थी, उनको देखती थी, और इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था, वो जब देखती थी तो पता नहीं मुझे कहाँ से मुझे इतना स्ट्रेंथ होता था, इतना ज़्यादा मैं पॉसिबल समझने लगी, क्योंकि इट वॉज़ वर्थ ट्राइंग।
0: वाकई
1: ऐसे था। अब भावना जी, मैं अपने चैलेंजेस को चुनती हूँ। देखिए, भगवान को जो देना होता है वो तो देते हैं,
0: वाकई
1: हमारे पास चॉइस नहीं होता, लेकिन मैं चैलेंजेस चुनती हूँ। अब मैं एक, मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस से नहीं, पार करने में, आगे बढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कंपनीज स्केल अप करने में मज़ा आता है, मुझे वेल्थ बिल्डिंग में मज़ा आता है, मुझे डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजंस सही हो गलत हो हमें किसी को कभी पता नहीं होता। ये डर जो वुमेन को होता है, वुमेन क्यों मैं बोलूँगी, ह्यूमन बींग्स को होता है, एक लिविंग बींग को जो होता है डर कि अगर मैं ये कदम उठाऊँ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, थोड़ा बहुत नमक की तरह तो फियर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि वो आपके जो आपका जो फूड है, आपका जो खाना है, उसको स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं
0: जी।
1: फियर को एक पॉइंट के बाद साइड में रखना चाहिए। इमोशंस अगर आपके रास्ते में आ रहा है और आपको कुछ करना है तो थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहा दे, स्लिपरी ग्राउंड बना दे
0: जी।
1: राइट, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
0: वाकई
1: मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी उस वक्त एज अ साइंस स्टूडेंट। हमेशा ही मुझे साइंस एंड रिसर्च एंड उसमें बहुत इंटरेस्ट था। आई वाज वेरी वेरी गुड इन लैंग्वेजेस ऑल्सो एज अ स्कूल गोइंग किड, बट मुझे एजुकेशन आफ्टर सर्टेन पॉइंट बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन तक कम्प्लीट किया था। बट द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट ए चांस टू कम्प्लीट माई एजुकेशन, आई वेंट टू IIM कलकत्ता।
0: यस,
1: एंड आई डिड दैट, एंड इट वॉज सो really empowering. Not because I went there. It was because मैं already इतना कुछ करके गई थी कि जब मैंने जाके देखा और मुझे ये फील हुआ, अरे वर्तिका तुम तो ऑलरेडी ये सब जानती हो एंड तुम बहुत बहुत मतलब अपने प्रैक्टिकल गलतियाँ करके सीखी हो, तो मुझे एक अश्योरेंस मिला कि यस आई एम गोइंग द राइट वे, अब देयर इज नो स्टॉपिंग.
0: तो वर्तिका जी आपको ना जिंदगी ने इतना सिखा दिया था कि आई एम श्योर आई एम कोलकाता भी आपको सिखाने के लिए शायद छोटा पड़ गया था, बट जिस दिन आपने कैंपस में कदम रखा इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद, और कितने सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उनके पास उनकी डिग्री पर आईआईएम कोलकाता का नाम हो, सो आपको जब ये मौका मिला तो हाउ वाज द फीलिंग?
1: देखिए जो कैंपस का टाइम है मैंने एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह बिताया.
0: हाउ स्वीट.
1: मैंने डांस किया वहाँ पे.
0: वाओ.
1: जुबी जुबी पे, आप सोचिए.
0: इमेजिन.
1: मेरा जो पार्टनर था वाज अ फेलो स्टूडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया. हम लोग मिले थे अभी बस, और हमारे सारे प्लान मतलब मैंने सोचा कि अदर देन स्टडीज मुझे वो कॉलेज लाइफ जो मैंने मिस किया,
0: yes.
1: मुझे वो जी लेना है.
0: सो स्वीट.
1: अब मैं देखिए कई बार अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मिस किया उसको आप जितना अभी जी सकते जी लीजिए, क्योंकि आई एम ए वेरी बिग बिलीवर ऑफ हैविंग अ हैप्पी माइंड,
0: यस,
1: फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. ओके, हैप्पीनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड हैप्पीनेस कैनॉट बी यू नो कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज डन, और हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम दिस मोमेंट नाउ.
0: यस,
1: अगर आप इस वक्त में हैप्पी है, कंटेंटेड है, ओके, एंड यू आर इन योर सेंटर्ड, आप अपने मन के चित्त के सेंटर में स्थित है आपका यू नो फीलिंग, देन यू आर इन इट. सो दैट्स इट.
0: हाउ स्वीट. मतलब इससे बड़ा कोई मुझे लगता है मैसेज नहीं हो सकता. इनकी जिंदगी अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग और इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या कहने. इमेजिन करिए ना कि एक ऐसी लड़की जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके या स्कूल के बाद वो कैंपस में जा सके, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाना था और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी थी जो रिस्पेक्टेबल लाइफ हो, जो आज बैठकर ये स्टूडियो में या फिर कहना चाहिए पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी टेडएक्स में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करती हैं. और इमेजिन करिए जब इन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने ये मौका नहीं चूज किया, मतलब लूज किया, इन्होंने उस मौके को पकड़ के रखा और वहाँ जाकर इन्होंने ना सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय की, लेकिन कहते हैं ना जिस इंसान से आप जितना छीनते हैं ना तो मिलता जब उसे है सो उसे अबंडेंस में मिलता है. इन्हें मौका भी कहाँ मिला, आई एम कोलकाता. मतलब शी डिड नॉट चूज कि कोई भी नॉर्मल कैंपस वो चूज करें, शी चूज द बेस्ट. और यही जिंदगी का सफर है. अगर आप ठान लें कि भगवान आपको हार्डशिप्स दे रहे हैं तो उसे हार मत मानिए, उसको बीट करके आगे बढ़िए एंड देन यू सी शायद आप भी एक दिन मेरे साथ बैठकर अपने जिंदगी के खूबसूरत पलों को डिस्क्राइब कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्तिका जी कर रही हैं. सो हर महिला के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कहानी। और आज उतनी ही प्यारी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग वर्तिका द्विवेदी जी हमारे साथ बैठी हैं। इनफैक्ट इनसे बात कर रही हूं और इनकी जिंदगी की जब कहानी के बारे में मैंने सुना, आई वॉज सो वेरी इंस्पायर्ड। क्योंकि देखिए, जब हार्डशिप्स मिलती है ना, तो इंसान दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, या तो टूट जाता है या बन जाता है। इन्होंने जैसे ही हार्डशिप्स देखी तो इन्होंने ठान लिया था, मतलब बचपन से जिन चीज़ों को आज साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि जर्नलिंग करिए, ये अपने सपनों को लिखती थी। एंड इमेजिन करिए, शी हैड ऑल हर ड्रीम्स एंड टुडे यू नो शी इज सिटिंग इन द स्टूडियो एंड डेफिनेटली शी कैन से कि इन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि आप एक ऐसा जीवन जी पाएं जहां आपने अपनी चॉइसेस को खुद रखा। वर्तिका जी, मैं महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम करती हूँ, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि महिलाएं इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये जो वर्ड है ना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मुझे ऐसा लगता है ये इनबिल्ट चिप के साथ हमारे साथ आ जाता है और हर महिला को ये सिखाया जाता है, एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इट्स ओके, जो भी मिला है उसी में मान लीजिए। दे नेवर चेज फॉर द बेस्ट, क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तो एक अथक एग्जाम्पल है, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेज द बेस्ट एंड लिव द बेस्ट।
1: देखिए, कई बार ये सोचते हैं लोग कि महिलाएं जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही वो अपना नर्चरिंग वाले जो कैरेक्टर है जो वो बेस्ट कर सकती है
0: जी।
1: मैंने एक महिला होते हुए, एक माँ हूँ मैं और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप विमेन हैं एंड आपका एक नर्चरिंग का क्वालिटी इंट्रिंसिक है, मतलब वो आपसे कोई छीन नहीं सकता
0: जी,
1: है ना। और अगर एक एम्पावर्ड वुमेन होंगे तो आप अपने परिवार में ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये परिवार वालों के लिए भी मेरा मैसेज है कि देखिए, एक एम्पावर्ड वुमेन ही एम्पावर ज़्यादा कर सकती है आपके पूरे परिवार को। आप मतलब अगर मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ये मैसेज दूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बहू जो आती है, जो एम्पावर्ड बहू होती है, वो आपके बेटे को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन को, सबके लिए ज़्यादा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, वो डिसीजंस ले सकती है ऑन देयर बिहाफ। एंड एक माँ, एक वाइफ कभी किसी के खराब के लिए तो डिसीजंस लेगी नहीं, लेकिन अगर वो जानती है तो आपके लिए भी वो स्ट्रेंथ बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और ये यही सच्चाई है, यही मैंने अपने लाइफ में देखा है। एंड मैं बिलीव करती हूँ दैट इट इज़ टाइम कि वुमेन ये बात समझे, और जब उनको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो ये इसको लॉजिकली देखिए, कौन सी चीज़ में एडजस्ट करना है, क्या वो एडजस्टमेंट फैमिली के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। अगर है एंड वो एडजस्टमेंट शायद मेन हो, वेमेन हो, सब लोग हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली के लिए अच्छा होता है, लेकिन एडजस्टमेंट इन द नेम ऑफ यू नो डिपेंडेंसी इज नॉट एम्पावरमेंट एट ऑल। और एम्पावरमेंट जब वेमेन का नहीं होता तो परिवार का भी नहीं होता। और परिवार को अगर आगे बढ़ना है, सबको स्ट्रेंथ एक साथ होके अच्छा करना है, देन वेमेन का एम्पावर्ड होना, अवेयर होना, फाइनेंशियली लिटरेट भी होना एंड स्किल बिल्ड हो, कि एवरी वेमेन शुड हैव वन और टू स्किल्स जिससे वो कभी भी परिवार को ज़रूरत होता है, कुछ भी है, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना पैसा खुद कमा रही है, खुद ग्रो कर रही है, खुद डिसीजंस ले पा रही है।
0: वाकई
1: ठीक है, ये सबके भले के लिए है भावना जी।
0: भाई वाकई मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ना कई बार आप जिंदगी में देखेंगे कि हम ना एक डिपेंडेंट जिंदगी जीते हैं, उसके पीछे कारण है, हमें सॉफ्टर जेंडर कहा जाता है, हमें वीकर जेंडर कहा जाता है, और ये कहकर हमें या तो चार दीवारियों में पैक कर दिया जाता है कि भाई बाहर निकल के क्या करोगे, जमाना बहुत खराब है, वाई शुड यू गो आउट, हम कमा कर दे रहे हैं ना, डोंट वरी, तुम घर पर बैठी रहो। सो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इनफैक्ट जब शादी होती है ना, सो हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो ढेर सारा पैसा कमाता हो, इररिस्पेक्टिव कि वो उसकी इज्जत कर रहा है या नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि हम फिनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, व्हाई डोंट यू गिव योर चाइल्ड, योर डॉटर द फिनेंशियल लिटरेसी? सिक्योरिटी देखने की जरूरत ही नहीं, वो अपने लिए खुद कमाएगी एंड शी विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ एंड रादर शी विल हैव अ डिग्निफाइड हैप्पी लाइफ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी फेमिन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है आज का एपिसोड एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी कहानी है, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है वर्तिका द्विवेदी जी की, क्या कहने। बट हमने इनके जिंदगी के बहुत सारे पन्ने पलटे हैं, हर पन्ने पर एक स्ट्रगल और हर पन्ने पर एक सीख, और इस सीख से ही आप जीवन में बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हार्डशिप्स

0: लाइफ में अगर कोई मकसद हो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारे रोल्स एज ए वुमेन मिलते हैं, नर्चरिंग रोल्स, पेरेंट्स ग्रो यू नो ओल्ड हो रहे, उनको देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड के लिए करना, परिवार वालों के लिए करना, ये सारी चीज़ें वुमेन में इनबिल्ट है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा एक मकसद है जो आपको कितना भी आप मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन आपको लगता है कि यस दिस इज़ समथिंग जो मुझे हैप्पीनेस देता है एंड मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, वो मकसद आपके लाइफ में है क्या? वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मकसद आपको सारे कठिनाइयाँ जितने भी कुछ है उस सब कुछ से पार करा के ले जाएगा। वो मकसद आपको अपने से बड़ा होना चाहिए, समथिंग दैट रियली मैटर्स टू यू। लेकिन साथ साथ में डोंट फॉरगेट टू कीप बिल्डिंग स्किल, अप स्किल करना अपने आप को, सीखते रहना एंड आगे अच्छे से सबके साथ बढ़ते रहना।
1: बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, एंड डेफिनेटली वर्तिका जी की लाइफ अपने आप में एक पूरी इंस्पिरेशन की एनसाइक्लोपीडिया है। सो जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों से टूट जाते हैं, वहाँ पर न सिर्फ ये बन गई लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वो सशक्त करती हुई आज एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
0: मुझे बहुत खुशी है भावना जी, थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और एक प्यारे से गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी मुलाकात। टिल देन कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप? और मुझे आप बताइए कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुनते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? और नंबर हमारा 8010781078, अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इंजॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनी रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ। और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उन्हें खुशियां कैसे लेकर के आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने समझने काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फ़र्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं और आपका सपोर्ट मैसेज के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कोलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा, मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। और यकीन मानिए पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है इसकी आदत आप बनाइए। देखिए लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा

लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी सी देर में। इंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं, बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पर इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके जरे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है, आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

तो वापस भी आ गए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि कहां तक गए थे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मामला, कई दफा ऐसा हो जाता है, गुस्से में चला जाता हूं, रेल की पटरी पास ही है, बस वहां तक पहुंचा कि सब ठीक हो जाता है, फिर वापस लौट आता हूं। जीने का हिस्सा है। ऐसे हम अपने को धोखा दे लेते कि चलो मरे जाते, अब तो बात खत्म हुई, मरने के ख्याल से ही जीवन का बोझ क्षण भर को नीचे उतर गया, फिर उठा के रख लेंगे सिर पर, कहीं कोई इतने जल्दी मरा जाता है। तुमसे मैं कहता हूं, जो मर भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी कर लेते हैं मर जाते हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो पछताते मिलेंगे, वो कहेंगे जरा जल्दी कर दी, क्षण भर और ठहर जाते। कुछ लोग तेजी में गुजर जाते, जल्दी कर लेते, क्षण भर में घट जाए तो घट जाए, जरा विलंब हो जाए तो तुम वापस लौट आओगे। ये मन का ढंग है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार, दिशा दिवा निसी की सीमा पर बैठ, निकालूं भी तो क्या परिणाम, व्यस्तता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम, सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद नहीं है, लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई इसलिए सांझ रोती हुई मालूम होती है, सुबह मुस्कुराती आती है वही मुस्कुराहट सांझ

न क्रोध रह जाए न अक्रोध रह जाए, सारे द्वंद्व खो जाएं, तो तुम उतर आए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई जरूरत ही नहीं, अब गिरने का कोई खतरा ही नहीं है। संभालेगा कोई क्यों? संभालते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नर्क जब तुम दोनों से नीचे उतर आए, तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नर्क के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पे चल रहा संसार। साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती है वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वा बहने। सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु ये बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु मुझसे नाराज। साधना वासना जुड़वा बहने, उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। वे साथ ही साथ पैदा हुई हैं और साथ ही साथ मर जाती। साधना की जरूरत को कोई बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना, कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेके शोभा यात्रा मत निकाल देना, वो केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज रोज आता है, इससे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। एक अत्यंत हिंदू बुद्धि के व्यक्ति मुझे मिलने आ रहे थे, कहने लगे भारत भूमि बड़ी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कारण? कहने लगे देखो, हिंदुओं के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्धों के 24 बुद्ध सभी यहाँ हुए। मैंने कहा ये तो दुर्भाग्य मालूम होता है, इतने तीर्थंकर, इतने अवतार, इतने बुद्ध पैदा होते, इतने चिकित्सक आते, बीमार की हालत बड़ी बुरी। साफ है कि बड़ा दुर्भाग्य होगा, इतने बार चिकित्सक आते और चिकित्सकों की जरूरत बनी ही रहती, इसे तुम सौभाग्य का मुकुट मत समझो। वो थोड़े चौंके, उन्हें कभी इसका विचार भी ना आया होगा। वो कहने लगे कि बात में तो थोड़ा अर्थ मालूम होता है, अगर देश सच में ही धार्मिक हो तो अवतारों की क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा अपनी गीता ही उलट कर देखो, कृष्ण कहते हैं जब अंधेरा होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और साधु पीड़ित किए जाएंगे, तब मैं आऊंगा। साफ है कि कृष्ण वही आएंगे जहां अधर्म होगा, और अगर यहां आए तो अधर्म होना चाहिए। इसको तुम धार्मिक देश मत कहना, और मुल्कों में नहीं आए, जरूर हमसे बेहतर हालत में होंगे। चिकित्सक की जरूरत रोगी को है, अवतार की जरूरत अधार्मिक को है। दिए की जरूरत अंधेरे में, सुबह होते ही हम दिया बुझा देते हैं, क्या जरूरत। इसलिए तो दिवाली हम अमावस की रात में मनाते हैं, जब गहन अंधकार होता है तो दियों के अवतार पंक्तिबद्ध फैला देते। सबसे अंधेरी रात वर्ष की जो है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा दिए जलाते। दिन में कोई दिवाली मनाएगा उसे हम पागल कहेंगे। अगर मैं ध्यान करूं तो मैं पागल हूं, अगर तुम ध्यान ना करो तो पागल हो। मुझसे लोग आ जाते हैं पूछने का, आप ध्यान कब करते? मैंने कहा मैं कोई पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहते तो फिर हमें क्यों समझाते? तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम ना करोगे तो तुम पागल हो। बात सीधी है, उल्टी लगती है, जरा भी उल्टी नहीं। पहुंच गए, मंजिल समाप्त हुई, चलना क्या है? पा लिया, खोज बंद हुई, खोजना क्या है? साधना का उपयोग करना, यही उस शब्द का मतलब है। साधना का अर्थ साधन, साध्य नहीं। जब तुम सिद्ध हो जाओगे, साध्य मिल जाएगा, साधना भी छूट जाएगी। इसे याद रखना, मोह मत बनाना साधना से। रामकृष्ण ने बहुत दिनों तक भक्ति की साधना की, भक्ति की साधना तो की, लेकिन मन में कहीं एक पीड़ा खलती रही, और वो पीड़ा ये थी कि अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं, महिमामयी मां की मूर्ति खड़ी हो जाती, लेकिन एकांत, परम एकांत जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा तो मौजूद रहता ही, परमात्मा सही, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही है। और जहां तक दो है वहां तक संसार है, जहां तक

है, मैं हूं, तू है, वहां तक संसार है। तो रामकृष्ण बड़े पीड़ित थे। फिर उन्हें एक सन्यासी मिल गया, अद्वैत का साधक सिद्ध, तोतापुरी उस सन्यासी का नाम था। रामकृष्ण ने पूछा, मैं क्या करूं, अब कैसे मैं इस द्वंद के पार जाऊं। तोतापुरी ने कहा, बहुत कठिन नहीं, एक तलवार उठा के मां के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण तो कब गए, रोने लगे, मां के और टुकड़े और ये आदमी कैसी बात कर रहा है, धार्मिक हो गए। परम धर्म इसी भाषा में बोलता है, परम धर्म तलवार की भाषा में बोलता है। जीसस ने कहा, मैं तलवार लाया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, तोड़ दूंगा सब, टूटने पर ही तो शांति होगी। तोतापुरी ने कहा, इसमें आसन क्या है। रामकृष्ण ने कहा, तलवार कहां से लाऊं वहां। तोतापुरी हंसने लगा, उसने कहा, जब मां को ले आए कहां से लाए, कल्पना का ही जाल है, बड़ी मधुर है कल्पना, बड़ी प्रीतिकर, पर तुमने ही सोचा, माना, रिझाया, बुलाया, आह्वान किया, कल्पना को सजाया हजार हजार रंगों में, वही कल्पना आज साकार हो गई। तुमने ही उसमें प्राण डाले, तुमने ही अपनी ज्योति उसमें डाली, तुमने ही उसे ईंधन दिया, अब ऐसे ही एक तलवार भी बना लो, काट दो। रामकृष्ण आंख बंद करते कब जाते, जैसे ही मां सामने खड़ी होती, हिम्मत ही न उठती तलवार, और मां परमात्मा को कोई काटता तलवार से, आंख खोल देते घबरा के कि नहीं ये ना हो सकेगा। तो तोतापुरी ने कहा, ना हो सकेगा तो बात ही छोड़ दो, फिर केवल लिखी, मैं चला, मेरे पास समय खराब करने को नहीं, करना हो तो ये आखिरी मौका है, और ये बचकानी आदत छोड़ो। ये क्या मचा रखा है, रोना, आंसू बहाना, उठा के एक तलवार हिम्मत से दो टुकड़े तो कर। रामकृष्ण ने कहा, मेरी कुछ सहायता करो, लगती है बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बड़े भाव से सजाया है, बड़े भाव से ये मंदिर बनाया है, जीवन भर इसी में गंवाया है, कि मुझसे होता नहीं। तोतापुरी ने कहा, तो फिर मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई कांच का टुकड़ा उठा लाया और उसने कहा कि जब तेरे भीतर मां की प्रतिमा बनेगी तो मैं तेरे माथे पर कांच से काट दूंगा, जब मैं काटूंगा तुझे पीड़ा हो, खून की धार बहने लगे, तब तू भी एक हिम्मत करके भीतर भी मां को उठा के तलवार काट देना, बस फिर मैं ना रुकूंगा, करना हो कर ले। अब ये जाने लगा तो बेचारे रामकृष्ण को करना पड़ा। इस आदमी ने उठा तो उनके माथे पर कांच के टुकड़े से लकीर काट दी, खून बहने लगा। जैसे उसने लकीर काटी, रामकृष्ण भी हिम्मत की और तलवार उठा के भीतर कल्पना को खंडित कर दिया। कल्पना के खंडित होते कैवल्य उपलब्ध हो गया, लेकिन बड़ी अड़चन हुई, बड़े दिन लगे। साधन से भी आदमी की आसक्ति बन जाती, तुम अगर प्रतिमा बना लेते हो मन में तो उससे छोड़ना मुश्किल हो जाए, तुमने अगर ध्यान किया ध्यान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना की प्रार्थना छोड़नी मुश्किल हो जाएगी, और ध्यान रखना छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये उपचार थे, इन्हें किसी कारण से पकड़ा था, इनके पकड़ने की शर्त ही खो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई नया मकान बनाता है तो एक ढांचा खड़ा करता है, ढांचे के सहारे मकान बना लेता है, फिर मकान बन जाता है तो ढांचे को गिरा देता है। अब तुम्हारा कहीं ढांचे से मोह हो जाए और तुम ढांचे को न गिराओ तो तुम्हारा भवन रहने योग्य न हो पाएगा, ढांचा रहने न देगा। जब भवन बन गया तो ढांचा गिरा देना, जब सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी छोड़ देनी। इसलिए पहले से ही अगर ध्यान रहे इस बात का कि साधना को उपयोग तो कर लेना है लेकिन साधना के हाथ में मालिकियत नहीं दे देनी, तो शुभ होता है। दूसरा प्रश्न, संसार को बाजार को छोड़कर अपने को पालो, यह आपने कहा, कृपया बताएं कि प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, और क्या प्रेम का क्षेत्र भीतर और बाहर दोनों तरफ नहीं, समझना पड़े। काम तो बिल्कुल बाहर है, कामना बाहर की तरफ भागती हुई ऊर्जा का नाम है,
जिसे भीतर की याद भी नहीं रही, जिसे याद भी नहीं रही कि भीतर जैसा भी कुछ है। कामना बाहर जाती हुई बहिर्मुखी ऊर्जा है, साधना प्रार्थना भक्ति कोई नाम दो, भीतर जाती ऊर्जा है जिसे याद भी ना रहा कि बाहर है, जिसे ख्याल भी ना रहा कि बाहर जैसी भी कोई चीज है। कामना बाहर, प्रार्थना भीतर, दोनों अतिये, प्रेम दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, जैसे कोई अपनी दहली पे खड़ा हो, न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छिटक गया हो, जैसे कोई दोनों तरफ देख रहा हो, बीच में खड़ा हो। प्रेम मध्य बिंदु है प्रार्थना और कामना के बीच में। काम हार गया है, प्रार्थना अभी पैदा नहीं हुई। कामना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी है, सार्थक का अभी उदय नहीं हुआ, यात्रा जैसे थम गई। प्रेम एक ठिठकी अवस्था है, बाहर जाने जैसा नहीं लगता। हार गए वहां, राख ही राख पाई, मुंह का स्वाद सिर्फ बिगड़ा और कुछ भी ना हुआ, और भीतर का अभी कुछ पता नहीं। एक बात पक्की हो गई, बाहर व्यर्थ हो गया और भीतर के द्वार अभी खुले नहीं। बीच में ठिटक के खड़ा हो गई जो ऊर्जा है, वही प्रेम है। अगर तुमने जल्दी ना की प्रेम को प्रार्थना बनाने की, तो फिर कामना बन जाएगा। प्रेम के क्षण जब भी आए तो दो ही संभावनाएं, ऊर्जा ज्यादा देर तक ठिटकी ना रहेगी, क्योंकि ठिटका होना इस जगत की व्यवस्था नहीं, कोई ऊर्जा ठहरी नहीं रह सकती, या तो जाएगी बाहर या जाएगी भीतर, जाना पड़ेगा। ऊर्जा यानी गति, गत्यात्मकता, तो एक क्षण को ठहर सकती है, उस ठहरे क्षण का उपयोग कर लो तो प्रेम भक्ति बन जाती है, प्रार्थना बन जाता है। अगर उपयोग न करो तो प्रेम प्रेम फिर कामना बन जाता है, फिर वासना बन जाता है। इसलिए प्रेमी की बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा यही है कि बहुत बार ठिटक आ जाती है और फिर ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग कर लेते हैं, उनके भीतर प्रार्थना का उदय हो जाता है। अब इसे ख्याल लेना, काम अर्थात बाहर, प्रार्थना अर्थात भीतर, प्रेम यानी दोनों के मध्य में, और चौथी अवस्था है दोनों के पार। चौथी अवस्था यानी परमात्मा। इसलिए जीसस ने कहा है कि प्रेम जैसा है परमात्मा। ऐसा नहीं कहा कि ठीक प्रेम ही बस परमात्मा है, नहीं तो परमात्मा की बात की भी उठाने की जरूरत न रहे। प्रेम जैसा है एक स्वभाव, एक समानता प्रेम और परमात्मा में है। प्रेम दोनों के मध्य में है, परमात्मा दोनों के पार है। प्रेम बाहर और भीतर के बीच में है, परमात्मा बाहर और भीतर के ऊपर है। इस जीवन के हमारे जितने अनुभव हैं, उनमें प्रेम सर्वाधिक सूचक है परमात्मा दशा का। प्रेम ठिटकता है, परमात्मा ठहरा हुआ है। प्रेम क्षण भर को परमात्मा बनता है, परमात्मा सदा को प्रेम है। प्रेम दो दौड़ों के बीच में एक थोड़ा सा पड़ाव है, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा विश्राम, विराम चिन्ह। परमात्मा पूर्ण विराम है दोनों के पार। परमात्मा की अवस्था में ना तो कुछ बाहर है, फिर ना कुछ भीतर है। बाहर और भीतर दोनों परमात्मा में। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा के भीतर कुछ है कहने का कोई अर्थ नहीं। परमात्मा ही है, बस परमात्मा है,
बाहर भीतर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाहर कुछ नहीं है तो भीतर कैसे कुछ होगा, ये द्वंद गिर जाता है। प्रेम में भी ये द्वंद क्षण भर को ठहरता है, इसलिए प्रेम में थोड़ी सी झलक परमात्मा की है। बस इस जगत में परमात्मा की झलक देने वाली घड़ी प्रेम की घड़ी है। इसलिए तुम चकित होगे अगर मैं ये कहूं कि प्रार्थना भी परमात्मा के उतने निकट नहीं है जितना प्रेम, क्योंकि प्रार्थना फिर एक अति हो गई, बाहर से छूटे तो भीतर को पकड़ लिया, बाहर से भागे तो भीतर को पकड़ लिया। जरूरी है, भीतर को पकड़ना पड़ेगा बाहर से भागने के लिए, एक अति से बचने के लिए दूसरी अति पकड़नी पड़ेगी, और अभी दोनों के बीच में तुम ठहर ना सकोगे। दोनों के बीच में ठहरने का तो उपाय दोनों के पार हो जाना है, लेकिन जब तुम पार हो जाओगे तब तुम पाओगे अरे प्रेम का जो क्षण भर के लिए विराम आया था परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत होकर, सनातन होकर। प्रेम में जिसकी बूंद मिली थी परमात्मा उसी का सागर है। वासना में भी तुम हो, प्रार्थना में भी तुम हो। वासना में दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है, प्रार्थना में दृष्टि भीतर की तरफ जा रही। प्रेम के क्षण में तुम नहीं होते, पर क्षण बड़ा छोटा है, शायद तुम पकड़ भी ना पाओ, इतना छोटा है, आणविक है, तुम्हारी पकड़ से भी चूक जा सकता है। तो या तो तुम वासना को प्रेम कहते रहते हो, कामना को प्रेम कहते रहते हो जो प्रेम नहीं, या फिर अगर बदले तो प्रार्थना को भक्ति को प्रेम कहने लगते हो, लेकिन प्रेम दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा विराम है। ऐसा ही समझो एक श्वास भीतर जाती फिर श्वास बाहर आती। तुमने ख्याल किया भीतर जाने और बाहर आने के बीच में क्षण भर को श्वास कहीं भी नहीं जाती, पर क्षण बड़ा छोटा है, ख्याल करना उस पर। श्वास भीतर गई, छोटा सा विराम है, तब ना तो भीतर जा रही न बाहर जा रही, फिर बाहर गई, फिर छोटा सा विराम है, न तो अब बाहर जा रही न भीतर जा रही। इस छोटे से विराम को जिसने पकड़ लिया वही प्रेम के विराम को भी पकड़ने में सफल हो पाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते, और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते हो। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां, अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता क्योंकि उससे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं,
कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है। रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो, आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े। बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर भी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया। उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा, इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है कि इन दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई, प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने को है। बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है। तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो, जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी, कई मिनट भी निकल सकते हैं, कई घंटे भी निकल सकते और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सद जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी, सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, उस प्यारे का मार्ग ना मिलता था। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। आंख का बंद हो जाना अर्थ क्या है? आंख तो तुम बहुत बार बंद करते हो, रास्ता कहां मिलता है? आंख तो तुम अभी बंद कर सकते हो, रास्ता कहां मिलता है? तो जरूर इस आंख से कुछ मतलब ना होगा। आंख तभी बंद होती है तुम्हारी जब कोई कामना नहीं रहती। प्रार्थना भी एक तरह की कामना है, वहां भी मांग जारी है। परमात्मा के मंदिरों में बैठे लोगों के प्रार्थना के बाद फैले हुए हाथ भी वासना के ही हाथ हैं। परमात्मा के सामने झुके हुए सिर भी वासना के ही झुके हुए सिर। कुछ मांग जारी है। अब बाहर का धन नहीं मांगते, भीतर का धन मांगते। मांग जारी है। जहां तक मांग जारी है वहां तक आंख खुली है। जहां तक तुम कुछ सोच रहे हो मिल जाए, वहां तक आंख खुली है। जहां तुमने सोचना छोड़ा कुछ मिलने को है, कुछ मिलने का सवाल ना रहा। तुम हो गए जैसे हो, बस उसमें डूब रहे। आंख बंद हो गई, फिर आंख खुली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद हो गई। तुमने बुद्ध पुरुषों की मूर्तियां देखी,
आंख न तो खुली है और न बंद है, अध खुली, अध खुली प्रतीकात्मक है। उसका अर्थ है न बाहर न भीतर, जरा सी खुली है, नीचे की सफेद पुतली दिखाई पड़ती। इसलिए योग में व्यवस्था है कि ध्यानी जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह बैठे कि सिर्फ नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ता रहे, बस। इसका मतलब वह आंख बस आधी खुली हो, आधी बंद हो, प्रतीकात्मक है। प्रयोजन केवल इतना है कि न तुम भीतर जाओ न तुम बाहर जाओ, बीच में संध्या काल में ठहर जाओ। प्रेम संध्या काल है। तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना, प्रेम बहुत कम लोग जान पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रेम को जान लिया उन्हें फिर परमात्मा को जानने में बाधा क्या रही। जिन्होंने प्रेम को जान लिया फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा को जानने से क्यों वंचित रह गए। ये हो नहीं सकता। जिनके हाथ में कुछ हीरे आ गए उनके हाथ में पूरी खदान ही आ गई। हीरे ही ना आए होंगे, कंकड़ पत्थरों को समझ लिया होगा हीरे, इसलिए खदान नहीं मिली। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने उसे गौर से देखा और कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा झंझटों में मैं कभी पड़ा ही नहीं, छोड़ें ये बातें, मुझे तो प्रेम से क्या लेना देना, परमात्मा की खोज। लेकिन रामानुज ने कहा तू थोड़ा सोच, कभी किसी से किया हो प्रेम, किसी से भी किया हो, कोई याददाश्त तुझे आती हो? उसने कहा आप भी कहां की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूं, आप दूसरा ही विषय छेड़ रहे हैं। मैं साधक पुरुष हूं, विरागी हूं, प्रेम वगैरह की झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा। मगर रामानुज भी अजीब, वो फिर पूछे कि फिर भी तू सोच, क्योंकि सारी बात इसी पे निर्भर है। अगर तूने प्रेम का क्षण जाना हो तो फिर परमात्मा की शाश्वतता को भी जान सकेगा। अगर प्रेम की बूंद ही नहीं चखी तूने तो सागर को तू कैसे चखेगा, सागर में तू कैसे उतरेगा? लहर को तो पहचान, फिर सागर को पहचान लेंगे। उस आदमी की समझ में ना आया, वो शायद नाराज ही होकर चला गया। जिनको तुम विरागी कहते हो उनको समझ में कैसे आएगा? जिनको तुम महात्मा कहते हो वो तो प्रेम के दुश्मन बन के बैठे, उनका परमात्मा प्रेम के विपरीत है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं प्रेम उसका द्वार है। तुम्हारे महात्मा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो परमात्मा है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम की शत्रुता है, वो केवल संसार के विपरीत दूसरी अति है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो अति नहीं है, वो बाहर और भीतर दोनों का अतिक्रमण है, वो परम संतुलन की अवस्था है, पूर्ण विराम है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि आप भी परमात्मा की बात करते हैं, हमारे गुरु हैं वो भी परमात्मा की बात करते हैं, सब एक ही है। मैं उनको कहता हूं इतना आसान नहीं, सब एक ही है कहना इतना आसान नहीं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। शब्द तो वही, मैं भी परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूं, तुम्हारे गुरु भी करते होंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु का परमात्मा और ही होगा। प्रेम से भयभीत, प्रेम के विपरीत, प्रेम का दुश्मन। तो तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा उनकी ईजाद है, असली नहीं। असली परमात्मा तो प्रेम के खेल को खेले चला जाता है, असली परमात्मा तो प्रेम के नए नए रूप रचे जाता है, असली परमात्मा तो कितने रंग लेता है, कितने रूप लेता है, कितने रंगों कितने रूपों में प्रेम का रास रचता है। संसार के विपरीत नहीं हो सकता परमात्मा, संसार के पार हो सकता है, विपरीत नहीं। जो विपरीत है वो तो जब संसार खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो पार है वही अतियों के पार बचेगा। परमात्मा साधना नहीं है, सिद्धावस्था है। परमात्मा कोई विधि नहीं है,
जैसा कि पतंजलि ने माना है कि परमात्मा विधि, कि उसके आलंबन को लेकर उसके प्रति समर्पण करके आदमी परम अवस्था को पहुंच जाता है। पतंजलि का परमात्मा विधि है, साधना का हिस्सा है। उसका उपयोग केवल इतना है कि तुम उसके सहारे समर्पण कर दो, मगर ऐसा परमात्मा तो जब तुम सिद्ध हो जाओगे छूट जाएगा। जब तुम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होगे तो ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत रह जाएगी। ये तो मार्ग का ही हिस्सा था, ये खो जाएगा। परमात्मा मार्ग नहीं, मंजिल है। परमात्मा दाएं बाएं नहीं। परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिल सकती है तो मार्ग के ठीक मध्य में मिल सकती है। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, मध्य में, ठीक बीच में। मगर बीच से भी सिर्फ झलक मिलती है, लेकिन बीच से अतिक्रमण जुड़ा है। उस बीच के बिंदु को तुम खोज लो तो पार जाने की सीढ़ी मिल सकती है। ध्यान रखना, प्रेम से लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं कि प्रेम की शर्त ही पूरी करनी कठिन पड़ती। प्रेम की शर्त है क्षण भर को मिटना, क्षण भर को ही सही तिरोहित हो जाना। बेदार राहे इश्क किसी से न तय हुई, सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। कोई प्रेमी कभी प्रेम का मार्ग पूरा नहीं कर पाया। मजनू जंगल में खो गया, फरियाद पहाड़ों में। प्रेमी कभी पहुंच नहीं पाता, खो जाता है। पहुंचने योग्य कोई बचता ही नहीं। प्रेमी मार्ग में ही गल जाता है और खो जाता है। लेकिन इसी खो जाने में पहुंचना है। जहां तुम खो जाते हो वहीं परमात्मा हो जाता है, जहां तुम मिटते हो वहीं वो घनीभूत होता है। तुम सिंहासन खाली करो तो ही उसकी संभावना है कि वो तुम्हारे सिंहासन पर विराज सके। तुम अगर बैठे रहे सिंहासन पर, अवकाश कहां, स्थान कहां? परमात्मा को बुलाते हो, तैयारी कहां है तुम्हारी? कहां बिठाओगे, कहां उसे विराजमान करोगे? अहंकार तो रोए रोए में भरा है, मैं का भाव तो श्वास श्वास में समाया है। जगह कहां बची है तुम्हारे भीतर? जगह खाली करो। प्रेम का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो अपने को डुबाने मिटाने को राजी है। जो डूबते हैं, ये नदी कुछ ऐसी है कि वे ही केवल पहुंचते। जो डूबे वे बचे, जो बचे वे डूबे। अगर किनारे पर पहुंचना हो तो मझधार में डूब जाना ही उपाय। ठीक है ये पंक्तियां, बेदार राहे इस किसी से न तय हुई। ये प्रेम का रास्ता कौन कब पूरा कर पाया? इसका ये कारण नहीं कि रास्ता लंबा है, इसका ये कारण नहीं कि रास्ता बहुत बड़ा है इसलिए लोग पूरा नहीं कर पाए। इसका कारण कुल इतना ही है कि ये रास्ता ऐसा है कि इसे पूरा करने वाला बीच में खो ही जाए तो ही पूरा होता है। पूरा होने का एक ही अर्थ है कि बीच में ही खो जाए। अगर पहुंच जाए दूसरे किनारे तो रास्ता खो ही गया, पूरा हुआ ही नहीं। जो पूरा नहीं कर पाते, जो स्वयं इसको पूरा करने में पूरे हो जाते, वे ही केवल पहुंचते। सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए, कोई रेगिस्तान में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रार्थनाओं में, कोई साधनाओं में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए। जहां खोए वहीं घड़ी उस परम सौभाग्य की, परम आशीष की, परम प्रसाद की। तीसरा प्रश्न एक उलझन है, यदि ठीक समझे तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध और आप दोनों कहते हैं ध्यान से उपलब्ध आनंद को बांटो, ध्यान को बांटो, और दूसरी ओर ध्यान के अर्जन को गुप्त रखने कर छिपाकर रखने की बात भी कही जाती है। निश्चित ही दोनों बातें कही जाती हैं, क्योंकि दोनों बातें सही है, उनमें विरोध नहीं। विरोध दिखता हो तो केवल आभास है।
ध्यान मिले तो बांटो, लेकिन ध्यान जब तक न मिला हो तब तक संभालो और छिपाओ। होगा तब तो बांटोगे, जल्दी बांटने की मत करना। अक्सर नहीं होता तो भी बांटने की आकांक्षा पैदा हो जाती। उपदेश देने का बड़ा रस है, किसी को समझाने में ज्ञानी होने का मजा आ जाता है, किसी को बताने में, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, थोड़े क्षण को आभास होता है कि तुम्हें पता है। इसलिए तो दुनिया में सलाह इतनी दी जाती है, लेता कोई नहीं। कितने उपदेश दिए जाते हैं, कौन लेता है? उपदेशक पीछे घूमते हैं तुम्हारे, पकड़ पकड़ के समझाते हैं। उपदेशकों से बच के निकलना मुश्किल है, उन्होंने सब राह रास्ते रोक रखे। जहां से जाओ वहीं वो मौजूद है। मुक्त हस्त ज्ञान बांटते, मुफ्त देने को तैयार है। मुफ्ती देने को तैयार नहीं, साथ में कुछ प्रसाद भी देने को तैयार है। लो भर, फिर भी कोई लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बांटना कहीं अहंकार से ना निकलता हो, करुणा से निकले तब बात और। पर करुणा तो तब होगी जब ध्यान सघनीभूत होगा, जब ध्यान एक मेघ बन जाएगा। बुद्ध ने इसलिए उसे मेघ समाधि कहा है। जब एक घने मेघ की तरह, सघन मेघ की तरह वर्षा से भरे हुए तुम हो जाओगे, उसके पहले तो बूंद बूंद मेघ इकट्ठी करता है। इकट्ठा हो जाए तो ही बरस सकता है। मां गर्भवती हो, 9 महीने तक गर्भ को संभाले तो ही जन्मदात्री हो सकती है। बिना गर्भवती हुए, बिना 9 महीने संभाले बच्चों को जन्म देने की कल्पना करने में मत उलझ जाना, इससे धोखा पैदा होगा। इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे। और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा दो, क्योंकि बड़ी बारीक बड़ी नाजुक बात है। इससे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना। जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाएं, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाएं, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म। जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की। पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना। अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती। जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे। पहाड़ और समुन्दर भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुंचे थे इन लॉस तक। इन लॉस एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन लॉज और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैव गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉज की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को।
1: एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है, कि कोई आदत नहीं पसंद है या वो ऐसे ही बोलते हैं या वो ऐसे ही ताने देते हैं या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1, 2, 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास दो चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाए ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे, नेगेटिव।
0: और सोचते भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं सारे लोगों से, फोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बात है।
1: एंड इट्स वेरी आयरोनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यू नो उसके सारे अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है। तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है। जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर। और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो बस छोटी सी की,
0: हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं, वो फट पड़ता
1: है क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था। और फिर शायद हमें बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है। तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इनलॉज है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होके बाहर आ जाता है। एक दिन के लिए सिर्फ, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है। लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है। दो चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे। सेकंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप। एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
0: ओह, आई हैव टू,
1: दैट्स ओके, यू नो इनिशियली बिकॉज मे बी इट्स टू चैलेंजिंग फॉर अस के आई लाइक द संस्कार, यू नो दैट इज सेइंग के नहीं, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद, बट इनिशियली मे बी इट विल हैव टू बी, I have to accept it. What do I choose for myself? Pain and turmoil या comfort? हम accept करके, ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको accept कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं
0: और वो मुझ पर हावी हो जाएंगे, एक संस्कार नहीं, उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे। अभी से ही मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो दे विल टेक ओवर।
1: लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना। जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज के सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज। ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज है, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप। द मिनट यू विल से फुल स्टॉप इंटरनली, जस्ट ट्राई इट आउट, इट रियली पुट्स अ फुल स्टॉप। यू नो, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में, हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में। इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट।
0: एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है। एंड आई हैवन सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट,
1: राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था। इट विल स्टॉप। दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप। अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटिफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है। तो अगर कोई बातें हैं भी घर में, हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है। आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं। वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं, so why can't I understand कि you know she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs, तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हम internally accept कर लेंगे, आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे, लेकिन जितना negative energy travel करेगी वो हमारे,
0: और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे या जितने भी हम पैर छूले, these are the aspects which actually all of us do, लेकिन अंदर से वो continuous, again I can understand कि अंदर का conflict जो है, अंदर की नेगेटिविटी।
1: बाहर आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज करने के लिए, अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है, दी अदर पर्सन इज़ विलिंग टू लिसन। अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विथड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी।
0: एंड इन फैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है। दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए,
1: एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो एक घंटे के लिए करके देखें। अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ एक घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के, आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट।
0: आई थिंक इसमें सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू
1: सिचुएशन, बट देन दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सी, रिलेशनशिप इज नॉट विद द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज फर्स्ट विद योरसेल्फ। हर्ट दूसरे से नहीं मिल रहा है, सफरिंग दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह फीलिंग गुड भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू क्रिएट इट, बट देन व्हेन आई एम फीलिंग गुड, it automatically travels, and the whole environment of the house will change.
0: I can really feel it, you know, that it can happen.
1: And ye bhi nahi soche ki wo kare pehle.
0: See, whoever is awakened
1: जो पहले एक थॉट सिर्फ क्रिएट कर ले कि हाँ ठीक है, पहले अगर हो सकता है पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हो, कोई ऊपर नीचे बात भी एक दूसरे से कही हो, द माइंड हैज द पावर टू फॉरगेट. हम कहते नहीं, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. माइंड हैज द पावर, जस्ट से इट.
0: हम भूलना नहीं चाहते,
1: हम भूलना
0: बार,
1: नहीं चाहते
0: बार याद दिलाते,
1: हर चीज तो वो एक थॉट की है. हम भूलना नहीं चाहते, हम फॉरगिव करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो डिजायर आ जाएगी कि आई वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वन थॉट एनीवन कैन ट्राई दिस राइट नाउ, कि वन थॉट कि अभी तक जो हुआ फुल स्टॉप, एंड दिस यू आर नॉट डूइंग फॉर द अदर पर्सन. दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग. क्योंकि हम सोचते हैं हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरी इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीबॉडी? व्हाई डू आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ पेन व्हेन आई कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस?
0: चॉइस एक्चुअली, यू नो, लेट्स ट्राई इट आउट. कि एक घंटा या एक दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फॉरगिव करने से पहले फॉरगेट करना जरूरी है. माफ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा अब आपके पास, इन लॉज के पास छोड़ रहे हैं, फेट है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है, बच्चा मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं? तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूं, यू नो. लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज टू बी डन, यू नो, जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें?
1: आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन क्रिएट द थॉट, एक्चुअली रियलिटी, यू शुड नॉट हैव टू क्रिएट इट, कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था. इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो, देर इज़ नो डिफरेंस. हाँ, अगेन वो चीज़ है कि मेरा वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, इनका वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, बट देन अगेन एक्सेप्ट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन, मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक छोक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल, यू नो, यू शुड रियली बी सो ग्रेटफुल टू योर इन लॉज के दे आर लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन. बिकॉज इट्स एज गुड एज यू आर नॉट देयर बट यू आर देयर. क्योंकि एक माँ का जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो उसे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है और मिलता ही है. तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करें उनसे? और वो जो खिला रहे हैं या जो पहना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं.
0: हमेशा पेरेंट्स जो है, अगर हम
1: हमेशा
0: अपने आप को
1: राइट करेंगे. आज दिन तक हमें कई बातें वो भी तो नहीं अच्छी लगी जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनके प्रति ये नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ये रॉन्ग कर रहे हैं या मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एंड फिर अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि आप जो भी परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी मोर देन रेडी.
0: इट हैज टू बी विद अ पॉजिटिविटी.
1: यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहाँ वहाँ नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा.
0: थॉट हैज टू बी एक्चुअली पॉजिटिव. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी में भी आता है इस पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एंड दैट इज़ द हस्बैंड. एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है. हम सब बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है, कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है. व्हाट हैज़ टू बी हिज थॉट्स? process, you know.
1: Again,
0: what happens with him also?
1: I think again belief है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा pressure उस आत्मा पर पड़ता है, जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर pressure पड़ रहा है, और energy जो travel कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके through होते हुए गुजरती है, क्योंकि target वो है. You know, एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है,
0: दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है,
1: क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है. तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते. इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है. बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली हाउ आई एम फीलिंग. इफ़ आई रियलाइज दैट, यू नो, आई डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देर इज़ नेवर अ कॉम्पिटिशन. यू नो, हमेशा हम रिलेशनशिप्स में कंपटीशन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए.
0: एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुंचते
1: हैं. दैट्स व्हाट, सो वो सारा प्रेशर अक्यूमुलेट होता है ना. तो वन इज, आई थिंक व्हाट द बॉय कैन डू इज लेट देम सॉर्ट इट आउट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन दोनों को करने दें. एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट, बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ शेयर ऑल योर गुड क्वालिटीज अबाउट द मदर, बिकॉज इट्स एक्चुअली जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है. You know, you are the bridge, तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार. और हर रोज जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं, तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो, या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग. एंड फिर move out of the space, let them create the relationship together. हम कई बार ये, the boy tries कि दोनों को थोड़ा सा
0: हाँ सामने ही आने दो, क्योंकि क्यों,
1: you know, I don't know whether that's a very healthy sign, कि दोनों को दूर रखते हैं. ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली, ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नजदीक आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है. No, it will not be a conflict. It could be a very beautiful relationship. So make that effort of them coming closer. And again, agar aap bahut zyada pressure feel kar rahe hain, then you meditate first. See, meditation is something that's going to help everyone.
0: In fact, it's not just a relationship which happens, you know. It has to be.
1: ये एक relationship है जो develop होता
0: है. Develop किया जाएगा.
1: ये एक develop होता है over a period of time. और इसको जितना right फाउंडेशन पर हम डेवलप करेंगे विद द थॉट के हाँ कि ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, इट विल डेवलप. और फॉर द बॉय, ओनली केयर दैट ही नीड्स टू टेक इज कि दोनों में से किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा नहीं स्वे हो जाना. यू नो, इट जनरली हैपन्स, वो वाला एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ऑफ क्रिएटिंग द बैलेंस. हम डेफिनेटली दोनों में से एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है या ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो मेडिटेशन हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है,
0: इंटेलेक्ट को बढ़ाता है,
1: राइट और रॉन्ग डिसीशन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है. फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, और निर्णय लेने की शक्ति. एंड बैलेंस, यू नो, द सबसे बड़ा बेनिफिट राजयोग मेडिटेशन से मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट दिस बैलेंस इन लाइफ. तो वो बैलेंस एक बहुत नेचुरल होता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगेगा.
0: एक और एस्पेक्ट, जो जब लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी, और यहाँ आते ही एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें, जितने
1: भी छोड़ना ही नहीं है।
0: अच्छा, वो नहीं भी छूटते, लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन्ड रहती है कि वहाँ मेरी

0: सकते हैं, लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है, इवन वेन द चाइल्ड वॉज विद यू। और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है। कई बार हम बेटे की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने के बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं। तो समहाउ आई पर्सनली वुड फील कि वी शुड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली।
1: तो माँ के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? यू नो दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बिलीव विद व्हिच द गर्ल लिव्स।
0: ये भी क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है, नोबडी एल्स कैन गिव मी द सोल्यूशन, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है। और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है, तो जो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है वो पावर मेरे पास है। बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं, कोई हमें एडवाइस भी दे दे फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुद से उसको करें। जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हैं। कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है। एज फार एज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए हो वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे। जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं। देखो, एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ वी रियली लुक बैक एट आर लाइफ एंड वी इवैल्यूएट एवरी रिलेशनशिप, हम देखेंगे कि जहाँ भी दूरी आई है उसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। हम डेफिनेटली ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन उस दूरी को हमने ही क्रिएट किया है बाई डूइंग ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, डिस्कसिंग, रिपीटिंग, बार बार उसके बारे में सोचना, औरों के साथ वर्णन करना। फिर बाह्य रीति से हम एफर्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना, एंड देन वी रियलाइज इट डजंट वर्क एंड अंदर इतनी बिटरनेस है, थोड़ा सा बाहर ट्राई करते हैं, वर्क नहीं होता तो बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो बात नहीं करो, अलग अलग रहो। एंड दिस इज वन रिलेशनशिप जहां हम बहुत जल्दी अपने आप को ये ऑप्शन दे देते हैं,
1: अलग हो जाओ फटाफट, यू नो दैट्स अगेन यस, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि इट विल नॉट वर्क।
0: तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत जल्दी उसको अलग कर देते हैं। अगर हमें ये ध्यान रहे कि इस रिलेशनशिप में अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी उसका डायरेक्ट रिजल्ट उस गर्ल की अपने हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप पे होगी, दैट रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रॉन्गर, इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।
1: इन फैक्ट यस, वी हैव एक्चुअली टच्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विद इन लॉज एंड यू नो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। अ स्मॉल एस्पेक्ट स्टिल रिमेन्स इज जब बच्चा, जब जैसे अब एक मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और उनका बच्चा, डॉटर इन लॉ का बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, यहाँ अगर वो वर्किंग वुमेन है, बहुत बार देखा गया है इन लॉज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता, ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गए, अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज।
0: और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड वो अपने इन लॉज के बारे में अपने बच्चों को यू नो नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी यू नो क्रिटिसाइज करना उनको, लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक

0: रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है. वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है. दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज्यादा क्लोज हो सकते हैं. नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. आई डोंट हैव टू ऑलवेज बी, यू नो, दिस ऑल्सो हैपन्स विद द हस्बैंड कि या तो आप पेरेंट्स की साइड पे ज्यादा है या वाइफ की साइड पे ज्यादा है. नॉट नेसेसरी. व्हाई कांट इट बी इक्वली नाइस विद एवरीबडी. हमारे 10 फ्रेंड्स होते हैं. समटाइम्स आंट वी जस्ट इक्वली क्लोज टू ऑल ऑफ देम. दिस इज जस्ट लाइक दैट.
1: इन फैक्ट अगेन वी हैव टू रिमेंबर, मदर हैज टू रिमेंबर दैट ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तो कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे खराब कर सकते हैं.
0: खराब, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. इन फैक्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को. तो इट इज अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है.
1: सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन दो कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो, और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है. लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। कहते हैं कि शिव में विश्व है और विश्व में शिव है, और हट जाए तो शिव बनेगा, ढल जाए तो इंसान शिव बनेगा, और शिव में लग जाए तो शिव विश्व बनेगा। विश्व के कण कण में शिव का वास है, इसलिए शिव में हर जीव का वास है। तो जब दोस्तों हर जीव में ही शिव का वास है और शिव में ही हर जीव का वास है, तो हमें हर जीव में ही शिव के दर्शन करने चाहिए। इसका अर्थ है कि आप हरेक इंसान में सामने, आपके सामने जो भी है उसमें ईश्वर का दर्शन करें, उसमें आप अपने इष्ट का दर्शन, आप विश्वास रखें कि इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। मेरे सामने जो कुत्ता खड़ा है उसमें भी वही ईश्वर है, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ऐसा सोचकर सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। दुत्कारिये मत, कुछ नहीं दीजिए पर दुत्कारिये मत, ना किसी जीव को ना किसी गरीब इंसान को। अगर कुछ देना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो दीजिए, मदद कीजिए, वरना आप ना उपहास उड़ाएं और ना ही उसका अपमान करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी होंगे, आपके खाते में पापों की श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो आप अपने खाते को बिगाड़िए मत। तो दोस्तों, इस सब का ज्ञान कैसे होगा, ये सिखाता है हमको शिव पुराण। शिव पुराण के सुनने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का पौधा अंकुरित हो जाएगा। अब ये शिव पुराण सुनवाने के लिए, आपके इसी ज्ञान वर्धन के लिए, हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को हमेशा ही आमंत्रित करते हैं, और आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब शिव ने विष्णु भगवान के पास देवताओं को भेज दिया कि वही निराकरण करेंगे, आप उनके पास जाओ, तो विष्णु भगवान ने गणों को, रुद्र गणों को, यज्ञों को, देवताओं को बुलाकर उसमें से जो रुद्र थे वो योद्धा, उनको आदेश दिया कि जाकर त्रिपुर नगरों का विनाश कर दो। लेकिन उन्होंने साथ साथ देवताओं को ये भी समझाया कि हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो सारे के सारे जो असुर हैं वो शिव भक्त हैं, और जो शिव भक्त हैं, जो शिव का स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको शिव भक्ति से हटाना होगा, तभी उनका विनाश संभव है, वरना उनका विनाश नहीं हो पाएगा। अब लीना जी, आगे क्या होता है, क्या उनको भक्ति के पथ से हटाया जाता है ताकि उनका विनाश हो सके, या उनको पाप के रास्ते पर अग्रसर किया जाता है, उनमें काम क्रोध मोह लोभ इस प्रकार और भी जो अन्य पाप हैं उनकी ओर अग्रसर किया जाता है, छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी देवता अपनाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका विनाश तो सम करना ही है, और विनाश संभव तब तक नहीं है जब तक वो शिव भक्त हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं देवता, क्या प्रयास करते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, ये रुद्र संहिता के युद्ध खंड का तीसरा अध्याय है, और इस तीसरे अध्याय में देवगणों को विष्णु भगवान समझाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं देवताओं का, लेकिन समस्या यही है कि त्रिपुरासुर जो है वो शिव भक्त हैं, त्रिपुर नगरी शिव भक्ति से परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, तो कैसे वो वध करें त्रिपुरासुर का। तो जब देवगण बड़े दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवा, सकला यूयम गच्छत स्वगृहान ध्रुवम, देव कार्यम करिष्यामि यथाम अति न संशय, तान रुद्राद विमुखान नूनम करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्ति रहिता ज्ञात्वा तान करिष्यामि भस्मसात। वो कहते हैं कि
2: हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाइए, मैं निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा, मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा, अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है उसे आप सुनिए। तो चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय। सनत कुमार उवाच, असृजच्च महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम एकम माया मयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ मच्युत मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम शीयमानम मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम ही वाचा विक्लव या मुनि। कहते हैं कि उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए उत्पन्न किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिना बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। मुंडित सिर वाला था और मैले वस्त्र वाला था और उसके हाथ में जो झोला था वो बिना हुआ झोला था और हाथ में झाड़ू भी था, तो हाथ जोड़कर हरि से वह कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे, हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे, तो भगवान विष्णु ने तो माया रची थी कि उन लोगों को, त्रिपुरासुर को कैसे भक्ति रहित किया जाए, तो उस माया के कारण उन्होंने मुंडित सन्यासी को प्रकट किया। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, यदर्थम निर्मितो असि त्वम निबोध कथयामि ते मदंगज महाप्राज्ञ मदरूपस्त्वम न संशय ममांगाश्च समुत्पन्नो मत कार्यम कर्तुम अर्हसि मदीयस्त्वम सदा पूज्यो भविष्यसि न संशय अरिहन्नाम ते स्यात्तु हियान्यानि च शुभानि च स्थानम वक्ष्यामि ते पश्चात् श्रुणु प्रस्तुतम आदरात्। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान इस रूप में है, जैसे माता धूमावती के रूप में है, माता बगलामुखी के रूप में है, और धूमावती माता ने क्या किया है, भगवान शिव को का ही भक्षण कर लिया। कब किया, जब क्रोध में थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है, और भगवान तब समाधि में लीन थे, दो बार तीन बार कहीं जब नहीं माने तो उन्होंने शिव को उठाया, शिव को ही खा लिया। तो माता के बहुत सारे रूप है, तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे रूप है। तो विष्णु भगवान ने मुंडित सन्यासी के रूप में उत्पन्न किया, मैले कुचैले वस्त्र वाला भी था वो सन्यासी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम महाप्राज्ञ हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा है तुम्हारे अंदर, और तुम मेरे लिए भी पूज्य होगे अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे। तो तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, अरिहंत बुद्ध,
3: हाँ
2: मतलब शत्रु,
3: मतलब को मारने
2: तुम शत्रु को मारने वाले होगे, तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, स्थान बाद में बतलाऊंगी, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो, वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। उन्होंने कर्म परक शास्त्र लिखने की आज्ञा दी भगवान विष्णु ने, क्योंकि वेद क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र विरुद्ध मत वाला शास्त्र लिखो, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता नहीं हो, कर्म की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र तुम लिखो 16,000 श्लोकों से युक्त जो हो, और अपभ्रंश भाषा में हो, संस्कृत में नहीं हो। अपभ्रंश माने संस्कृत से थोड़ा सा हट करके हो, उससे गिरा हुआ। संस्कृत को तो सुसंस्कृत कहा गया, परिष्कृत भाषा कहा गया, विद्वानों की भाषा कहा गया है, तो वो विद्वानों की भाषा नहीं हो, अपभ्रंश भाषा हो, ऐसा तुम करो। अब देखिए, कहते हैं कि सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे।
4: अच्छा,
2: कहते हैं विष्णु भगवान तो माया भी तो है ही, परम माया भी है, और देवताओं का कार्य भी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इत्युक्त्वा पाठयामा शास्त्रम मायामयम तथा इहैव स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाच पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिनः। कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीया प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोष ते भविष्यति महामते। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गलत काम तो करोगे। गलत काम क्या, भक्ति से दूर करोगे सबको, तो
4: आज्ञा मेरी होगी, क्यों,
2: लेकिन आज्ञा मेरी है। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उनसे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग न आ जाए। अब देखिए, कलयुग लाने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही तभी जब धर्म का नाश होगा।
4: हाँ।
2: तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ते तो युगे तस्मिन् वियो धर्म प्रकाश्यताम शिष्यश्च प्रतिशिष्यश्च वर्तनीय त्वया पुनः मदाज्ञया भवद्धर्मो विस्तारम यास्यति ध्रुवम मद अनुज्ञा पुरो नित्यम गतिम प्राप्यसि प्राप्स्यसि माम किम एवम आज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभु विष्णुना शासना देव देवस्य हृदा त्वान्तर्दधे हरे। कहते हैं कि तुम जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा, लेकिन तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार करके तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, तुम उसके बाद मरुस्थली में रहना, कलयुग ना आ जाए जब तब तक, कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। जब कलयुग आ जाएगा तो शिष्य प्रशिष्य आदि करके तुम अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने धर्म का। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समस्त विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा यह था वैसे ही वे चार शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन चार शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सदगति मिलेगी। वे चार मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए
1: मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रत धारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। अब भगवान विष्णु की लीला है ये सब कि क्या क्या वो कर रहे हैं देखते हैं। कहते हैं ऋषिर यति ही तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्यं शुभं पुनः अरिहन्निति तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम् भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतां भविष्यति उत्तमा गति। तो कहते हैं कि आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। सब भगवान विष्णु के ही तो है। तो अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है अरिहन। तो आप लोग भी संसार को दुख सुख देने वाला कार्य कीजिए लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ऐसा विष्णु भगवान ने उन लोगों को कहा। अब सनत कुमार जी ने कहा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कहते हैं ततः प्रणम्य तम माई शिष्य युक्त स्वयं तदा जगाम त्रिपुरम सद्य शिवेच्छा कारिणम मुदा प्रविश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विना तेन ऋषिर मायाम तदा करोत नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्त स्थितिम तदा मायाम प्रवर्त्यामास माइनाम अपि मोहिनीम। अब कहते हैं कि तब वह माया भी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिक कर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। अब नारद जी क्या है नारद जी की तो यहाँ की बात उधर उधर की बात इधर करना उनका स्वभाव है और चारों लोकों में भ्रमण सभी लोकों में ये भ्रमण करते हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने याद किया और नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तम गतस्तत्र द्रुतम यत्र स ऋषिर माइनाम वरः नारदो अपि तथा माई नियोगान माइनः प्रभो प्रविश्य तत्पुरम तेन माइनः सह दीक्षितः। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। क्या कहा नारद जी ने कहते हैं नारद जी कि कश्चित समागत चात्र यतिर धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्वित दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नैतेन सदृशा पुनः वयम सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम्।
2: तब इच्छा यदि वर्ते तद्धर्मे दैत्य सत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा
0: त्वया।
2: पुनः कहते हैं नारद जी कि आपके नगर में कोई धर्म परायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। ये नारद जी किससे कह रहे हैं? त्रिपुरासुर से। सनत कुमार जी ने कहा, महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्य चकित होकर वह दैत्यराज वहां मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली है हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, क्या कहा त्रिपुराधीश ने? अब देखिए यहाँ से उसका पतन शुरू हो गया। त्रिपुराधीप उवाच, दीक्षां देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशय। इत्येव तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस् निर्मलं प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः। मदीया करणीया स्याद् अद्य आज्ञा दैत्य सत्तम तदा देया मया दीक्षा नान्य था कोटि यत्न था। वो कहते हैं कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, त्रिपुराधीश ने कहा कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। अब दैत्य ने कहा क्या कहा? यथाज्ञाम दास्यसी त्वम ही तथैव च न चान्यथा त्वद आज्ञाम नो लंघिये से सत्यम सत्यम न संशय। कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो, दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। तो यहाँ त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।
5: तो सबको दीक्षा दे दी वहाँ पर।
2: हाँ जब राजा ही दीक्षित हो गया तो प्रजा तो दीक्षित होगी।
5: हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रसंग रहा और बहुत ही ये प्रभु की माया थी।
2: हाँ
5: भगवान नारायण की माया जब काम करती है तो तब ऐसे ही फिर बुद्धि भ्रष्ट तो वो कर ही देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लीना जी एपिसोड समाप्त करने का तो समय हो चला है, तो इसके साथ साथ श्रोतागण भी बैठे होंगे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप जो ये कविता एक छोटी सी सुनाकर सबको भक्ति में कर दीजिए।
2: कहते हैं सूरज की ज्योति में, चंद्रमा की शीतलता में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में कौन है समाये? हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव, हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव।
5: आप हर पंक्तियों में जब भी आप कविता करती हैं उसमें सार कह देते हैं, सार गर्भित जो है कविता होती है वो, और हमारे श्रोता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत बड़ा है व्यापक है, उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो और बहुत ही आनंद आता है जब चिंतन करते हैं उन पंक्तियों का उन अर्थों का, तो चिंतन करने में भी बहुत आनंद आता है। और जैसे आप ज्ञानवर्धन करनी है हमारे श्रोताओं का, तो हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है।
2: धन्यवाद।
5: तो श्रोतागणों दोस्तों, क्योंकि आप इतनी ज्ञानवर्धक प्रसंग लीना जी से सुन रहे हैं, शिव पुराण में से सुन रहे हैं, आप खुद भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आप जहाँ भी बैठते हैं, आपके संपर्क में जो भी आते हैं, सबको इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और जितना कि स्वयं तो ले ही रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सबके हिस्से का भी जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा और सबको लाभ तो मिलेगा ही, सबको सब आनंद में होंगे। ये सबके दुख दूर करने का जो पुण्य मिलता है वो भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ा सकूंगी। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे, मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।
6: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
7: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
8: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
6: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें, नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
8: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
9: बिल्कुल,
8: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
9: बिन बुलाए मेहमान,
8: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
9: खुद के मन में क्या है
8: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
9: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
8: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
9: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
8: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
9: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
10: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
9: जी।
10: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
9: जी।
10: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
9: बिल्कुल।
10: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
9: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
8: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम, तैव कवता मनीषिणे, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं हैं, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो वो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है।

0: थोड़ा था मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है।

0: और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, बहुत सारा ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागिनी खदासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागिनी खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में रागिनी खदासी जी हमें बता रही हैं, महाभारत में जो समाहित है। महाभारत ये बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में हम आजकल इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने कर्ण की जन्म कथा को जाना था रागिनी खदासी जी से। तो आज के कार्यक्रम में रागिनी खदासी जी, आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: जी, ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर में निर्जीव होकर गिरना।
0: जी।
1: तो द्रौपदी के हरे जाने पर अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कामक वन को छोड़कर भाइयों से ही द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ट से एक हिरण सिंह खुजलाने लगा। देवयोग से वे काष्ट उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े बील डॉल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आके कहा, राजन, मेरे अरणी के सहित अपना मंथन काष्ट पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग, मतलब जो यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है, वही उन्होंने टांग दिया था पेड़ पे। उसमें एक मृग अपने सिंह खुजलाने लगा और वह उसके सिंह में फंस गया। उस विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ लेकर भाग गया। तो आप उसके खुरों पे चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ट ले आइए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। उसे ना देखकर वे हतोत्साह हो गए और बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वटवृक्ष के पास पहुंचे। भूख प्यास से शीतल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल ने जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और सारसों का शब्द भी सुनाई देता है कि वहाँ अवश्य ही पानी होगा। तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल ने बहुत अच्छा कहा। वहाँ सारसों से घिरा हुआ एक बड़ा निर्मल जल देखकर वे जो ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस न करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उसकी वाणी की कोई परवाह नहीं की। किंतु जो ही वे शीतल जल पिया, उसके पीते हुए भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई को बहुत देर हो गई, अब तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। आकाशवाणी ने फिर कहा, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो ना, फिर जल पीना और ले जाना। किंतु जैसे ही उन्होंने शीतल जल पिया, उसके पीते हुए भी भूमि पर गिर गए। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जाके देखा कि वहाँ उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होके रोको। फिर से वापस वही आकाशवाणी आई कि तुम नहीं जल ले जा सकते। तो अर्जुन ने कहा, प्रकट होके रोको, मेरे बाणों से बेध होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, वह एक यक्ष था जिसकी आकाशवाणी हो रही थी, अर्जुन, इस तथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया और पीते हुए भूमि पर गिर गए। महाराज युधिष्ठिर जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पे पहुंचकर उन्होंने देखा उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। इन वीरों को किसने मारा है? उनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का तो चिन्ह नहीं है। यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी नहीं दिखाई देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता और इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। अब ये सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें भी इन्हीं के साथ तुम सोओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु या मरुत आदि प्रधान देवताओं से कौन है? यक्ष ने कहा, मैं थोड़ा जलचल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की अमंगलमय कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला। अब आप प्रश्न कीजिए, युधिष्ठिर जी ने कहा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर जी ने कहा, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उससे अस्त करता है और वे सत्य में प्रतिष्ठित है। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? प्रश्न यक्ष ने पूछा। उनमें सत्पुरुषों का सब धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। तो वेद सारे चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वही ब्राह्मण है। सब सत्पुरुषों का सा धर्म है। मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और उनके असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? विष्णु जी बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है, अधीनों की रक्षा न करना सत्पुरुषों का आचरण है। पृथ्वी से भी भारी क्या है? यक्ष ने पूछा। आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर जी बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? विष्णु जी बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र है, स्त्री घर में रहने वाले के मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होके पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है? सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेके पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सभी प्रश्नों का बहुत ही उचित जो है उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो जी रागलेखा दासी जी, आगे आप अपनी कथा सुनाएं।
1: यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है? उसका देवकृत सखा कौन है जी? और जीवन का सहारा क्या है? और उसका परम आश्रय क्या है? पुत्र मनुष्य का आत्मा है और स्त्री उसकी देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है, अदान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने कहा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों का दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है। ब्राह्मण को धर्म के लिए ध्यान दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, नाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है, राजा को भय के कारण दान देते हैं। मैं भी तो राजा को कर दे देते हैं। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो सकता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण धर्मों की मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। जो लोभवश दान और भोग से सहित जो लोभवश दान और भोग से रहित है और पीछे से कह देता है मेरे पास है ही नहीं वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दो। ऋषि जी ने कहा, जो पुरुष इस पुरुष पे ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है वह दिन के पांचवे या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पत्ता ही खा ले वो सुखी है। रोज रोज पानी अंदाज के घर जा रहे हैं किन्तु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं, से बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। मैंने पूछा था ना सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तर्क की कोई स्थिति नहीं है। यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। विष्णु जी बोले, जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख भूत भविष्य ये जोड़े के समान है वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो उसे जीवित कर सकते हो।
0: अच्छा।
1: युधिष्ठिर बोले, चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, जिसमें 10,000 हाथियों का समान बल है उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों दिलाना चाहते हो, अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को दिला देने की इच्छा क्यों है।
0: अच्छा।
1: यह राजा युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की कुंती और माधवी दो भार्याएं थी, पत्नियां थी, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माधवी माता है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं को समान भाव से रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित हूँ। तुमने अर्थ और काम की क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सब भाई जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, प्रसन्न हो गए यक्ष सारे भाई जी को। तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए और एक क्षण में उनकी सब भूख प्यास जाती रही। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे सदा ही प्रिय हो, तुमने भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन छह दोषों को जीत लिया है, तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से आया था। तो काम्य वन में एक स्थान है धर्म कुंड, वार्तालाप किया था, तुम्हारी संतुष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अविष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ट को मृग लेकर भागा उसका अग्निहोत्र का लोप न हो, यक्ष ने कहा, राजन उस ब्राह्मण के अर्णी सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारे परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप में लेकर भागा था, वे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष के वन में रहे, अब 13 वर्ष आ लगा है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, और तुमसे जो जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवाय तुम एक तीसरा वर मांग लो, अजन तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान है। विष्णु जी ने कहा, मेरे लिए क्या दुर्लभ है, तो भी आप मुझे जो वर देंगे उसे मैं फिर आंखों पर लूंगी। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं और सत्य में सर्वदा मेरे मन में प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन अनुसार तुमसे ये सब धर्म बने रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने उस पतस्वी ब्राह्मण को उसकी अरनी दे दी।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज राजलेखा दासी जी से। और युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं वो मर गए थे, और उसके बाद युधिष्ठिर जब अंत में वहाँ पहुँचे तो यक्ष ने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और ये आज बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने जाना महाभारत के अंतर्गत। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं जो हम राजलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। नहीं, राजलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण।
0: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और इन 7 दिन होती है हमारी बहुत सारी बातें। अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। हमारा आज का पहला सेगमेंट है दिल धड़कने दो, जिसमें आपसे बहुत सारी करती हूँ बातें। जी हाँ, देखिए प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में आपकी हेल्थ के बारे में बातें होती हैं। तो चलिए इसी के साथ पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है दिल धड़कने दो, जिसमें बहुत सारी हेल्थ और फिटनेस की बातें करने वाली हूँ। और उसके बाद अपना सेगमेंट दूसरा लेकर के आ जाती हूँ जिसका नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। तो आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, ये सारी की सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन लेकिन लेकिन अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

पुरसरार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ आपके पास। सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी फिटनेस की। और यहाँ पर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और अब एक खास, देखिए हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर, और वो है डिमेंशिया। जी हाँ, देखिए उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसमें याददाश्त का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। बढ़ती उम्र में लोगों में डिमेंशिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया को भूलने की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन उनके लक्षण और कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, इसकी वजह से व्यक्ति जो है, जिसे ये डिमेंशिया की शुरुआती दौरे में वो आए हैं, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है उन पर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है उनकी ज़िंदगी। इसीलिए डिमेंशिया के लक्षणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान देना उस पर ज़रूरी है। और सबसे पहले तो बात आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिमेंशिया की हम बात करें, डिमेंशिया के कारण व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर बात करें सिंपल प्लस माइनस की, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बात करें, छोटा छोटे भी, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोज़ के जो लॉजिकल फैसले होते हैं वो भी नहीं ले पाते, उसमें परेशानी आने लगती है। व्यक्ति को बिल भरने में गड़बड़ी होने लगती है, नए डिवाइस चलाने में दिक्कत उनको होने लगती है, और कुछ ऐसी परेशानियाँ सामना उनको करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक लक्षण हो सकता है। साथ ही डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति को प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी परेशानी हो सकती है, और इनफैक्ट उनको अपनी रोज़मर्रा के कामों में प्लान करने में, अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कोई अगर साधारण रेसिपी है, अगर उसे फॉलो की जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या जब वो बना रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल जो है, अगर कड़छी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं उनको याद रहेगा, या फिर अगला स्टेप क्या, क्योंकि फोकस नहीं है। और साथ ही ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज जो कि फोकस उनका ले रही है, तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, और फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर पैकिंग की जाती है तो वो भी करने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर व्यक्ति के रोजमर्रा के रूटीन जो है अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ इस तरह से होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर सामाजिक गतिविधियां से हटने लगते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सोशली उन्हें कनेक्ट कर रही है उससे वो हटने लगते हैं, और इनमें बातचीत करना, दोस्तों और परिवारों से कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ टाइम बताना, उसमें रुचि जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मन करता था पहले, अब वो ख़त्म हो जाता है, और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक जो मेल जोल है वो उससे बचने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर भी ले जाते हैं, और इससे मानसिक समस्याओं का भी संकेत आने लगता है डिमेंशिया में। चलिए डिमेंशिया से जुड़ी और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही है हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में, एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुकी हूँ। टॉपिक है डिमेंशिया का। जी हाँ, इसके लक्षणों को पहचानने की कुछ आपको बातें जो है वो बता रही हूँ। देखिए, अगर डिमेंशिया को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपके किसी क्लोज वन को जो है अगर डिमेंशिया की शिकायत है, या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता लग सकता है। भाषा से जुड़ी समस्या डिमेंशिया का एक अहम लक्षण है, यानी कि व्यक्ति को शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, और जैसे वाक्य अगर कोई बना रहे, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भी परेशानी हो सकती है, या बातचीत के दौरान गैर जरूरी शब्द बोलने वो लग जाते हैं। कई बार कोई ऐसे होता है कि सही शब्द नहीं वो ढूंढ पाते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो ये भी डिमेंशिया का ही एक लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो गैस चूल्हे को छोड़ देता है, खुला हुआ छोड़ देता है, या फिर अगर कहीं वो जा रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सही से जो है नियमों को पालन नहीं करेंगे, उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं या किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी और सारी खतरनाक स्थितियों में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गंभीर हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियली डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने लग जाएं, धोखाधड़ी के शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाएं, बिल भरना भूल जाना, या फिर अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो बिना सब्जी लिए सिर्फ पैसे दे के आ जाना, या कहीं भी अगर जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के आ जाना, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ लेना और जानबूझ के, देखिए ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि पैसे दिए हैं, वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये सारी परेशानियां जो है वो होने लगेगी, क्योंकि भूलने की समस्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसके जो देखिए बहुत सारे लक्षण हैं, सिर्फ और सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि फोकस करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आना, ये सारे भी लक्षण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम करते हैं योगा, मेडिटेशन की बहुत सारी बातें। आज क्या है कुछ खास बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बातें बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, और आज एक बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग के जरिए ना केवल हमारी बॉडी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि मजबूती भी जो है वो आती है, और इसी के साथ साथ मन को भी शांति मिलती है, और हम जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी कि जो तनाव मुक्त हैं ये भी हो सकते हैं। हालांकि योग का पूरा फायदा उठाने के लिए केवल आसन करना ही काफी बिल्कुल भी नहीं है। योग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको योग करने से पहले ध्यान में रखनी है, यानी कि योगा की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और मंडे टू संडे ये हमारा टाइम है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। फिलहाल सेगमेंट का टाइम हो गया है और सेगमेंट हमारा चल रहा है स्ट्रेच प्लीज। योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, योग करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आपका पेट जो है वो खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद योग करने से बॉडी में भारीपन महसूस हो सकता है और पाचन में समस्या आ सकती है। योगासन करते टाइम आपकी बॉडी को जो है वो मोड़ना या घूमना या स्ट्रेच करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ऐसे में अगर आपका

है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और इसमें चोट लगने का खतरा भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं और इससे होता यह है कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी है योगासन के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योगा करते टाइम आरामदायक और ढीले कपड़े जरूर आप पहने। टाइट कपड़े पहनने से बॉडी को सही तरीके से मोड़ना और स्ट्रेच करना जरा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आरामदायक कपड़े पहने। आप आराम से हिले डुल से सकते हैं और योगासन को आप सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि जब हम काफी भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो इससे प्रॉब्लम होती है। सूती कपड़े योगा के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा लगने में काफी मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये सूती कपड़े जरूर पहनने हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगा के बारे में। देखिए, योग जब भी आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी

आपको आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग करने से पहले कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि आपको हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना अगर आए तो वो सोख जाए, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुरुआत करनी जरूरी है, यानी कि योग करते टाइम धीरे धीरे शुरुआत करना जो है ये सही माना जाता है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो देखिए ये तो ज़रूरी है कि आप आराम से अपने जो स्पीड है उसका आराम से लेकर चलें। ये बहुत टाइम बाद अगर आप कर रहे हैं तब भी इस मामले में भी आपको आराम से ही शुरुआत करनी है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती अगर कोई योगा आसन जो है आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा वो कठिन आसन है तो आप उसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इंजरी आपको हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आसान आसनों से आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है मतलब आप बेसिक टू एडवांस लेकर के जाइए कि आपको बेसिक पहले आसन करने हैं, धीरे धीरे जो बहुत ही हल्के आसन हैं या फिर आसानी से जो हो जाते हैं वो आसन करने हैं, और उसके बाद आपको जो है एडवांस होना है, यानी कि कुछ ऐसे आसन जो कि मुश्किल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। योग करते टाइम आपकी सीमाओं का आपको ख्याल रखना है, जबरदस्ती आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। योग करने का मकसद बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। इसीलिए योग करने से पहले आपको खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं, वार्म अप जरूर करना है, और खाली पेट योगा जो है वो करना है आपको, भरे पेट से नहीं करना है, यानी कि आप खाना पीना खा के ब्रेकफास्ट करके आप योगा ना करें बल्कि खाली पेट कोशिश करें। अगर फिर भी आपको भूख लग रही है तो हल्के स्नैक्स आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं या फल खा सकते हैं, लेकिन जो हैवी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं और उसके बाद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इससे आपको जो है अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग में या फिर उस आसन को करने में मुश्किलात आ सकती हैं, इसीलिए इन कुछ बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल देखिए बातें हमारी चल रही हैं, और अगर आप ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे आप शहर में कहीं पर भी हो, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, और अगर आपको लग रहा है कि अब आप मानव रचना से, देखिए रेडियो मानव रचना से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हम हमेशा हैं। बस आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, चाहे एंड्रॉइड हो या iOS मोबाइल फोन, आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप सुन सकते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रह के भाई एंटरटेन हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐप को कीजिए डाउनलोड, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज द्वारा कह सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ अपना अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ रही हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें एक बहुत ही खास कहानी आपको बताने वाली हूँ, कैसे एथलीट की जो कि मजदूरी से जो मेडल तक का सफर था जिन्होंने तय किया, और जिन्हें दुनिया ने, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी ये ऊपर आए लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गए, यानी कि अनसंग हीरो ऐसे हैं ये, जो कि आए तो बहुत जल्दी ऊपर लेकिन एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज किसके बारे में बात हो रही है वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, एक से बढ़कर एक, आप कहीं मत जाइए, इन गानों को सुनिए, इंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। और अब बात कर रही हूँ अपने अगले सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी में, खास आपके पास लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे। मजदूरी से मेडल तक की कहानी। जी हाँ, लक्ष्मी रानी जो है मांझी की एक कहानी है। और जब जिंदगी एक तीर बन जाए तो निशाना चूक बिल्कुल नहीं सकता है, और ये कहानी लक्ष्मी रानी मांझी की है। जी हाँ, और देखिए झारखंड के ट्राइबल विलेज से ये आई एक लड़की, जिसे जंगल में जो लकड़ी काटने जाने से ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन स्कूल टीचर ने एक उन्हें बो दिया और तब जिंदगी का नया टारगेट उनके लिए सेट हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से एक ही इनके पास ड्रेस जो थे उनके पास थी, और रात को मिट्टी के घर में ये प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन लक्ष्मी रानी ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2015 में सिल्वर मेडल जीता और सबको सरप्राइज कर दिया। जब भी वो ट्राइबल एरियाज में बच्चों को आर्चरी सिखा रही है, और अभी इस टाइम पर बिना पैसे लिए उनको सिखा रही हैं, तो ये सबके लिए, देखिए मैं आपको कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वो शुरू से स्ट्रांग नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम पैसे थे घर में, मिट्टी का घर था उसमें रहती थी। लेकिन आज भी जब वो बच्चों को सिखाती हैं, जो तीरंदाजी सिखाती हैं, तो उसमें बच्चों से पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो चाहती है देश का नाम ऊंचा हो। वो चाहती है वो बच्चे बाहर निकल कर के आए, जो कि कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर जो है सिर्फ घरों में बैठे हुए हैं, तो वो सपने उनके सच करना चाहती हैं जैसे उन्होंने अपने किए। गांव की बेटी ने निशाना लगाया और सीधा इंडिया के नाम पे मेडल लिख दिया। नाम छोटा था लेकिन निशाना काफी बड़ा। लक्ष्मी रानी मांझी की कहानी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में पावर प्ले विद आरजे साक्षी एक सेगमेंट लेकर के आ जाती है। उस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और एक बहुत ही जरूरी बात है आपको बता रही हूँ, कुछ कहानियां आपको बता रही हूँ जो कि ऐसे हीरोज की कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं भाई गुमशुदा तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने भारत का काफी नाम ऊंचा किया। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की शेरनी की, यानी कि जमुना बोरो। जी हाँ, माँ ने चाय बेची इनकी और बेटी ने मेडल जीत लिया। जमुना बोरो की माँ एक रोड साइड चाय स्टॉल चलाती थी। आसाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। फाइनेंशियली स्ट्रगल्स इतने थे कि जमुना ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने की जगह कभी चाय का जो थैला उठाया तो कभी उन्होंने भाई कपड़े हाथ में बांध लिए। लेकिन जब बॉक्सिंग कोच ने देखा कि इस लड़की के पंच में स्पार्क है, उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसके बाद जमुना ने 2019 में AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। आज वो इंडियन बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है और यूथ गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। जिंदगी ने हर राउंड में उनको पंच मारा पर जमुना हर बार रिंग में जीती। माँ की चाय से ज्यादा उनका जोश गर्म था और उन्होंने कभी भी भारत को इस तरह से लेट डाउन नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे लेकर के गई और साथ ही भारत का नाम एक बेटी ने एक बार फिर से रोशन किया। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हम कर रहे हैं बातें। इसी के साथ अगली कहानी की ओर आपको लिए चलती हूँ। और ये कहानी है छोटी सी लड़की लेकिन बड़ी सोच जिनकी है, मलावत पूर्णा की। जी हाँ, माउंटेनियरिंग की इनकी कहानी जो कि सभी के दिलों पर छा गई। जब सपना इतना बड़ा हो तो रास्ते की ऊंचाई छोटी लगने लगती है। ये कहानी है मलावत पूर्णा की, तेलंगाना के ट्राइबल विलेज की एक 13 साल की लड़की, जिन्होंने 2014 में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करके उसका रिकॉर्ड एक बना दिया अपना, और दुनिया की सबसे यंग ट्राइबल गर्ल बनी जो कि एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई करी। उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक फाइनेंशियली कम था पहले से ही, जो है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही एक छोटे से परिवार से आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही कम पैसे हैं, ना प्रॉपर शूज़ हैं, ना कपड़े हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन जो बहुत ज़्यादा। उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली और 0 डिग्री से भी ठंडे टेम्परेचर में एवरेस्ट जो है वो कॉन्कर किया। आज पूर्णा उन बच्चों के लिए आइकन बन चुकी हैं जिनके सपने उनके घरों से बड़े होते हैं। पूर्णा ने एवरेस्ट से ज़्यादा उनकी थिंकिंग बैरियर्स को छोटा किया, जहां लोग कहते हैं कि ट्राइबल्स कुछ नहीं कर सकते या उनका कुछ नहीं होगा, और उन्होंने ये साबित किया कि ट्राइबल का मतलब ट्रबल नहीं होता, बल्कि होता है टैलेंट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ ये बात है मलावत पूना की। इसी के साथ एक और मैं आपको कहानी ज़रूर बताऊंगी, और ये है अतनु दास की। जी हाँ, देखिए अतनु दास के बारे में बताऊं तो अतनु दास ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स, एशियन गेम्स और कई सारे ऐसे मेडल जीते, लेकिन स्पॉटलाइट में कभी नहीं आए। उनकी प्रैक्टिस एक स्मॉल ग्राउंड से स्टार्ट हुई, जहाँ पर वो भी सेकेंड हैंड था, और उन्होंने प्रेशर मोमेंट्स में भी कभी फोकस लूज नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने टॉप रैंक साउथ कोरियन आर्चर को भी जो है वो हराकर सबको सरप्राइज कर दिया। आज भी अतनु ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस क्वाइटली निशाना लगाने पर और मेडल लाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अतनु जैसे खिलाड़ी हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम्हारे पास स्पॉटलाइट ना हो, तब अपना निशाना और ज़्यादा शार्प कर लेना चाहिए, ताकि अपने आप स्पॉटलाइट तुम्हारी ओर खींची चली आए। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही हैं पावर प्ले विद आरजे साक्षी में। आपसे कुछ जानकारी आपको बता रही हूँ, यानी कि कुछ ऐसे आपको अनसंग हीरो के बारे में बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनकी कहानी कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है। अब बात करते हैं भक्ति शर्मा की, जिन्होंने आर्कटिक ओशन स्विम कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसी लड़की जिसे राजस्थान जैसी ड्राई जगह में पानी मिलना मुश्किल था, उन्होंने देखिए क्या किया कि दुनिया के सबसे ठंडे ओशियन में 1.4 माइल स्विम किया और इन जस्ट 52 मिनट्स वो पहली एशियन वुमन बनी जिन्होंने आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑल फाइव जो ओशियंस हैं उसमें स्विम किया। और उनकी माँ उनकी कोच थी और माँ बेटी की जोड़ी ने इंडिया के लिए हिस्ट्री लिख दी। भक्ति ने सिर्फ समुंदर नहीं सोच के किनारे भी तोड़ दिए। अगर जज्बा हो तो राजस्थानी मिट्टी से भी लहरें उठ जाती हैं, जहां से भक्ति शर्मा उठ करके आई और उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है और अब आगे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए, जहां पानी नहीं मिलता था वहां से निकल के भक्ति ने समुद्र में फतेह हासिल करी। तो देखिए, आज देखिए हर जगह उनका नाम है, हर जगह उनके उल्लेख हैं। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ और भी जानकारी आपके लेकर के आती रहती हूँ मैं, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगले सेगमेंट का टाइम होता चला जा रहा है और अगला सेगमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा खास है। अगले सेगमेंट का नाम जो है वो है कौन बनेगा सेहतमंद। बात करेंगे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप।

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिनों बहुत सारी करती हूँ बातें। हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हो चला है और अगला सेगमेंट यानी कि आज का हमारा जो सेगमेंट है ये है बहुत ही ज्यादा खास, जिसमें आपसे पहले पूछती हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। पहेलियां आपसे पूछती हूँ, तो सबसे पहली पहेली जो है ये आपसे पूछूंगी, लेकिन इसके बाद पहले इससे आपको बता तो दूं आपको जो है क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए ये कि अगर आप पूरे महीने भाई सही सटीक जवाब देते हैं और सबसे पहला जवाब देते हैं तो आपको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, हमारे रेडियो स्टेशन आने का और बहुत सारी बातें करने का लाइव और सभी आरजेस से भी मिलने का। लेकिन इसी के साथ साथ पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है ही। और आपको बता दूं मैं कि अब एक खास पहेली के साथ आपके पास आ गई हूँ। पहली जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा आसान पूछती हूँ, तो इतना घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बस आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, फटाफट से पहेली का जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो चलिए इसी के साथ पहेली का आप दीजिए जवाब जो मैं पूछने वाली हूँ कुछ ही देर में, एक गाने के बाद खूबसूरत से गाने जो कि लेकर के आ जाती हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती है बातें हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अब आपके साथ रहती हूँ। तो अब एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। जी हाँ, कौन बनेगा सेहतमंद में हम बात करते हैं, एक पहेली आपसे पूछती हूँ, और पहेली जो कि बड़ी आसान सी होती है, बस आपको ध्यान से सुननी है और उसका जवाब जो है वो देना है। पहेली तो बहुत ही आसान सी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका हिंट जो है वो है कि दादा नानी का ये नुस्खा काफी ज्यादा पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो आपको बताना है क्या है इसका जवाब। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आपसे कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ आज ना। आज की हमारी पहली पहेली, क्योंकि अभी सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आज की पहेली बड़ी आसान सी जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। इसका हिंट है कि दादी नानी के नुस्खा है जो है ये काफी पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो इसका जवाब जो दिया है हमारे पास, हमारे लिस्नर बहुत ही तेजी से जवाब जो है देते हैं, जिनका नाम है अल्तमश। और अल्तमश ने जवाब जो है वो दिया है। अल्तमश जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। और भी बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं और यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि इतनी फटाफट जवाब आता है कि भाई क्या कहने। तो अल्तमश जी ने जवाब दिया है और इसका जवाब है बालों का तेल, यानी कि हेयर ऑयल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि हेयर ऑयल जो है ये आपके बालों को पोषण देने में और आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए रोज रात को आपको अपने चम्पी जो है ये जरूर करके सोनी है, इससे आपके तनाव को काफी ज्यादा देखिए आप हट जाएगा और साथ ही निजात तो आपको मिलेगा तनाव से, आपके बालों में पोषण की कमी जो है हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैन वृष्णा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे।

यानी कि हफ्ते के 7 होते हैं और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं हमारी अगली पहेली, जो कि काफी ज्यादा आसान है। बस आपको जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है और बस यूं आपने पहेलियों का जवाब दे के और हमारे लकी विनर बन जाना है। आपको मिलेगा मौका, मुझसे मिलेगा रेडियो 107.8 FM आने का और लाइव बातचीत करने का, साथ ही सभी आरजे से मिलने का। तो चलिए अब आपको बताती हूँ हमारी आज की आसान सी पहेली, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। और पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूँ मैं। तो इस पहेली का आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए आपको क्या करना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूँ मैं। तो ये आपको बताना है कि ये भाई किस बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्या जरूरी है, मतलब आपको ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा ही अगर आपको पहली का जवाब जो है वो देना है। दो बार मैं पहली बता चुकी हूँ, नंबर आपको बता चुकी हूँ, तो जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार है। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती है हमारी बहुत सारी बातें। फिलहाल मैंने अपने सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में आपसे पूछा एक सवाल, एक पहेली आपसे पूछी है जिसका जवाब हमें दिया है सबसे सही सबसे सटीक इतनी जल्दी कि बस यहाँ मैं अपने बात करना खत्म करती हूँ आप लोगों से और यहाँ जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जवाब दिया हमें हमारे लिस्नर बबलू जी ने और बहुत ही तेजी से इन्होंने जवाब दिया है मस्त से। और पहेली एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर बताऊंगी इसका जवाब क्या है। तो पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान ना दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूं मैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारा है बाल यानी कि हेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बाल हमारे खूबसूरती का हिस्सा होते हैं जिन्हें सही देखभाल की जरूरत होती है, अगर नहीं रखी जाए तो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। बबलू जी आपको बहुत सारी बधाई, आपने दिया है सही जवाब। तो बात करते हैं और भी, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। चलिए इसी के साथ जो वक्त है अब हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अब आ गई है आज दीक्षा जो करेंगी आपसे बातें, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो बातें करता है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहे। इसीलिए हर हफ्ते एक्सपर्ट आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज के समय का सबसे ज्यादा जानकारी जुटाने वाला टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की गर्मी भारत में पड़ रही है, या फिर हम कहें पूरे ही भारत में पड़ रही है, पहले होता था उत्तर भारत में होती थी, आज पूरे भारत को एक भट्टी की तरह गिना जा रहा है, जहां कभी कभी बारिश बीच में आ जाती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर 42 और 45 के बीच पहुंच जाता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट स्ट्रोक होने का। हीट स्ट्रोक सुना तो आपने भी होगा, लेकिन इसको पहचानना कैसे है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू।
0: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम हीट स्ट्रोक की बात करें और ये टर्म बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि हमने जनरली लोगों से सुना है कि आप डिहाइड्रेट मत रहिए, पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या लिक्विड इनटेक होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों में, पर हीट स्ट्रोक जो होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है और है क्या एक्चुअली?
1: जी जैसा कि आपने कहा हीट स्ट्रोक जो है हमने सबने सुना है कि हीट स्ट्रोक, तो इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसको सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तब थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। सन स्ट्रोक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर नॉर्मली 40 तक रहता है वो 50 तक भी जा चुका है, जो खासतौर पर अभी आपने बताया कि हमारे इंडिया में जो अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें सबसे हॉटेस्ट सिटी में 10 से ज़्यादा सिटीज हमारे देश की एक्चुअली आई थी, तो आपने कहा भी ठीक कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक हिंड्रेंस फैक्टर है, या कहेंगे कि ये छुप जाता है कि किस, ये हीट स्ट्रोक एक तरह से हाई टेम्परेचर है जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए। नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जब आपका ब्रेन का सेंटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना बंद कर दे या टेम्परेचर फेल हो जाए, तो वही हीट स्ट्रोक है। और इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा और 107 या 108 तक भी चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को जो मैकेनिज्म होती है थर्मोरेगुलेशन की, जो टेम्परेचर को मैनेज करती है बॉडी नॉर्मली, लेकिन अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाए, आपकी बॉडी को ये पता ना चले कि इस टेम्परेचर को रोकना कैसे है,
0: यानी वो 107 तक पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जानलेवा है।
1: जी जी 107 अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में मरीज बोलता है उसको 102 103 आता है तभी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा टेम्परेचर जो 107 भी चला जाए और आपके ब्रेन को ये पता ही ना हो कि इसको नीचे कैसे लाना है, जिसमें आपकी स्वेटिंग भी बंद हो जाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है और इसको पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके।
0: जी यानी बुखार होना तो कॉमन है, पर गर्मी वाला ये बुखार जो आपकी बॉडी में पसीना ही नहीं आने दे रहा है, तो बुखार बाहर निकलेगा कैसे? दिमाग ये जज नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हमारे दिमाग से हमारे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है, जैसे गर्म चीज को छुआ। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर में भी दिमाग के ही सिग्नल होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें बुखार भी चढ़ रहा है और अब ये बुखार जो है वो उतर भी सकता है। दवाइयों के जो इलाज हैं वो किस तरीके से हीट स्ट्रोक में किए जा सकते हैं और कैसे पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता है और क्या है सिम्टम्स जो एक आम इंसान को पता होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078, और साथ ही ये बातचीत आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना द्वारा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या प्ले स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आप ऑल इज वेल प्रोग्राम की ये सारी बातचीत डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्थ को बेहतर बना देगा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक शब्द बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन शायद इसको विस्तार में नहीं जानते। आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी की चपेट में आने से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और शायद यही हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। पर जान बचाएं इससे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता किन लोगों को है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा हो सकता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है?
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मैम कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो सकता है, तो हम बात ही कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस बढ़ रही हैं, जिसको हम HRI बोलते हैं। तो जितने भी हीट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के बाद, खासतौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट इस पर भी आ रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर मई जून जुलाई, जो ये वाला सीजन होता है जिस समय टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होने लगेगी थोड़े दिन के बाद, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क इसी समय सबसे ज्यादा होता है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने रिसेंटली जिनका जो किसी ऐसी जगह से आए जहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या जहां पे ठंड होती है, और वो अचानक से ऐसी जगह आ गए जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा खासतौर पर छोटे बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, और जो हार्ट की या किडनी की या तनाव की दवाइयां खाते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये दवाई लेते हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर किसी को स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, या किसी को डिहाइड्रेशन पहले से है, लैक ऑफ वाटर है, और या किसी की सीवियर ओबेसिटी, जो हम लोगों को लगता है कि यार मैं मोटा हूं तो इसका क्या मतलब हीट स्ट्रोक से। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको हाइड्रेशन की भी ज्यादा जरूरत है, आपकी कॉपअप मैकेनिज्म्स भी कम होंगी, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमने कहा ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं। और कुछ बीमारी जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा ये इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर हैं। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, और या आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक घर में बैठे बैठे भी हो सकता है।
0: अच्छा, घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता।
1: इंडोर, अगर कोई इंडोर है तो उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज आप जब अंदर रहते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन कर नहीं पाती, और दीज पीपल कैन ऑल्सो गो इन हीट स्ट्रोक। और अगर खासतौर पर वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। और खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई बंदा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलते हैं रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफी रिग्रेसिव या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कई बार वो अपने पानी पे ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ हाइड्रेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड यू आर वेरी मच रिस्क फॉर हीट स्ट्रोक, तो हाइड्रेशन इज द क्रूशियल थिंग, उसका उनको ध्यान रखना है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, और मौसम जब गर्म होता है तब भी ये कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग तो सैर कर लें, लेकिन 8-9 बजे के आसपास आप बाहर ना निकलें, गर्मियों में अवॉइड करें, या दिन में आप जैसे पार्क में जा रहे हैं तो वो ना जाएं। क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है अगर लू चल रही है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट, तो अगर मैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो आपने बोला कि खासतौर पे 11 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है, जिसमें आपका हीट काफी ज्यादा होती है बाहर, तो आप उस समय आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, उस समय आप बाहर कम निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो प्रॉपर लाइट कॉटन क्लोथ पहन के जाएं, हैवी क्लोथिंग ना हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेके जाएं, तो डेफिनेटली आपने जो बोला, एक्चुअली हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा रिस्क आफ्टरनून में होता है, जो आपने बोला, मैं कहूँ 12 से और 3 बजे तक का जो जब सन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सन का होता है, तो उस समय डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे हीट स्ट्रोक में, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर।
0: बिल्कुल, और यही वजह होती है कि शायद स्कूल की जो छुट्टी है वो लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले कर दी जाए या 12:30 तक कर दी जाए, क्योंकि जब 2 से 3 के बीच में बच्चे घर पहुंचते हैं तो उस समय पीक गर्मी होती है, और उस गर्मी में बच्चों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। सो इस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं, खास तौर पर से मैं कहना चाहूंगी लेबर वर्क जो होता है हमारे देश का, वो जब मजदूरी करता है गर्मी में बहुत ज्यादा, और कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, किसी जगह पर कुछ और काम चल रहा है, या फिर कोई रिक्शा ढोकर लेकर जा रहा है, सो ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है। तो इनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हीट स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है. बीच बीच में आ रही बारिश थोड़ी राहत देती है, लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो जाता है. और ये जो गर्मी है, ये अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, इन महीनों में इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि पूरे देश भर को आप अगर गूगल मैप पर देखें और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो पूरा भारत देश आज की तारीख में एकदम लाल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैं दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट भी. और हमारे देश में जिस तरीके से गर्मी का असर इस बार हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर हम सभी की बॉडी और हम सभी के घरों में आप देख सकते हैं. ऐसे में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक से बचकर रहना बेहद जरूरी है, जिसको सन स्ट्रोक भी कहा जाता है. बढ़ती गर्मी, झुलसती गर्मी, लू चलना और इस बढ़ती हुई धूप में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, ये हम जान रहे हैं. तो कैसे सिम्टम्स को पहचाने हीट स्ट्रोक के, ताकि किसी भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसको तुरंत सहायता दी जाए. और क्या होगा उसका इलाज, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, बात करते हैं अब सिम्टम्स की. अब एक व्यक्ति है हमारे घर में अगर कोई रह रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने देर का हमारे पास समय होता है और क्या वो सिम्टम्स है जिनको पहचान कर हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता चाहिए?
1: जी, जैसे मैम आपने कहा कि इसमें कितना हमें विंडो पीरियड मिलता है, खासतौर पे कि जब आप कोई हीट स्ट्रोक में जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीट स्ट्रोक से पहले बहुत कुछ होता है, तो इसमें आपके पास समय भी होता है और डॉक्टर के पास भी समय होता है. अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज़ में है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक है. कोई भी हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, एक नॉर्मल जो GI डायरिया वगैरह लूज मोशन AGE की तरह एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बोलूँ, तो नॉर्मली कोई भी हीट स्ट्रोक एक फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, लूज मोशन उसको होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन सिम्टम्स हैं. लेकिन इसके साथ जो एक अलार्मिंग चीज होगी या बहुत वार्निंग साइन होगा, जो कि एक डॉक्टर को, खासतौर पे हेल्थ केयर वर्कर को पता होना चाहिए, कि वो होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. उसका टेम्परेचर 104 से लेके 107 तक जा सकता है. खासतौर पर अगर टेम्परेचर अगर 104 से नीचे होगा तब तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आप अगर टच भी करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही वार्म होगी, क्योंकि ब्लड
0: गर्म
1: जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक में. आपकी नॉर्मल हमारी स्किन का सर्कुलेशन जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन सर्कुलेशन होता है वो उससे 10 गुना बढ़ेगा, तो आपका जो और जगह ब्लड की जरूरत है, जैसे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, वो कम हो जाती है. तो जो सिम्टम्स भी होते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं. जैसे कि अगर किसी को उसको एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन मैंने बताया, साथ में इसके हीट स्ट्रोक में ब्रेन के सिम्टम जुड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, उसका होश गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट जो है अलर्ट नहीं रहेगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी लगेगी, पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करेगा, पेशेंट इवन यहां तक कि फिट्स, जिसको हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं. तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट भी करें. और मैं तो कहूंगा इससे पहले जिसको हम बोलते हैं हीट एग्जेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर 104 तक रहता है, तो यहां तक जैसे ही जाए तो आपको सोचना चाहिए कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकली बना सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेशेंट की स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा है, जो कि नॉर्मली किसी भी फीवर में आता है, स्वेट आउट, हीट निकलने की जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है. और हम बात करें कि किसको रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग पानी की, जिनको कमी होती है, खासतौर पर जो हमारे ऐसे लोग जो कि मोस्टली लेबर क्लास होता है, जो हमारे लोग
0: ओपन में काम कर रहे हैं,
1: जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है. और एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं बात करूँ जो नुकसान होता है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि हमको ऐसा कुछ हो सकता है. वो डायरेक्ट सन के एक्सपोज में होते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे समय समय पे पानी पीने की जरूरत भी है या बीच बीच में आपको छाया में जाने की जरूरत भी है. तो आपको इन बिटवीन अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करके रखें और समय समय पर आप जो बोलते हैं हम ज्यादा, अगर सन बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप छाया में बीच बीच में जाएं. मैं बात कर रहा हूँ लेबर वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है.
0: और ये पीते करते रहें।
1: ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर देखते हैं कि टेम्परेचर मोर देन 104 है, मैं इसको बता रहा हूँ टेम्परेचर को, और पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है, मतलब पेशेंट का होश गड़बड़ हो गया, पेशेंट अलर्ट नहीं है, तो आपको 100% सोचना है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बुखार जो है वो दिमाग पर चढ़ गया है, यही कहलाया जाता है जनरली, क्योंकि आपको होश नहीं रहता, आपको समझ नहीं रहती, सूझबूझ से जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे आप कर नहीं पाते। तो देसी भाषा में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।
1: जी आपने सही कहा मैम, जिसको हम, अगर मैं बोलूँ पेशेंट के रिलेटेड, एक कॉमन लैंग्वेज में तो कहते हैं लू लग गई है, तो किसी को अगर लू लग गई है मतलब कि उसका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको होश नहीं रहता है, सोडियम पोटेशियम भी गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, और अगर सोडियम ज्यादा कम हो जाता है तो बेहोशी में सोडियम का भी रोल है, वो और ज्यादा आपके अलर्टनेस को डाउन करता है, और डेफिनेटली हीट स्ट्रोक में इवन कई बार ब्रेन को इन्फार्क्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम खालिश बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: और हीट स्ट्रोक तो अपने आप में ही एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट, जो मैंने बताया अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम इशारा कर देता है, बिकॉज ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो डेफिनेटली ये है।
0: जी तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, आगे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल में क्या इलाज मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम कर रहे हैं बात हीट

0: स्ट्रोक के बारे में। बढ़ती गर्मी प्रॉब्लम बहुत सारी लाती है और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू लग जाना, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये लू लगना सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बीमार कर देगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर सही समय पर इसको पहचान कर इलाज ना किया जाए। अगर आपके घर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्चुअली में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है, सो आपको क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको घर पे देना है या फिर फर्स्ट एड घर पे देना है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना है, और हॉस्पिटल कैसे इलाज करेगा, ये जान रहे हैं हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी से, जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, अब मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि अगर कोई हमारे घर का सदस्य है और वो घर में आ रहा है और हमें दिख गया है कि उसको हीट स्ट्रोक है, भरी दोपहर में आए कोई और उसे बुखार हो जाए और बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, जैसा आपने कहा कि पहले तो बेसिकली जो हम बोलते हैं प्रोडोमल सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस तो बंदे को घर पे या जहाँ वो होते हैं वहीं पे आते हैं। तो आपने कहा कि कैसे पता चले, तो आपने कहा कि अगर किसी का कोई बाहर से आ रहा है जो आउटडोर एक्टिविटी करके या सन के एक्सपोजर से आया और उसका आपने देखा कि उसको हाई ग्रेड फीवर है और आपने देखा कि उनको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रखा है और वो कह रहे हैं कि मेरे को आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी भी लग रही है, सीवियर हेडेक भी हो रहा है, या मसल क्रैम्प बहुत कॉमन सिम्टम है कि वो कहेंगे मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर घर पे हो रही हैं तो डेफिनेटली अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक में जाने से बच पाएं। तो ये घर पे ध्यान रखें कि आप उनको प्रॉपर उनको आप हाइड्रेशन करें, उनको आप ORS दें, उनको आप नींबू पानी दें या एक कोकोनट वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस समय, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीविंग फैक्टर भी होता है, तो उनको आप नारियल पानी पिलाएं फ्रेश, और घर पे उनको बोलें कि डी क्लोथिंग करें, लाइट क्लोथ उनको पहनाएं, और उनको बोलें कि आप वो जो एयर कंडीशन आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उस समय उनको आप AC की रूम में रखें जिससे कि उनका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई है, वो AC भी टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्प करें। अब ये सब काम आप कर लेते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनका टेम्परेचर लगातार ज़्यादा है और आपने देखा कि टेम्परेचर 104 या 104 के ऊपर है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 100% आपको लगे कि थोड़ा उनका सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है या उनकी अलर्टनेस गिर रही है, ऐसे लक्षण जैसे ही लगे या लूज मोशन का जो नॉर्मल बोलते हैं कि भाई लू लग गई और लू में आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको एक अच्छे सेंटर पे ले जाएं। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या रिमोट एरिया में डॉक्टर ने देखा है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली आप वहां ले जाएं जहां पे कि हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, खासतौर पर ऑब्वियसली टर्शरी केयर में या बड़े किसी गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे ये फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनको इमीडिएटली ले जाएं। और अगर आप छोटी जगह पे भी है तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे उनको IV फ्लूड्स दिए जाते हैं, जो बहुत ही वाइटल होता है, लाइफ सेविंग होता है, जिसको आप नॉर्मली हम NS और RL कहते हैं, बोलते हैं कि पानी लगा दिया, नॉर्मली समझते हैं लोग, वो ये ध्यान रखें कि वो पानी भी गर्म ना दे दें। आपने देखा होगा कई बार वो भी हीट में उतना ही गर्म होता है तो वो डबल अटैक हो जाता है एक तरह से।
0: ओके,
1: तो ये ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर ठीक हो, जो बाहर से आप फ्लूड का रिप्लेसमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट के, वो एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये चीज डॉक्टरों को या हेल्थ सेंटर पे जो टीम है हमारी उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो भी ऐसा कर देते हैं कि वो भी उतना ही टेम्परेचर का है, तो बेसिकली पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ साथ और जो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसा हमने कहा कि टर्शरी केयर पे ये भी पता चलता है कि बंदे का ब्रेन को भी इशू है क्या उनका, तो वहाँ पे उनका CT भी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पता चलता है, और हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है वो सारे टेस्ट आप बड़े सेंटर पे ही करा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर हमने जैसा कहा वैसे सिम्टम्स मिले और किसी का टेम्परेचर और उनकी अलर्टनेस कम हो जाए, मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो डेफिनेटली उनको हेयर सेंटर पर जाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घर पे बहुत समय वेट नहीं करना चाहिए अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग घर पे जैसे ठंडे पानी की पट्टियां सिर पे रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियां, क्या वो भी रखी जा सकती हैं या वो ठीक नहीं रहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% घर पे आप लोग उसको ठंडी पट्टियाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अगर मैं बात करूँ तो कई मेडिकल कॉलेज, जो अगर हम दिल्ली NCR में रहते हैं तो सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उसमें अलग से वार्ड बना दिया जाता है इस समय पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। तो डेफिनेटली आप उनको ठंडी पट्टी भी रखें, उनके कपड़ों उनको आइस से उनको आप अपने उनको क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी कोल्ड आइस इमर्जन थेरेपी है, मैं ये कहना चाहता था कि आइस डाल के और पेशेंट के टेम्परेचर को कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी सही बताऊं तो कोल्ड आइस थेरेपी है। तो आपने कहा कि आइस से वो कर सकते हैं कि पट्टी 100% कर सकते हैं, बहुत ही रिलीविंग होगा। दूसरा, जो हीट स्ट्रोक की सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है, और साथ में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड आइस इमर्सन थेरेपी दी जाती है, जो कि काफी इफेक्टिव